सुप्रभात। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 अश्विन माह की तिथि 6 तदनुसार 28 सितंबर ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी का ये चाय भाषा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चित्रकूट पहुंचकर श्रीराम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रीराम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषादराज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहां आए हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और साथ ही हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं ये भक्तिमय रचना।

श्रोताओं, ये भक्ति में रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। और अब आइए सुनते हैं ओम व्यास और साथियों के स्वरों में ये रचना।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे ओम व्यास और साथियों के स्वरों में ये भक्तिमय रचना। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

श्रोताओं, अनूप जलोटा के स्वर में इसी भक्तिमय गीत के साथ ही हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में संगीत रचनाओं का। सवेरे 7 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा सवेरे 8:30 पर। हमारे केंद्र से लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक होगा सवेरे 8:40 पर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे उड़ाव लोकगीत नारायण भगत और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं सवेरे 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। दिन के 10 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। यहीं से दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर पुनः सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दिन के 3 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। शाम 4 बजे मुख्य समाचार। शाम 4:02 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। शाम 5 बजे मुख्य समाचार। शाम 5:02 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक द्वारा गाए गए फिल्मी गाने। शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, इसमें चर्चा का विषय होगा साग सब्जियों की खेती। मनोरंजन कीजिएगा पंच परगनिया लोकगीत से राजेंद्र नारायण सिंहदेव और साथियों के स्वरों में। आज की भेंटवार्ता का विषय होगा लत्तेदार सब्जियों की खेती पर विशेष जानकारी। भेंटवार्ताकार होंगे हेम सागर मुंडा, उनसे बातें कर रहे होंगे कमलेंदु महतो। साथ ही आनंद लीजिएगा मुंडारी लोकगीत का दुराय सिंह मुंडा और साथियों के स्वरों में। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप इस कार्यक्रम में प्राप्त कर सकेंगे। श्रोताओं शाम 6 बजे सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। उसके बाद शाम 6:02 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा, इसमें सामाजिक जीवन एक जिम्मेदारी विषय पर जानकारी प्राप्त कीजिएगा। साथ ही मनोरंजन करवाएंगे जोमनामा गीत से बेलमती माई हांसदा और साथियों के स्वरों में। साथ ही आपका मनोरंजन करवाएंगे आंधी लोकगीत से मदेकुई होनागा और साथियों के स्वरों में। इस कार्यक्रम में चर्चाओं और भेंट वार्ताओं के माध्यम से आप अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। श्रोताओं शाम 6:30 पर सुनिएगा युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद शाम 7:15 पर। शाम 8 बजे सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 9 बजे सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा 20वें एशियन गेम्स 2026 के प्रतिदिन की विशेष झलकियां। रात्रि 10:20 पर सुनिएगा गजलों का प्रोग्राम महफिल हमारे आकाशवाणी चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं सतीश कुमार शर्मा के स्वर में संगीत रचनाओं का। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, सतीश कुमार शर्मा के स्वर में आप सुन रहे थे सूरदास रचित ये भजन। और वही सुनते हैं अगला भजन, इसे रचा है मीराबाई ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे थे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजनों का। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार और जोहार। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म साजन बिना सुहागन से। इसे गाया है येसुदास ने।

जोहार चाय बासा कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम था साजन बिना सुहागन। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है शोले।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोले का गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में। अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कभी अजनबी थे।

श्रोताओं, कभी अजनबी थे फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर। अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। आइए अब सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

श्रोताओं, ये गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था तुमसा नहीं देखा। अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है किस्मत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाई भाषा। और अब आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम है दीवाना।

श्रोताओं, दीवाना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं फिल्म ससुराल का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म का ये गीत। और भाई सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म आर पार का ये गीत। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है प्यार का मौसम।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था अनाड़ी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये गीत। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ज्वेल थीफ का ये गीत।

और अब श्रोताओं आइए बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। श्रोताओं, भारत की धरती को सुरक्षित रखने वाले हमारे वीर सैनिकों को हमारा नमन है। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारी भारतीय सेना के जवान देश की सीमाओं पर पूरी निष्ठा और साहस के साथ डटे रहते हैं। कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी हो या कठिन परिस्थितियाँ, उनका कर्तव्य सबसे पहले आता है। श्रोताओं, देश की रक्षा करते हुए अनेक वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनका बलिदान केवल एक परिवार की कुर्बानी

नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए समर्पण की मिसाल है। उन वीर शहीदों की याद हमें हमेशा ये सिखाती है कि देश के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। आइए आज हम उन सभी वीर सैनिकों और शहीदों को हृदय से नमन करें जिन्होंने भारत की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

श्रोताओं, समय अभाव के कारण हम आपको ये गीत पूरा नहीं सुनवा पाएंगे, इसका हमें खेद है। ये गीत था मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में फिल्म प्रेम पुजारी का। इसी के साथ ही हमारा जोहार चाईबासा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016

0: उसूल है कि सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5,000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 21 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, मोबाइल या कार, क्या रॉकेट जो आपके डिवाइस सैटेलाइट भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 20 गुना और 80% बढ़ रहे। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी समाचार।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया।
0: समाज प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल करने की परियोजना शुरू की। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
6: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न ए इंकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
7: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
8: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही

0: सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 30 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Tiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives.

0: lying areas. Mandakini and Gandak rivers are also wreaking havoc in Chitrakoot and Kushinagar districts respectively. Eight districts are facing flood-like conditions following an intense three-day spell of rain. The meteorological department has forecast thunderstorms and rain at many places in the eastern and western districts of the state today. In view of the inclement weather, a holiday has been declared for schools and colleges in several districts including Amroha, Shravasti, Pilibhit and Bijnor. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: On to sports. In men's cricket, Virat Kohli's majestic century and Shubman Gill's fluent 100 powered India to a commanding 8-wicket victory over West Indies in the first ODI in Thiruvananthapuram last night. Kohli remained unbeaten on a sensational 139, while Ruturaj Gaikwad finished unbeaten on 13. Chasing a target of 296, India made 300 for 2 in 41.4 overs to take a 1-0 lead in the 3-match ODI series. Kohli's innings was the centrepiece of India's successful chase, as the former India captain produced an aggressive display after initially settling into the innings. The century was Kohli's 55th in ODI cricket. He also became the second batter after Sachin Tendulkar to complete 15,000 ODI runs, reaching the landmark during his innings. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
2: Thank you, Anuja. Sending a stern message to Pakistan, the Times of India quotes Prime Minister Modi hailing the surgical strikes for zero tolerance in terrorism. The Asian Age quotes the Prime Minister urging citizens to participate in the census exercise and anti-drugs fight in Mann Ki Baat. An op-ed by Prime Minister Modi in The Pioneer lauds the personality of Ashok Singhal, former president of VHP. Marking his birth centenary and highlighting his organizational skills, the headline says, "A great personality committed to nation building." Hindustan Times cites the news of Union Home Minister Amit Shah flagging off India's first LNG train in Gujarat. The paper quotes Amit Shah saying India will soon achieve 100% electrification of its railway network, which only Sweden has achieved up till now. And finally, to boost medical tourism, government and private hospitals to be graded on quality and safety on global models, cites the Economic Times. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: सुबह आप यहाँ बहु पेट से है ना, तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
4: ये तो खुशी की बात है। गर्भ में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहु की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
3: मैंने बहु का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
5: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
4: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य लें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
8: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
9: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
10: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
9: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
10: अच्छा, दो कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या?
11: वो भी तो दो दो जान संभाल रही है।
10: बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। बैंक यूनियनों की मांगों पर बनी सहमति, आज से होने वाली प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टली। परिवहन मंत्री दीपक बीरवा ने अवैध पार्किंग के खिलाफ सभी जिलों में सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश, आज से चलेगा अभियान। पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच की आज होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे लॉन्च। 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा पशुधन बीमा पोर्टल। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों में बढ़ेगा तापमान, बारिश से मिलेगी राहत। 3 अक्टूबर तक बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं। और रांची में आयोजित पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स प्रीमियर लीग में रोड रोलर ने आरसीसी वॉरियर्स को हरा कर जीती ट्रॉफी। और अब समाचार विस्तार से। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल फिलहाल टल गई है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक में विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल स्थगित कर दिए गए हैं। बैठक में 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस की मांग पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने और स्केल 4 या उससे ऊपर के अधिकारियों की PLI योजना में संशोधन के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखने पर सहमति बनी। परिवहन मंत्री दीपक बीरुआ ने सभी जिलों के उपायुक्तों, जिला परिवहन पदाधिकारियों और मोटर वाहन निरीक्षकों को मुख्य और सहायक सड़कों पर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मंत्री ने लोगों से अवैध पार्किंग की सूचना देने की भी अपील की है। बता दें कि यह कार्रवाई जमशेदपुर के मरीन ड्राइव पर 24 सितंबर को सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार की टक्कर में मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी त्रिषा सिंह समेत 4 लोगों की मौत के बाद लिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस आज से 4 अक्टूबर तक 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। अभियान की थीम सुरक्षित सफर सुरक्षित कल रखी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। MMDR संशोधन बिल को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कोडरमा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने संशोधन बिल को लेकर दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त उपकर लगाए जाने से कोयला महंगा हुआ और खरीदार नहीं मिल रहे थे।
13: सैकड़ों ट्रक इलीगल खनिज पदार्थ झारखंड से बाहर भेजे जाते हैं, उस इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून अगर प्रभावी हो जाता है राज्य में तो लीगल कोयले का दाम बहुत नीचे आ जाएगा, तो इलीगल कोयला कोई खरीदेगा नहीं, डीओ से लोकल कोयला उठाएंगे, बहुत आसानी से ये अपने अतिरिक्त सोर्स पैदा कर सकते।
12: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि MMDR बिल से राज्य को काफी नुकसान होगा, इससे राज्य के पास कुछ बचेगा ही नहीं। उन्होंने वित्त मंत्री को दिए गए अपने प्रस्ताव का भी जिक्र किया।
14: MMDR एक्ट में उन्होंने संशोधन किया, राज्य के वित्त मंत्री की ओर से मैंने कहा केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि मैडम ये राज्य की सूची में शामिल है, हमारी जमीन हम कैसे टैक्स लगाएंगे ये हमको निर्धारण कर रहा है, कोयला आपके सूची में जरूर है केंद्र की सूची, तो आप कोयला पर कोई भी रॉयल्टी किसी भी प्रकार के टैक्स को आप निर्धारित करिए, हमें कोई।
12: केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय के अनुसार यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके माध्यम से बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रांची के आड्रे हाउस में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार को श्रद्धांजलि देकर हुई। इस समारोह में पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने पर्यटक मित्रों, होटल आतिथ्य क्षेत्र और अन्य स्टेक होल्डर्स को सम्मानित किया। पर्यटन निदेशक नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि यह आयोजन झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने के साझा संकल्प का प्रतीक है। मेरा युवा भारत रांची की ओर से सदर अस्पताल रांची में मेरा स्वास्थ्य मेरी शान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से

0: रही हैं। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जिले के सभी लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की है।
1: एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी यहाँ पे दुमका जिला में पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है, जिसके लिए जो बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो इफेक्टेड ऐसे लोग, उनके लिए स्पेशल दवा खिलाने का भी कैंपेन यहाँ पे चल रहा है। तो मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि इस फैसिलिटी का, एनीमिया मुक्त भारत अभियान का जो अभियान जो चल रहा है, उसका हम लोग लाभ लें।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में इस महीने के अंतिम दिनों में बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी वायुमंडल में बने चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव अब कम हो गया है। 3 अक्टूबर तक राज्य में मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स प्रीमियर लीग 2026 के स्टील हार्ट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में रोड रोलर ने आरसीसी वॉरियर को हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पथ निर्माण विभाग कैडर के राजपत्रित अभियंताओं ने हिस्सा लिया। विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने आयोजन को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सराहनीय पहल बताया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज बैंक हड़ताल स्थगित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आईबीए के आश्वासन के बाद बैंकों की हड़ताल टली। प्रभात खबर की लीड है, एसआईआर में झारखंड के 63 लाख से अधिक वोटरों को राहत, बीएलओ खुद घर से लेंगे दस्तावेज। दैनिक जागरण ने लिखा है, जेपीएससी घोटाला मामले में सीआई का खुलासा, रांची के सागर पैलेस में होता था पैसे का हिसाब किताब। वहीं हिंदुस्तान के दैनिक की सुर्खी है, झारखंड में भी सीआईसी पर चढ़ा सियासी पारा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बैंक यूनियनों की मांगों पर बनी सहमति, आज से होने वाली प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टली। परिवहन मंत्री दीपक बीरुआ ने अवैध पार्किंग के खिलाफ सभी जिलों में सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश, आज से चलेगा अभियान। पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच की आज होगी शुरुआत, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे लॉन्च, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा पशुधन बीमा पोर्टल। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों में बढ़ेगा तापमान, बारिश से मिलेगी राहत, 3 अक्टूबर तक बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं। और रांची में आयोजित पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स प्रीमियर लीग में रोड रोलर ने आरसीसी वॉरियर को हराकर जीती ट्रॉफी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ?
3: बहू पेट से है ना,
2: तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
3: ये तो खुशी की बात है, घर में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहू की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
2: मैंने बहू का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
4: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
2: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य ले।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
7: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
8: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
9: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
8: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
9: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या, वो भी तो 2-2 जान संभाल रही है।
7: बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा, चांस क्यों लेना।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:44 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं। उरांव लोकगीतों का कलाकार हैं नारायण भगत और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक में आज आप आनंद ले रहे हैं उरांव लोकगीतों का, नारायण भगत और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे उरांव लोकगीतों का। कलाकार थे नारायण भगत और साथी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और समय निकालकर आप हमारे जो है कार्यक्रम भी आप ज़रूर सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आइए जानते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। श्रोताओं, भगत सिंह जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 28 सितंबर को सन 1907 को लायलपुर ज़िले के बंगा, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, के एक सिख परिवार में हुआ। उनका पैतृक गांव खटकण कलां है, जो पंजाब भारत में स्थित है। श्रोताओं, ये एक जो है भगत सिंह जी एक किसान परिवार से आते थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह संधु और माताजी का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के सदस्य थे। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह संधु और घर के कुछ सदस्य कारावास में थे। उन्हें वर्ष 1906 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया था। श्रोताओं, भगत सिंह जी ने अपने गांव में ही अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह जी ने उनका दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। वहीं पर उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवत चरण और कुछ अन्य लोगों से हुई। उस समय आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी। उस समय लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह जी ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इधर भगत सिंह युवाओं में देश प्रेम के बीज बो रहे थे और उधर उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। श्रोताओं, भगत सिंह जी ने शादी से साफ मना कर दिया। भगत सिंह जी कॉलेज में अनेक नाटक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होते थे, जिससे वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही भगत सिंह ने अलग अलग देशों में हुई क्रांति के बारे में अध्ययन किया और बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। लेकिन वो करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय जी से अत्यधिक प्रभावित थे। श्रोताओं, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। बस इस हत्याकांड ने उनके छोटे से दिमाग में देश को आज़ाद करने का जुनून जो है पैदा कर दिया। ये बिगुल था अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के रद्द होने के बाद उनका गुस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ और बढ़ गया। वो गांधी जी का सम्मान जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना सही समझा। श्रोताओं, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु थे। श्रोताओं, भगत सिंह जी के जन्म के समय उनके पिताजी कारावास में थे। भगत सिंह जी ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। उनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज थे, इसलिए इन मामलों से बचने के लिए उन्होंने ईरान जो है उन्हें जाना पड़ा। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह जी की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था।
अपने देश के लिए मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने प्राण निछावर जो है कर दिए। भगत सिंह जी ने बचपन से ही अत्याचार देखे थे, वे अपने लोगों को प्रताड़ित होते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण निछावर किए। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से शहीद भगत सिंह भी एक थे। श्रोताओं, शहीद भगत सिंह जी को भारतीय आंदोलन के सबसे प्रभावशाली युवा क्रांतिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की कम उम्र में ही अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिसके कारण वो आज़ादी की लड़ाई के समय सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन बन गए थे। श्रोताओं, शहीद भगत सिंह देशभक्ति जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसा विरोधी भयंकर विस्फोटों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके पास विचार और बुद्धि की एक अपूर्व प्रतिभा भी थी, जिससे वे सांप्रदायिक तर्ज पर भारत के विभाजन का पूर्वानुमान लगा सकते थे। उस समय के बहुत से प्रमुख नेता भी इस बात का अनुमान लगाने में असमर्थ

व्यस्त थे। धर्म से ज़्यादा देश के हितों को ध्यान में रखते हुए परिपक्व और तर्कसंगत विचार उनके एक प्रमुख गुण को प्रदर्शित करते थे। श्रोता, उनकी शैक्षणिक योग्यता इस तथ्य को प्रदर्शित करती है कि वह केवल उन्मादी जनांदोलनों के जनक ही नहीं थे, बल्कि अपनी राय और विचारों को अच्छी तरह से सोच समझ कर प्रकट करते थे। वे छोटी सी उम्र में ही नौजवानों को देश की आज़ादी के लिए प्रोत्साहित करने लगे, इसलिए वे आज़ादी की लड़ाई के समय सभी के लिए एक आदर्श स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह जी अपने युवा साथियों के साथ मिलकर देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। उनका मानना था कि युवा कुछ भी कर सकते हैं और देश के नौजवान देश को आज़ाद करा सकते हैं। भगत सिंह सभी नौजवानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए नई दिशा दिखाते रहते थे। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। आज भी सभी युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे भगत सिंह। श्रोता, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। वे खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे। वे गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश पुस्तकों को जला दिया करते थे। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। इस वजह से भगत सिंह जी उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी से वे जुड़ गए या जुड़ने की सोचने लगे। गांधी जी ने जब किसानों जो है श्रोताओं, उसके बाद भगत सिंह जी जो है थोड़े निराश हुए, उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास उठ गया। तब उन्होंने फैसला किया कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। बाद में वे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर पार्टी में शामिल हो गए। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 क्रांतिकारियों को कारावास की सज़ा मिली, जिससे भगत सिंह इतने अधिक क्रोधित हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था, जो बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो सकें। श्रोताओं, भगत सिंह जी की पहली मुलाकात जब चंद्रशेखर आज़ाद से हुई तो भगत सिंह जी ने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश के लिए है और देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी वो कसम पूरी कर दिखाई। श्रोताओं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब भगत सिंह लगभग 12 वर्ष के थे। जब भगत सिंह को इसकी खबर मिली तब वे स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है या नहीं। हालांकि वे भी अन्य देशवासियों की तरह महात्मा गांधी जी का सम्मान करते थे। श्रोताओं, भगत सिंह जी ने चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारी सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में वो दिन जब 9 अगस्त 1925 को शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए चली पैसेंजर ट्रेन, जिसे रास्ते में पड़ने वाले छोटे से स्टेशन काकोरी में रोककर ब्रिटिश सरकार का सारा खजाना लूट लिया गया, ये घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। श्रोताओं, सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही खड़े रहे, जिसके बाद इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे। इस तरह लाठीचार्ज से आहत होकर उनकी मृत्यु हो गई। श्रोताओं, इस घटना से भगत सिंह जी से रहा नहीं गया और उन्होंने एक गुप्त योजना के तहत पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर के कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो।
गोपाल जी के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिप कर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 एएसपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक जो है उन पर हमला किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह जी ने भी जो है उन पर हमला किया। श्रोता इन दोनों ने जैसे ही वहाँ से भागना शुरू किया तभी एक सिपाही ने इनका पीछा करना शुरू किया। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसे सावधान किया, नहीं मानने पर उन्हें गोली मार दी गई और फिर वो मर गया। इस तरह इन्होंने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए थे जिसमें लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रोताओं भगत सिंह जी ने बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ 1929 में असेंबली में बम धमाके की योजना बनाई। ये बम सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के आगाज़ की सूचना अंग्रेज़ों के लिए पहुंचाना था। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेज़ों तक उनकी आवाज़ भी पहुंच जाए। इस काम में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको पूरा सहयोग किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने एक जो है एक एक बम फेंके। योजना के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने दोनों क्रांतिकारियों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद ना था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। धमाके में किसी की मौत नहीं हुई थी। धमाका अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए किया गया था और उनके द्वारा कुछ पर्चे भी बांटे गए। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। भगत सिंह जी के पास मौका था भागने का और वो आराम से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से मना कर दिया क्योंकि वो गिरफ्तार होने के लिए ही आए थे। बम धमाके के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ वो कुछ पर्चे लाए थे उनको हवा में उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस जो है उन्होंने उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह जी और उनके साथियों को फांसी दे दी। भगत सिंह जी को विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और जागरूक हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद नहीं हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। चूँकि भगत सिंह खून खराबे के पक्षधर नहीं थे परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे। वे समाजवाद का पक्का पोषक था। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह जी को शहीद का माफ कीजिएगा श्रोताओं जेल में भगत सिंह जी ने लगभग 2 साल व्यतीत किए थे। इस समय अंतराल में वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। श्रोताओं जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उस समय भगत सिंह द्वारा लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से कई पूंजीपतियों को अपना जो है विरोधी बना लिया था या विरोधी बताया था। श्रोताओं 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह जी को जो है अपराधी करार दिया गया। 7 अक्टूबर 1930 को जो है उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को उन्हें यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई। श्रोताओं शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान को आज भी याद किया जाता है। हर साल उनकी मृत्यु तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन
उन्हें देश के सभी जनों द्वारा श्रद्धांजलि।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, आज 28 सितंबर है और आज जन्मदिन है मशहूर पार्श्व गायक का, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका थीं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता जी को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज़्यादा फिल्मी जो है हिंदी फिल्मों में गीत गाए। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। श्रोताओं, लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती जी की बड़ी बेटी थीं। लता जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि उनकी माँ गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ जी ने नर्मदा जी की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। श्रोताओं, पंडित दीनानाथ जी का उपनाम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया उपनाम चुना। लता जी के जन्म के साथ उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ जी को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। बाद के बाद जो है लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। श्रोताओं, बचपन से ही लता जी को घर में गीत संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी की ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता जी अभिनय भी करने लगी। लता जी को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई थी। श्रोताओं, लता जी जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता जी पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थीं। लता जी समझ गई थी कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी, और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। श्रोताओं, सन 1949 में फिल्म रिलीज हुई महल। इसमें खेमचंद प्रकाश जी ने लता जी से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला जी पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता जी के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद जो है लता जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचे और लता मंगेशकर जी के स्वर में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। श्रोताओं, लता जी को कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। सन 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सन 1999 में पद्म विभूषण, सन 2001 में भारत रत्न। श्रोताओं, घड़ी की सुई कह रही है कि हमें अब इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। तो इसी के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का
विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ममता के इस गीत से।
1: लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म उनको उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ममता फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म ये वादा रहा का ये गीत है। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

0: दिल तेरा दीवाना। इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं कुछ ज़रूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय

0: केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रस रंजन में। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म आंधी का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद, अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी,
1: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
2: जी।
1: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद

0: आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है, अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से। डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
0: ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं।
1: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
0: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं।
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए। कुष्ठ रोगियों की तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
0: जी।
1: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
0: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
0: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
0: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
2: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
3: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
2: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
3: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
2: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
3: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
2: उसने सोचा,
3: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
2: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
4: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
1: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है,
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे। हाँ, बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं
5: जा रहा है, क्या
6: मसला है? ठीक है,
3: चलो भगवान सब ठीक
2: हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा।
7: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
8: शोक सूचना?
7: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
7: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
7: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
9: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
10: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
10: थापा जी कैसे हैं?
7: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
10: कैसे समाचार?
7: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
4: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
10: अरे वो हमारा गौरव है,
9: हमारा गौरव है।
4: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
7: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
10: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
9: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: जब तक सूरज चांद रहेगा,
11: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
4: भारत माता की
11: जय।
4: भारत माता की
11: जय।
12: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
13: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
12: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
13: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
12: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
4: ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले,
13: आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
12: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
0: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
1: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
0: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
1: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
0: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
1: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
0: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
1: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
0: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। वो जल्दी से जल्दी सहायता दीजिए, पर इनको रोक के रखो।
3: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
3: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
3: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मार कर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
3: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे। कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की पट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: ला दिखा तो।
4: हाँ, अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
5: जिंदा है।
4: बहुत खुशी हुआ बेटा।
5: जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
7: जगबंधु,
6: चेतना,
7: अर्शद,
6: सौम्या,
2: प्रसून
6: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:29 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के बारे में बताना चाहूंगा। अभी भी खबर आई, भारत ने मेडल पक्का कर लिया। जी हाँ, मुक्केबाजी की बात कर रहा हूं मैं। मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरह की वो मुक्केबाज है, धाकड़ मुक्केबाज है, उनका वही खेल देखने को मिला। जी हाँ, ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए महिला 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्वेन सेओंग को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हरा दिया है। लवलीना ने मुकाबले के तीनों राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। तीनों राउंड में भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 5-0 का फैसला रहा। इस शानदार जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए एक पदक और पक्का हो गया है मुक्केबाजी में। अब लवलीना की नजरें फाइनल में जगह बनाने की होगी और पदक का रंग भी बदलना चाहेंगी।
1: एंड नाउ देयर इज बिग न्यूज फ्रॉम क्रिकेट एज वेल, विद टीम इंडिया थ्रू टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स मेंस टी20 टूर्नामेंट विद अ बॉल विदाउट बीइंग बोल्ड एट ऑल। इंडियाज क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट अफगानिस्तान वाज अबैंडन्ड विदाउट अ टॉस ऑफ बिकॉज ऑफ अ पर्सिस्टेंट रेन, बट हियर इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। इंडियाज हायर आईसीसी टी20 रैंकिंग बिकेम द डिसाइडिंग फैक्टर एंड अंडर द एशियन गेम्स टूर्नामेंट रेगुलेशंस, व्हेन अ क्वार्टर फाइनल इज वॉश्ड आउट विदाउट अ रिजल्ट, द हायर ranked team advances. So India's superior ranking has sent them through to the semi-finals. India will now wait for the winner of the Sri Lanka versus Nepal quarter-final to determine their semi-final opponent.
0: जी बिल्कुल, भारत क्रिकेट का पावर हाउस और क्रिकेट में भारतीय टीम आगे न बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। और अपनी रैंकिंग के आधार पर जिस तरह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उम्मीद करेंगे वहां भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को क्रिकेट में महिलाओं की तरह पुरुषों में गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। खैर, बात करते हैं यहां पर स्क्वैश की, जहां पर कोर्ट पर शानदार दमखम दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को एक तरफा अंदाज में मात दे दी। जहां पुरुषों के टीम स्पर्धा के पूल ए के मुकाबले में भारत ने चीन को 3-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से सूरज चंद्र वीर इसके अलावा वीर चोटरानी और वेलकल सेंथिल कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीतकर शानदार सफलता दिलाई है, यानी शानदार भारतीय खेमे में जीत दिलाई है। पहले मुकाबले में सूर्यचंद ने चीन के शौकीन डू को कड़े संघर्ष के बाद 11-4, 11-2, 12-10 से हराया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद वीर चोटरानी ने कोर्ट पर अपना दमखम दिखाया, दबदबा बनाए रखा। उन्होंने हाइजोन ली को लगातार 3 गेम में 11-5, 11-5, 11-3 से हराकर भारत की जो बढ़त थी 2-0 कर दी। और तीसरे मुकाबले में वेलन सेंथिल कुमार ने पोलिंग झोउ को, जो उनके खिलाफ, जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ शानदार खेल दिखाया। वेलन ने यहां पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, वेलवन ने यह मुकाबला 11-3, 11-2, 11-4 से जीतकर भारत की झोली में 3-0 के ये जीत दिला दी। इस तरह भारतीय पुरुष टीम ने चीन के खिलाफ तीनों मुकाबले जीतकर क्लीन स्वीप किया और पूल

0: में अपने अभियान को और मजबूती दी।
1: Let's now turn our attention to archery and the women's compound individual event where India had two strong contenders in action today and Chikita Taniparthi has saved. So we begin the round of 32 while talking about Jyoti Surekha Venom, who got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. She produced a strong performance to take the match 148 and 145 moving into round of 16. But the next challenge was a tough one. In the round of 16, Jyoti came up against Korea's Kang Yun Soo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150, which brings her individual campaign to an end here. And now the focus shifts to Chikita Taniparthi, who has given us one of the most dramatic finishes of the day so far. She began her round of 32 match against Bhutan, and she came through that context comfortably, winning 149-140. And then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were logged at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off, and Chikita held her nerve when it mattered the most. She survives, she wins the shoot-off, and she is through to the quarterfinals. And the next challenge is already set. Chikita will be back in action in the quarterfinals on October 1st, where she will face Indonesia's Narusha Ashrifa.
0: बात शूटिंग की करते हैं। शूटिंग में भारत के लिए अच्छी खबर है। ट्रैप स्पर्धा में दूसरे दिन के मुकाबले में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्वालिफिकेशन में पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में बनी हुई है। महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन में 4 राउंड और 100 शॉट के बाद नीरू ढांडा 95 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारत की मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत भी 84 अंक के साथ 23वें स्थान पर बनी हुई है। वही टीम की बात करें, टीम स्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, पुरुष ट्रैप में शपथ भारद्वाज 95 अंक के लेकर 5वें स्थान पर है। वहीं काइनन चेनई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर, यानी पुरुषों के लिए फिलहाल 5वां स्थान सुनिश्चित है।
1: And now we just have a medal event underway in Karachi, where India's Pinky Balara is on the mat in the women's 78kg semi-final, taking on South Korea's Myo Soo Min.
0: बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ईशा सिंह 25 मीटर पिस्टल में एक्शन में नजर आएंगी, फाइनल मुकाबला खेलेंगी। फिलहाल अब तक की अपडेट में यहीं तक। मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी बस को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे जापान में आयोजित होने वाले 20वें एशियन गेम्स 2026 से जुड़ी ताजा एफएम अपडेट्स। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देरों में आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन का कार्यक्रम जोहार रांची।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जुहार रांची। सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि और
1: विश्वजीत
0: का जुहार नमस्कार। हाजिर हैं हम जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हमारा दैनिक कार्यक्रम जुहार रांची के एक नए अंक को लेकर। इस कार्यक्रम में होंगी मनोरंजन की बातें, काम की जानकारियां, इतिहास के कुछ खास पन्ने और हमारे शहर और देश से जुड़ी रोचक बातें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ।
1: बिल्कुल छवि जी, आपने सही कहा कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं सुविचार के साथ। तो आज का जो सुविचार है वो बहुत ही स्पेशल है। कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं, हमें और मजबूत बनाने आती है। इसीलिए हालात चाहे जैसे हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक छोटी सी पंक्ति, हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है।

0: इस सुंदर से गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम जोहार रांची में। अब समय है जानने का मौसम का हाल, ताकि आप अपने दिन की बेहतर योजना बना सकें। आइए जानते हैं आज का रांची और आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, 28 सितंबर यानी कि आज के दिन 2026 को रांची में मौसम गर्म और बादलों वाला रहने की संभावना है, साथ ही हल्की बारिश और
1: या छवि
0: बौछार
1: जी,
0: की
1: जैसे
0: भी।
1: कि मौसम विभाग की ये सूचना है कि रांची केंद्र के मौसम विभाग ने ये बताया है कि अनुमान लगाया है कि 28 सितंबर से राज्य के लोगों को लगातार जो बारिश हो रही थी उससे राहत मिलेगी, और अब से लेके 3 अक्टूबर तक बारिश नहीं होने की संभावना है, ये
0: हाँ,
1: चेतावनी दी गई है। तो लगातार बारिश के कारण जिस प्रकार जनजीवन अस्त
0: अस्त
1: व्यस्त हो
0: व्यस्त,
1: गया था
0: बिल्कुल।
1: उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर 4 से 5 डिग्री की सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि गर्मी का तापमान बढ़ सकता है।
0: बढ़
1: भले ही
0: सकता
1: बारिश
0: है,
1: रुकी है, लेकिन मौसम चाहे जैसा भी हो, हम सबको मौसम का आनंद लेना
0: आनंद
1: चाहिए।
0: लेना चाहिए
1: और
0: बिल्कुल। और मैं बता दूं कि अलग अलग पूर्वानुमानों में तापमान लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 27 से 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बताया गया है। तो 28 सितंबर को रांची में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। और ऐसे में बाहर निकलते समय मौसम का ध्यान रखें और सेहत के प्रति भी सावधान रहें।
1: बिल्कुल,
0: विश्वजीत,
1: मौसम बदल रहा है तो ऐसे में हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने सेहत के प्रति हमेशा जागरूक रहने की जरूरत है। चलिए एक
0: बिल्कुल
1: गाना सुन लेते हैं छवि जी।
0: बिल्कुल।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में अब वक्त आ गया है इतिहास के उन पन्नों को पलटने का जिनमें हमारे अतीत की प्रेरणादायक घटनाएं दर्ज हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि इतिहास के पन्नों से और इतिहास के घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। वर्ष 1066 में विलियम्स द कॉन्कर ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था आज ही के दिन, जिसके बाद नॉर्मल विजय का दौर शुरू हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1924 में अमेरिकी सेना के विमानों की एक टीम ने पहली बार हवाई मार्ग से पूरी दुनिया का एक चक्कर पूरा किया था। ये वाकई में अद्भुत है। आज ही के दिन वर्ष 1928 में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज से जुड़ी महत्वपूर्ण खोज की, जिससे आधुनिक एंटीबायोटिक चिकित्सा का रास्ता खुला। और वर्ष 1995 में आज ही के दिन इसराइल और फिलिस्तीन मुक्त संगठन PLO के बीच वेस्ट बैंक और गाजा से संबंधित अंतरिम समझौता पर हस्ताक्षर भी हुआ था।
0: बिल्कुल, और अब हम इतिहास और समाज को अपने योगदान से समृद्ध बनाने वाले उन महान विभूतियों को हम सभी नमन करते हैं जिनका निधन आज के दिन हुआ था।
1: जी हाँ, आज ही के दिन 1895 में लुई पाश्चर, प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक और माइक्रोबायोलॉजी के अग्रणी वैज्ञानिक का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1970 में मिस्र के प्रमुख राजनीतिक सेना और राष्ट्रपति गमाल अब्दिल नासिर जी का भी निधन हुआ था। वर्ष 1991 को प्रसिद्ध अमेरिकी जैज संगीतकार और ट्रम्पेट वादक का निधन भी आज ही के दिन हुआ था, नाम था माइकल्स डेविस। और वर्ष 2000 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पेरे डुंडो का भी निधन आज ही के दिन हुआ था। हम सभी की ओर से श्रद्धांजलि।
0: बिल्कुल श्रोताओ, इतिहास के रोचक सफर के बाद अब वक्त है कार्यक्रम के अगले पड़ाव का।
1: हाँ जी हाँ, हम लोग बात ही करेंगे अब आज ही के दिन जिन्होंने जन्म लिया, उन विभूतियों को भी हम आज नमन करेंगे। सबसे पहले प्रिंजर वाडो, 1934 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी अभिनेत्री और गायिका का जन्म हुआ था आज ही के दिन। एंड सुलीवन, 1901 में प्रसिद्ध अमेरिकी टीवी होस्ट जिनके कार्यक्रम ने कई बड़े कलाकारों को मंच दिया, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है। इसके अलावा भगत सिंह, 1907 को आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन स्वर कोकिला, महान गायक, महान भारतीय गायिका और भारत रत्न से सम्मानित कलाकार लता मंगेशकर का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1929 को हुआ था। तो आइए उन्हीं के स्वर में एक मधुर गीत का हम सब मिलकर आनंद लें।
0: और विश्वजीत, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। कहा जाता है कि कुछ लोग सिर्फ जन्म नहीं लेते, वे अपने साथ एक युग की शुरुआत लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इन्हीं महान विभूतियों जिनके विचार, संघर्ष और उपलब्धियां आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं, तो आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया हुआ एक बेहद खूबसूरत सा गीत।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं जुहादाची में। कहते हैं छवि जी कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ना धन है ना वैभव है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो चुनौतियां अवसर बन जाती हैं, और यदि स्वस्थ साथ ना हो तो छोटी

0: समस्या भी बड़ी लगने लगती है। अपने शरीर का ध्यान रखना स्वयं के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा निवेश है। तो हम लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और आज एक विशेष दिन है क्योंकि आज वर्ल्ड रेबीज डे है।
1: बिल्कुल, और जो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जिनका बचाव पूर्णतः संभव है। संपूर्ण टीकाकरण द्वारा ही रेबीज से बचा जा सकता है। और देखिए, रेबीज कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि जैसे जानवरों के काटने या खरोंचने के कारण हो सकता है। तो अगर इस तरह का नौबत आए और ये समस्या हमारे साथ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? घाव को साबुन और बहते साफ पानी से तुरंत धोएं। स्प्रिट अल्कोहल या घरेलू एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें। एंटी रेबीज क्लिनिक में जाएं और चिकित्सक से परामर्श अनुसार टीकाकरण का पूरा कोर्स करें। और साथ ही ये ना करें बिल्कुल भी, घाव पर मिर्च, सरसों का तेल इत्यादि कोई अन्य पदार्थ ना लगाए और अंधविश्वास से बचे। और देखें, समय समय पर पालतू जानवरों का टीकाकरण अवश्य करवाएं।
0: देखिए, विश्व रेबीज दिवस जिसका थीम है इस वर्ष स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी कि सामूहिक प्रयास से ही संभव है। और झारखंड सरकार की ओर से 22 से लेके 28 सितंबर तक विश्व रेबीज जागरूकता सप्ताह मना रही है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये जानकारी दे दूं कि एंटी रेबीज वैक्सीन सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है।

0: शबी जी, अगर मिजाज सही हो ना तो फिर घूमने का भी मौका मिल जाता है और बहाना
1: बिल्कुल
0: निकाल ही लेते हैं। तो अब हम
1: बिल्कुल
0: लोग बात ही करेंगे हमारे जोहर राजी कार्यक्रम में एक पर्यटक स्थल के बारे में। और
1: और देखिए, पर्यटन स्थल जो है ना, पर्यटन सिर्फ सफर नहीं, अनुभवों को समेटने का नाम है। नई जगहों को देखना, वहाँ की संस्कृति को जानना, स्थानीय खान पान का स्वाद लेना और प्रकृति के करीब कुछ पल बिताना, यही तो पर्यटन की खूबसूरती है।
0: और बिल्कुल हमारे झारखंड तो अनमोल है ना। झारखंड की बात करें तो यह पर्यटनों के लिए और पर्यटकों के
1: खजाना
0: लिए
1: है।
0: बिल्कुल एक खजाना है। प्रकृति और संस्कृति दोनों की अनमोल छटा देखने को मिलती है। झरने, पहाड़, जंगल, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल इन राज्य को खास बनाते हैं। जलप्रपात हो या फिर अन्य झरने हो या फिर जंगल हो, पहाड़ हो, हर चीज मतलब मन मोह लेती है।
1: बिल्कुल, पर्यटन का महत्व केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलता है और किसी क्षेत्र की संस्कृति देश दुनिया तक पहुंचती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे हम अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं पर्यटकों के माध्यम से, क्योंकि जब हमारे राज्य में, हमारे देश में पर्यटक आते हैं तो साथ में लेकर आती है मजबूती आर्थिक रूप से, और साथ ही साथ हमारे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे निवेशक हैं, साथ ही साथ जो हस्तशिल्प कलाकार हैं उनको
1: हाँ,
0: भी एक
1: उन्हों
0: कहीं ना
1: भी
0: कहीं आत्मविश्वास मिलता है।
1: और रोजगार भी मिलता है, कमाई के
0: रोजगार भी
1: अवसर
0: मिलता
1: भी
0: है।
1: मिलते हैं बहुत सारे।
0: तो जब भी मौका मिले किसी नई जगह को जाने का जरूर जाइए, क्योंकि जिंदगी में काम तो होते ही रहेंगे और समय निकालना किसी नए चीजों के बारे में जानना ये आपके लिए बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: जरूरी है। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: जो रांची में छवि जी, अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, क्योंकि आए दिन और अक्सर हम सुनते हैं कि सड़क हादसों के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में एक डेटा सामने चलकर आया है कि झारखंड हमारे देश में तीसरे नंबर पे है, जब हर साल हो रही है लगभग 4100 से ज्यादा मौतें। इससे पहले आपको ये बता दूं कि वर्ष 2023 और 24 में मिजोरम पहले और बिहार दूसरे स्थान पे था, तो अब झारखंड हमारा तीसरे स्थान पे हो चुका है। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023-24 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट में ये आंकड़ा सामने आया है। और सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता, एक्सीडेंट रिकवरी और मामले में झारखंड लगातार 2 वर्षों से देश में तीसरे नंबर पे है। वहीं मिजोरम पहले नंबर पे, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार दूसरे नंबर पे है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023-24 में बताया गया है कि वर्ष 2023 में 90.6% गंभीर सड़क हादसों के साथ मिजोरम सबसे ऊपर है। वहीं 80.6% गंभीर सड़क हादसों के मामलों में बिहार दूसरे नंबर पर, जबकि इसी साल में 78.5% आंकड़े के साथ झारखंड तीसरे स्थान पे है। ऐसे में हमें थोड़ा सा और भी सतर्क रहने की जरूरत है, और खास करके जिस प्रकार सड़क परिवहन की ओर से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को अगर हम नहीं मानते हैं
1: नहीं
0: तो
1: फॉलो
0: इस
1: करें
0: प्रकार
1: तो गंभीर
0: की
1: समस्या है। जैसे आप सड़क पे निकलते हैं, दो पहिया वाहन पे हैं, तो अपने हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, और चार पहिया वाहन पे है तो अपने सीट बेल्टों का प्रयोग जरूर करें। जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं जो लोग, दोनों को बहुत ही जरूरी है सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इससे हमारी जीवन की जीवन बहुत सुरक्षित रहेगा, और हमें हर हालत में नियमों का पालन करना ही चाहिए,
0: बिल्कुल नियमों
1: वरना
0: का
1: क्या
0: पालन।
1: होगा। अगर हम
0: हाँ
1: नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमारे चालान भी ऐसे ही कट जाएंगे जो कि ऑनलाइन काटे जाते हैं। तो क्या लगता है कि इन विषय पर
0: हाँ
1: ध्यान देने
0: बिल्कुल,
1: की बहुत ज्यादा जरूरत
0: जो
1: है?
0: भी रूल्स रेगुलेशन बनाए
1: हाँ
0: गए हैं उसको बिल्कुल हमें मानने की जरूरत है। और झारखंड सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सड़क के किनारे जो खड़ी गाड़ियां होती है उस पर कार्रवाई होगी। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में हाल ही में आपने देखा होगा और सुना होगा छवि
1: बिल्कुल
0: जी, के
1: बिल्कुल
0: 24 सितंबर को हुई दर्दनाक सड़क हादसे के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री
1: बिल्कुल
0: दीपक बिरुवा ने राज्यसभा में और मुख्य और सहायक सड़कों में गलत तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। तो ऐसे में जब भी आप वाहन लगाते हैं सड़क के किनारे, तो ऐसी जगह पे ना लगाए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे
1: हाँ आने
0: और
1: जाने
0: आपकी वजह
1: वाले
0: से किसी की जिंदगी
1: हाँ
0: जा सके।
1: जा
0: तो ऐसा
1: सके।
0: कार्य ना करें, और निश्चित रूप से जितना हम सब इस नियमों को मानते हैं उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए, अपने के लिए और हमारे राज्य के लिए, देश के लिए।

0: विश्वजीत कहते हैं, खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं, बल्कि एक अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और टीम भावना का प्रतीक है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा छवि जी, और निश्चित रूप से आप क्या इशारा कर रही हैं, यानी कि कार्यक्रम के बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव पे हैं, और ऐसे में खेल से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां भी हमारे श्रोताओं तक हम पहुंचाना चाहेंगे। तो सबसे पहले एशियंस गेम, जो कि 20वां एशियंस गेम जो कि चल रहा है जापान में, तो ऐसे में अगर मेडल्स टैली की बात कर ले तो अभी भी चाइना जो कि पहले स्थान पे है कुल 123 गोल्ड मेडल के साथ, वहीं इंडिया ने अभी तक कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 16 रजत पदक और 18 कांस्य पदक के साथ 38 मेडल्स अभी तक जीते हैं। कल की अगर बात करें तो सर्वेश कुशारे ने रजत जीतकर इतिहास रच दिया, 56 वर्ष बाद ऊंची कूद में ये पदक आया है।
0: और भारत के सर्वेश कुशारे ने रविवार को ऊंची कूद में इतिहास तो रचा ही है, और ये छलांग इन्होंने लगाई है 20 मीटर 25, यानी कि 2.25 मीटर ऊंची छलांग लगा के रजत जीता है, जो कि 56 वर्ष बाद एशियाई गेम्स में ये इवेंट में जीता है विश्वजीत। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे
1: से। हाँ, इससे पहले 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स में भीम सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सर्वेश स्पर्धा में काफी समय तक शीर्ष पर रहे, लेकिन 2.25 मीटर की ऊंचाई को पहली कोशिश में पार नहीं कर पाने के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गए। चीनी ताइपे के चाओ शुआन फू ने ये ऊंचाई अपनी पहली कोशिश में पार कर ली और जिन्हें गोल्ड मेडल जीता। वहीं एक और अच्छी खबर है कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर से गोल्ड से चूक गई सोजन, 6.53 मीटर की सर्वश्रेष्ठ प्रयास से जीता सोजन ने सिल्वर मेडल।
0: बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है, सिल्वर भी लाना बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है हमारे इंडिया के लिए, और हम सब इससे बहुत ही खुश है और इन्हें बहुत ज्यादा हमें प्रोत्साहित करते हैं। और देखिए, भारत की ऐसी ही एनजी सीजन ने रविवार को यहाँ एशियाई खेलों की महिला लंबी कूद स्पर्धा में अधिकांश समय बढ़त बनाए रखी और अंत में उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कोई बात नहीं, ऐसी ही 6.53 मीटर सर्वश्रेष्ठ प्रयास के दूसरे स्थान पर रही।
1: बहुत सारे अभी भी मेडल्स की उम्मीदें हैं। वहीं डेकाथलन में तेजस्विनी का 7,934 अंक के साथ ब्रॉन्ज पर भी कब्जा रहा, कल आपने देखा होगा। वहीं क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कल आपने देखा किस प्रकार वेस्ट इंडीज को भारतीय टीम ने एक बड़े लक्ष्य को हासिल करते हुए विराट कोहली का एक विराट शतक देखने को मिला, और निश्चित रूप से विराट की पारी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मानो 37 साल की उम्र में इस प्रकार से बैटिंग करते हुए नजर आए। अद्भुत बैटिंग बल्लेबाजी। और हॉकी में भी भारतीय महिला टीम ने सिंगापुर को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो लगातार अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और इन्हीं उपलब्धियों के साथ उन्हें और भी अच्छा करें, इन्हीं शुभकामना के साथ चलिए एक और गीत सुन लेते हैं।

1969 में पद्म भूषण, 1979 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें 3 बार प्रदान किए गए और दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाए जाने वाली कलाकार के रूप में 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। अब देखिए ना कितनी ही अनोखी आवाज थी लता मंगेशकर की। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज के जो हमारा सवाल है उसके लिए मैं आपसे यही पूछूं। तो आज का बॉलीवुड सवाल यही है, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जल्दी से लिखकर ये बता दीजिए कि कौन सा वो पहला गीत था जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पहली बार लता मंगेशकर को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार किस गीत के लिए दिया गया था, जल्दी से उसे बता दीजिए। लिखकर भेज दीजिए 9868107070 पर। यदि आपका जवाब बिल्कुल सही होगा तो आप बन जाएंगे हमारे आज के बॉलीवुड सरताज और आपका नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में हमारे मन पर। ठीक है, तो जल्दी से लिखकर भेजिए लता जी का वो कौन सा गीत था जिसके लिए उन्हें पहली बार नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

0: और अब वक्त है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Welcome back to the Asian Games live update where the nerves are high and the latest action has kept us right on the edge of our seats. I am Vidushi Watts with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest twists, turns and medal moments from Asian Games. And what a moment we have to begin with. India has struck silver in shooting and it is Aisha Singh who has done it for us. What a spectacular contest this has been. Shoot-off after shoot-off, the pressure kept mounting, the margins kept getting finer, but Aisha held her composure and kept her focus right till the very end. A brilliant performance, a brilliant medal, and another moment of pride for the Indian contingent. Shahid, please take us through that incredible contest and Aisha Singh's journey.
3: बिल्कुल विदुषी बताना चाहूँगा, नर्व्स को बिल्कुल दिलों की धड़कन को रोक देने वाला मुकाबला था, असली शूटिंग, जबरदस्त शूटिंग देखने को मिली और ईशा सिंह ने क्या अपने नर्व्स पे काबू रखा था। एक वक्त लग रहा था एलिमिनेट हो जाएंगे, एक वक्त लग रहा था तीसरे पर आएंगी और अंततः तक दूसरे स्थान पर रहती। भारत की स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। फाइनल में ईशा सिंह और चीन की शाओ जियू शुआन के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दोनों बार शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा। दूसरे शूट आउट में ईशा आखिरी शॉट नहीं लगा सकी, जिसके बाद चीन की शाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ईशा ने रजत पदक के साथ भारत की निशानेबाजी के जो पोटली है उसमें एक और पदक डाल दिया। इससे पहले के मुकाबले के बारे में बता दूं, वो भी बेहद रोमांचक मुकाबला था जो दूसरे और तीसरे स्थान के लिए खेला गया। वहां ईशा ने किम हॉन सुंग को 3 शूट आउट के बाद हराया। दूसरे शूट आउट में ईशा 3-2 से आगे थे लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मैच रोकना पड़ा। उसके बाद तीसरे शूट आउट में ईशा ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबले में पहुंची। वहां पर जिस तरह से देखा हमने, बहुत टाइट मुकाबला था, ईशा ने सिल्वर मेडल हासिल किया।
2: What a spectacular display of sport that was, you know, the immense pressure, margins, my God, it was truly a sight of delight. And that wonderful performance in shooting fresh in our mind, let's also tell you about another medal for India from the Kurash Arena, where Pinky Bulhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. She was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min, and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garam 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing a medal for India. This is also a significant moment for Indian courage. Pinky's medal is the only India's third ever Asian Games medal in this sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at the 2018 Asian Games, while at the 22 ones her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. And it is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
3: बिल्कुल, मुक्केबाजी से भी सुबह अच्छी खबर आई। जैसा कि कल हमने देखा, 3 भारतीय मुक्केबाज उन्होंने फाइनल में, सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया। हालांकि सेमीफाइनल में वो खिलाड़ी जीतते हैं तो पदक का रंग और अच्छा होगा, लेकिन

0: आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहाइन, जिनसे उम्मीद भी थी कुछ शानदार प्रदर्शन करेंगी और अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया। 5-0 से अपना जो मुकाबला था, क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, वहां पर जो दक्षिण कोरिया की मुक्केबाज थी स्वेन सोइंग को हराकर जीत दर्ज कर ली। उन्होंने एक और पदक पक्का कर लिया। हालांकि जिस तरह से शूटिंग में हमने देखा पदक आया, उसके बाद एक और मेडल आया जैसा विदुषी ने बताया, अब यहां पर मुक्केबाजी से एक और पदक पक्का हो गया। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, शाम तक मुकाबला पहुंचेगा, एशियन गेम्स के मैच खेले जाएंगे, भारत की और स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी।
1: Absolutely, it has been a very interesting morning for the Indian contingent so far. And while we wrap up this update, let's give you a quiet update from tennis as well, where India's women's doubles campaign has came to an end. Rutuja and Ankita, the 8-seeded Indian pair, faced Kazakhstan in the first round. It was a really closely fought contest. India took the opening set 7-5, but Kazakhstan fought back strongly to take the second set 6-3. That meant the match went into a deciding match tiebreaker, and unfortunately for India, Kazakhstan held their nerve to win 10-5. So the final score reads as 7-5, 3-6, 5-10. And for now, keep listening to Akashwani for the latest updates from the Asian Games. This is Vidushi Vats with Mohammed Shahid Azmi, and we will be back with more thrilling action in our next early update. Thank you.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त छवि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला नगमा हम लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गाने के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा सावन से। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के। इस गाने की फरमाइश आई थी छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मिका बिरक। और श्रोताओं, आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गीत लिखे हैं समीर अंजान ने, संगीत दिया है निखिल विनय ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के। और जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की है उनके नाम इस प्रकार हैं: इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्ला नूरजहां, बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदवा कौर, साथी आप हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोने से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से

कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म बागी से। गीत को लिखे हैं समीर अंजान ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और आवाजें हैं अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल के। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान डाही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदी नाज, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, छाविंद कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा। फिल्म का नाम है दाग द फायर। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के, गीतकार समीर, संगीतकार राजेश रोशन। और इस गाने की फरमाइश आई है अशोक नगर रांची से मनीष, कमला, दीपक, अजीत, सानवी, सोनू, रजक, काजल, प्रदीप कुमार वर्मा, सरोज कुमार वर्मा, मयंक प्रकाश, मंजूर प्रकाश, रक्षिता, अंशु, निशु, धैर्य, प्रकाश, गौरव, सोनम और श्वेता, इनके परिवार के ढेर सारे सदस्य। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने ही वाले हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम गृह लक्ष्मी। आज इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे नागपुरी भाषा में और इस कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत है वंदना रॉय और सुमन। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

0: कार्यक्रम सुनोया सब श्रोता बहन बन के सुमन बहन बटले जोहार संगे हैं वंदना बहन राउत को हो जोहार
1: कार्यक्रम सुनवैया सब बहन मन के वरना बटले जोहार और सुमन बहन राउर को जोहार और कहो कैसन हाल समाचार है।
0: हमार हाल खबर तो सब नगद नगद है और आसरा करीला कि हमरे के जे सुनवैया बहन मन है ओह मनक हाल खबर सब नगद नगद हो गई है नी
1: सुमन बहन। और देखो नहीं सब बेस रहले हैं बेस पूजा
0: सही कहली
1: और महिला मन के खासकर स्वस्थ रह कर तो बहुत दरकार है काले की उमने परिवार कर धूरी हो गए ना।
0: और देखो वंदना बहन हमरे तो हर दिन साझा करेला अपन बहन मन से हर दिन कर दिवस कर बारे में भी बातचीत करेला है नी तो ओहे तरी आज भी एगो खास दिन हके आज 28 सितंबर हके जैके की गोटा विश्व में रैबीज दिवस कर रूप में मना जाए के कहल जाएला। और
1: आज का दिन जो है सेकर जो उद्देश्य है रेबीज बटे जागरूकता पसराए और खतरनाक बीमारी से बचाव कर उपाय कर जानकारी देवे
0: सही बात।
1: तो सुमन बहन चलो आज हमरे मन सबसे पहले जानब कि रेबीज बीमारी का होवेला। ये एगो ऐसा वायरल बीमारी है जे कोनवे संक्रमित स्तनधारी जे पशु होवेला सेकर काटले या उकर चाटले माने उकर लार से मनुष्य में फैलेला।
0: हाँ।
1: और कुत्ता जे होवेला से इस संक्रमण का सबसे मुख्य स्रोत हके। इकर लक्षण दिसल बादे ई बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा होवेला से ले जानवर कर काटल बादे हमरे मन के तुरंत बचाव और चिकित्सा सहायक लेवा कर बहुत जरूरत है।
0: सही कहली। और देखो कि ई बीमारी जो है खास संक्रमित जानवर कर काटले और इकर में जो वायरस रहेला उकर से फैलेला है नी। और रैबीज एगो ऐसा बीमारी भी है जैकि की सही समय पर असावधानी से अगर उकर उचित चिकित्सीय देखरेख करल जाए तो इके हमरे रोक सकीला। और रेबीज जो है आदमी का जो मस्तिष्क है और उकर तंत्रिका तंत्र रहेला उके भी प्रभावित कर देवेला जेकर से कि आदमी के बचेक चाहिए। और ई बीमारी कर बढ़ले जे व्यक्ति है से गंभीर तरी से परेशान हो जाएला। और सहेले कोई भी संक्रमित या संदिग्ध जानवर अगर काटे या खरोचे तो इके छोट बात नहीं समझे चाहिए और छोट समझ के नहीं छोड़े चाहिए है नहीं।
1: सही कहली सुमन बहन। और रेबीज कर बचाव ले सबसे सही तरीका है अगर जानवर काटे या खरोचे तो तुरंत हमरे मन के सही कदम उठाए चाहिए और डॉक्टर कर सलाह लेवे चाहिए। कुत्ता जे होवेला से रेबीज का संक्रमण करे को प्रमुख कारण है से तो हमरे मन जानवे करीला।
0: सही।
1: लेकिन खाली कुत्ता नखे इकर जिम्मेवार कुछ और स्तनधारी जानवर मन भी है जेकर से रेबीज फैलेला। और ये भी हमरे मन के समझे कर दरकार है कि हर एक कुत्ता या सब जानवर में से संक्रमण नहीं होवेला। लेकिन कोनवे जानवर कर काटल बादे या उकर व्यवहार के देख के हमरे ये पता नहीं लगा सकीला कि हमरे मन के डॉक्टर जाए चाहिए। हाँ कि रेबीज के है और के ना कि नखे से ले हमरे मन के डॉक्टर जा जरूर जाएक चाहिए और पता करेक चाहिए।
0: सही कहली। और देखो कि संगे है अगर कोई जानवर काइट ले है तो अगर सबसे पहले वो जगन हमरे के तुरंत साबुन और बहुत पानी से करीब करीब 15 मिनट तक धोवे चाहिए है नी। और इकर बाद जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर जगन जाएक चाहिए और जेकर से कि डॉक्टर रेबीज से बचाव ले सही टीका और सही दवाई देवे। और उके सबसे खास तरी ध्यान रखे वाला बात है वो ई रहे लवन्ना बहिन कि घाव के बिल्कुल नजरअंदाज या अनदेखा नखे करेक और इके तनिकुन खरोच है ई कही के नखे छोड़े

0: कि तुरंत हल्का सा खरोंच है, हल्का सा घाव होते और उके कुछ दिन छोड़ देली, उकर बाद जाती डॉक्टर लाली, एक चीज कभी नहीं करे।
1: और देखो हमरे मन के घाव कर ऊपर कोनवे मिर्चा तेल माटी या कोनवे इसने घरेलू चीज के नहीं लगाए के चाहिए, अपने से मने हमरे मन के कोनो उपाय नहीं करे के चाहिए। तुरंत हमरे मन के स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करे के चाहिए और डॉक्टर कर मुताबिक रेबीज वैक्सीन और कुछ मामला में रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन यानी कि RIG देवे कर सलाह भी मने देवे ना, चले हमरे मन के डॉक्टर बटले बताल जे टीका ओकर पूरा कोर्स भी जरूर करे के चाहिए।
0: सही कहली, जे भी उपचार हमरे के बताल जाए है या अवगत करवाल जाए है उके पूरा करे के चाहिए, उके बीच में हमरे के कभी भी नहीं छोड़े के चाहिए। और हमरे कर आसपास जे बहुत ढेर कन आवारा कुत्ता मन भी देखब की घूमत रहे ना, चाहे अन्य पशु मन भी रहे ना, उ मनक से सावधान रहे कर संगे संगे हमरे के उ मन से मानवतापूर्ण व्यवहार रखे के चाहिए। खास करके छुआ मन के समझाए के चाहिए कि जानवर के छेड़ा मत, संगे संगे परेशान भी मत कर और एकदम उकर नजदीक नखे जाएक। और अगर जानवर घायल है या अपन छुआ कर संगे बैठल है, कुछ दूध पिया थे चाहे कुछ करे थे, तो उके
1: देखो खाए के बेरा भी मन के परेशान नहीं
0: एकदम नहीं छेड़े के चाहिए। और जानवर मन के पत्थर कभी देखब कि छुआ मन चलाए देवे ना, चाहे परेशान करे ना, तो ये सब गलत काम नहीं करे के चाहिए। और जानवर उकर से डराए जाएला और आक्रामक व्यवहार करे लागेला, यह हमरे के पशु मन के संगे संवेदनशीलता कर संगे व्यवहार करे के चाहिए, जेकर से उमन में शांत रहे।
1: एकदम सही कहली, ई रहे हमरे के बचाव कर तरीका। लेकिन अगर हमरे के और अच्छा से उमन से बाचेक है तो टीकाकरण उकर सबसे प्रभावी बचाव
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ, वो तो
1: देखो निकोन में पालतू कुत्ता बिल्ली कर हमरे मन के जरूर समय समय पर रेबीज का टीका दिलवाए के चाहिए, अगर घर में हमरे मन उके पोसत थे। और जानवर कर काटेक से बाचेक और काटल कर तुरंत बाद चिकित्सा सहायता जरूर लेवे के चाहिए। और ये विश्व रेबीज डे है उकर मुख्य संदेश यह है कि जागरूकता फैलाए और पशु मनक टीकाकरण और हमरे ले समय पर इलाज रेबीज से होवे वाला मृत्यु के रोक
0: सही
1: कहेला।
0: और देखो कि छुआ मन के सबसे जरूरी रहले कि जरूर जागरूक करे के चाहिए। और काले कि उ मन के जानवर मन कर संगे खेले कर बहुत ज्यादा दरकार रहेला, खेलत रहे ना देखब की। और रेबीज कर बारे में जरूर बताए के चाहिए कि अनजान कुत्ता और जानवर के नजदीक ना जा, अगर कोई जानवर सुतल है तो उके ना छेड़ा, और संगे है अगर जानवर कुछ खात पियत है से हो घरी में परेशान करे है नी, तो हमरे के इकर ध्यान रखे के चाहिए। और संगे संगे डॉक्टर बटले जे भी सलाह दिल जाए है टीकाकरण कर
1: हमरे मन के जागरूक होवे कर जरूरत है और जागरूकता पसराय कर भी जरूरत है। अगल बगल में भी हमरे मन के सब कर जानकारी जरूर देवे के चाहिए। तो सुमन बहन चलो एखन हमरे मन तो जान ली विश्व रेबीज डे कर बारे में, और आप हमरे मन सुनब नागपुरी लोकगीत सरिता देवी और संगे मन कर गावल।

0: हाँ तो सुनवैया बहिन मन, एखन हमरे मन सुनली नागपुरी लोकगीत सरिता देवी और संगी मनकर गावल। तो सुमन बहिन, जैसे कि हमरे मन नागपुरी साहित्य में एखन बातचीत करत थी नागपुरी कर कुछ आधुनिक कवि मनकर विषय में, तो चलो आज हमरे मन जानब कवि लाल रण विजयनाथ सहदेव और कवि मधु मंसूरी हंसमुख कर जीवन गाथा।
1: बिल्कुल, तो देखो कि कोनवे विजय भी साहित्य में समय कर संगे उकर काव्य कर भाव छंद रचना कर विधान और उकर मुताबिक राग रागिनी भी बदलेला, है नी। और युग और समय कर रचना और रचनाकार मन उपरे बहुते प्रभाव पड़ेला। उदाहरण खातिर गोस्वामी तुलसीदास अगर रामचरित्र मानिस कर रचना नहीं करते तो रामायण कर इतना प्रचार प्रसार सायदे हो तक। हर भाषा और काल में हमरे मन इसने परिवर्तन पाविला।
0: सही गली बहन, और नागपुरी काव्य साहित्य में भी ऐसन परिवर्तन बेरा बेरा से होते रहलक। इके है हर युग में हर काल में आधुनिक नाव तेल जायल। साहित्य में आधुनिकता कोनो एगो काल खंड कर बात नहीं लागे, बल्कि हरेक 25-30 वर्ष में जे नाव आवेला वह मोटा मोटी आधुनिकता या आधुनिक रचना कहायला। अज्ञात काल कर जे लोक गीत है वहे राग रागनी में केव शिष्ट गीत बनाए दिलक, तो केव एक किस्म से के आधुनिक बनाए दिलक। और शिष्ट गीत में केव भक्ति मूलक पद, केव श्रृंगार परक पद, केव प्रकृति चित्रण, केव जीवन दर्शन, केव शौर्य या वीरता परक आदि भाव कर रचना कर लें, तो नवा युग में वो आधुनिकता कहलालक। उदाहरण खातिर अगर लोकगीत में कोनो रचना लोकप्रिय होलक है ओहे धुन में दोसर भाव कर गीत केव पिरोए दिलक है, तो उके आधुनिक गीत कर भाव दे जा सकेला।
1: सही गली, और ऐसा बहुत रचनाकार मन नागपुरी में होला है जे मन रामायण महाभारत से लेकर के एखन कर युग और समाज कर जेकर में प्रतिबिंब झलके ला, वैसन भी रचना करके आधुनिकता के स्थापित करना है। नागपुरी काव्य साहित्य में जहाँ परंपरा से राग रागिनी में निबद्ध गीत आते जाते और छुए थे, आधुनिक रचना मन में भी छंद मुक्त कवि कर सिलसिला भी सौ देखे के लिए मिलेला। कुछ कवि मन कर रचना भिन्न भिन्न भाव जुदा जुदा शैली और जुदा जुदा पृष्ठभूमि में मिलेला, जे कि आधुनिकता कर सहज उदाहरण मानल जाएला। तो चलु यह भाव भूमि कर संगे नागपुरी कर कुछ आधुनिक प्रसिद्ध रचनाकार कर ई दोसर कड़ी में हमरे जानब कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव और कवि मधु मंसूरी मुख कर जीवन गाथा।
0: कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव मूलतः लापुंग प्रखंड अंतर्गत लालभंज गांव कर निवासी रहे और बाद में रांची कर करम टोली स्थित अपन आवास में रहे लागले। इनकर जन्म माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी संवत 1996 में हुए रहे। पिता कर नाम रहे महाराज कुमार छोटे लाल लक्ष्मीनाथ सहदेव। मूल रूप से ई पालकोट राज परिवार से जुड़ल रहे। लाल साहेब कर शिक्षा दो दुगो विषय लेके एमए से रहे। कानून कर पढ़ाई भी कर लें, अपन पेशा वकालत रहे, लेकिन झारखंड कर संस्कृति भाषा और साहित्य ले जिंदगी भर उस संघर्ष में संघर्षरत रहले।
1: सही, और देखो कि राजनीति और सेवा में लाल साहेब कर बड़ रुचि रहे। झारखंड पार्टी कर अध्यक्ष एनई होरो कर पार्टी में महासचिव कर रूप में खूब सेवा कर लें। सांस्कृतिक क्षेत्र में लाल साहेब कर अद्भुत योगदान रहे। प्रकाशित किताब में पूजा कर फूल और जागी जवानी चमकी बिजली मुख्य है और कैठो गीत कविता कर रचना और अनुवाद प्रकाशित रह गेलक।
0: अप्रकाशित
1: रण विजय नाथ शाहदेव के ओज और श्रृंगार कर गीत कविता में महारत हासिल रहे और बहुत दिन तक नागपुरी कला संगम से लाल साहेब भी जुड़ल रहे।
0: नागपुरी पत्रिका पजरा निकसाइक में लाल साहेब कर बहुत बड़ योगदान रहलक। आकाशवाणी रांची से इनकर रचना कर बराबर प्रसारण होत रहे। नागपुरी में शिष्ट काव्य कर परंपरा के आगे बढ़ाई में लाल रण विजय नाथ सहदेव कर रचना कर योगदान के केव भुलाई नहीं पारी। लाल नाथ सहदेव का निधन लंबा बीमारी कर बाद सन 1918 ईस्वी में हो गलक और इनकर एगो बेटा और बेटी दूगो बेटी परिवार में है जिनकर विवाह हो चुके है।
1: सही काली,
0: तो उनकर लिखल कैठो सुंदर रचना है। जिंदगी तोय का दिले मोकेरे नीत अचरंग देबू तोके, डेंगे डेंगे भरमाले धीर नहीं रहेक दिले, सोना तजी बिछवाले पीतर के,
1: और गीत अछरंग देबू तोके बड़ा सपना देखा ले, आकाशे देलुआ झुला ले, खोट काले घाव मोर, सुखल के नीत अंगरंग अछरंग देबू तोके, नेह रस में डुबाले प्रेम माला मधु वाले, तले तोरु वाले हार गाथल के।
0: तो ये रहे उनकर लिखल सुंदर एगो रचना। कर बादे हमरे मन जानब अब कवि मधु मंसूरी हंसमुखकर जीवन गाथा, लेकिन सुमन बहन चलू उकर से पहले हमरे मन सुन लेवी ला एगो नागपुरी लोकगीत रूना देवी और संगीमनकर कावल।

0: मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो सुमन बहन, ये रहे विज्ञापन संदेश। उनकर से पहले हमरे मन सुन ली रुना देवी और संगी मनकर गावल नागपुरी लोकगीत और नागपुरी साहित्य कर ये कड़ी के हमरे मन आगे बढ़ाईला और जानीला नागपुरी कर आधुनिक कवि मधु मंसूरी हंसमुख कर जीवन गाथा।
4: नागपुरी साहित्यकर स्वनाम धन्य हस्ताक्षर मधु मंसूरी हसमुखकर जन्म रातू प्रखंड कर सिमलिया गांव में 4 सितंबर 1948 ईस्वी के हुए रहे। इनकर पिता कर नाव अब्दुल रहमान और माए कर नाव मनी परवीन रहे। माय बेड़ो प्रखंड अंतर्गत गढ़गांव निवासी रहे और मधु मंसूरी हसमुख चार भाई रहे। अपन 4 गो बेटा और 3 गो बेटी हैं। श्री मंसूरी कर शिक्षा दीक्षा बेसी नहीं हो पाए लख कि ई बेरा कर हर झारखंडी परिवार जन्म से मरण तक गरीब झेलते रहें बिताए दिले हैं। तेकरों में आजीविका ले कोनो तैर रांची स्थित मेकॉन्स में रिटायर होवे तक काम करत रहे और एखन सेवा निवृत्त बाद साहित्य सेवा कर काम में लागल रहे। श्री मंसूरी कर प्रकाशित किताब मन में नागपुरी लोकगीत दिल के अभिलाषा और मधु मंजर है। व्यस्त ऑफिस कर काम कर बावजूद बराबर साहित्य सृजन और उकर प्रचार प्रसार में लागल रहलें एखनो तक लागल हैं।
3: रातू गढ़कर लाल चिंतामणि नाथ सहदेव कर आशीर्वाद इनके मिल रहे। अपन बातचीत में नागपुरी साहित्य बटे रुझान और लोकप्रियता कर श्रेय हमेशा नागपुरी साहित्य प्रेमी और साहित्य सेवी राय परिवार के देवे कखनो नी बिसरल। इनकर कतना कतना रचना चोरी हो गलक तेव में एखनो 80 रचना कंठ में है। श्री मधु मंसूरी बतायना कि लगभग 6500 सांस्कृतिक आयोजन में एखन तक भाग ले चुके हैं। 164 धाम आकाशवाणी रांची से इनकर समर्पण और लगाव कर संगे झारखंड सांस्कृतिक में योगदान खातिर भारत सरकार इनके पद्मश्री कर उपाधि ले भी चुनाव कर रहे हैं।

0: वास्तव में कवि साहित्यकार कर असत्य जिंदगी और साहित्य सृजन होवेला जेकर में हमरे कोनवे साहित्यकार मनकर मरम के जाने पारीला। नागपुरी कवि मधु मंसूरी हंसमुख वास्तव में माटी कर ऐसन लाल हैं जिनकर स्वर हजारों हजार कर भीड़ एके संगे थिरके के लिए एकनो विवश कर देवेला। इनकर मौलिक रचना में जहाँ काव्य कर नयापन कर रूप बसेला तो आधुनिक रचना मन में माटी कर गंध। मधु मंसूरी कर रचना सुर लय शब्द भाव प्रस्तुति पर बस सबके मन के मोह लेवेला।
1: सही कहली। और ठेठ राग रागिनी में नावा शब्द नावा भाव अलंकार है तो आधुनिक गीत में लोक जीवन कर उदात्त और राग रंग में संभल भाव भूमि कर नावा चित्र। कुल मिलाए के श्री हंस मुख कर रचना मन लोक चेतना कर भाव भरेला तो नावा संसार कर स्वप्निल संसार में भेदुआए देवेला। आओ मधु मंसूरी कर कुछ रचना मन में एकर मूल विचार कर विश्लेषण दोहराय न करेला। सर्वाधिक प्रसिद्ध पावल रचना में इनकर है नागपुर कर कोरा जेकर वर्णन खातिर कोनो नाव नावा शब्द संधान कवि नहीं करें बस आपन आसपास कर बात करते करते कवि बहुत कुछ कही देवेना।
0: तो चलो सुमन बहन हमरे मन सुनीला उनकर एगो लिखल बहुत प्रसिद्ध रचना। नागपुर कोहा नदी नाला टाका टुकु वन रे पत्रा खोइस ले खोसा कांसी फूल डिंडा समय मूला मूला नागपुर कर छोरा चांदो रे चांदो रे चांदो रे चांदो रे कोड़ा भहित जावे चांदो हमर प्रेम तोड़ी कते दिना अलंग डिंडा जन्म ठाम छोड़ी कोड़ा मैत जाबे चांदी हमर प्रेम तोड़ी।
1: सही गली। और जाबे जहां पाबे कहां हरी नागपुर छुआ बेरा खेलत रही ईटा परवल धूर तोर बिना सुना सुना कुया पोखर डाड़ी कोड़ा भैत जाबे चांदो हमर प्रेम जोड़ी।
0: तो ई रहे कवि मधु मंसूरी हंसमुख कर जीवन गाथा।
1: बिल्कुल। और देखो अब हमरे एक जानकारी कर बेरा के हमरे कर तो फिर आई एगो बात के जान ले ले कि हमरे जे हमरे बहन मन ही महिला मन ही इवन तो एगो सशक्त नारी और सशक्त समाज का निर्माण करे ले महिला कर स्वावलंबी होवे सशक्त होवे बहुत जरूरी है नहीं। तो देखो कि सशक्त नारी सशक्त समाज कर अर्थ भी यह है कि जब देश और समाज कर महिला मन शिक्षित होवे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होवे तो गोटा परिवार और राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ी और कोई भी समाज कर समग्र पूरा तरी जब विकास होवेला तो महिला कर स्थिति उ मनक स्वतंत्रता उपरे ही निर्भर करेला। जब महिला जनारी है हमरे कर उनकर शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक अवसर और निर्णय कर जे क्षमता होवेला उ पुरुषों से बराबर रही माने कहो कि अपन समाज में बराबरी कर अधिकार कर संगे चली सारा चीज रही तबे एक आगे बढ़े कर अवसर भी मिलेला और उमन अपन जीवन के बेहतर बनाए पारे ना गोटा समाज और राष्ट्र कर उत्थान में योगदान देवाए ना। आज कर महिला और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक ई देखल जाए चुक है कि एगो जे सशक्त महिला है वो एक समृद्ध और न्यायपूर्वक समाज कर निर्माण कर सके ना।
0: सही कहली सुमन बहन। और देखो नी एगो नारी जो होवेला से वास्तविक रूप से सशक्त बनाए के लिए उके शिक्षा महिला सशक्तिकरण कर सबसे पहले मजबूत सीढ़ी हके। शिक्षित नारी अपन अधिकार कर प्रति जागरूकता और कुप्रथा कर विरोध और अपन घर परिवार के बेहतर जीवन दे सकेला। आर्थिक आत्मनिर्भरता से सामाजिक समानता और इस सबसे महिला गरिमा पूर्ण जीवन भी जी सकेना और सशक्त हो सकेना।
1: सही कहली।
0: और देखो नी सशक्त नारी सशक्त समाज एगो ऐसन विचार है जे कि देखायला कि कोनवे समाज कर समग्र विकास महिला कर प्रगति और सशक्तिकरण कर ऊपर निर्भर करेला। जखन समाज कर आधा आबादी के समान अधिकार शिक्षा और अवसर मिलेला तो गोटा समाज उकर से आत्मनिर्भर और मजबूत बनेला।
1: सही कहली।
0: और देखो सशक्तिकरण ले सबसे जरूरी है शिक्षा।
1: शिक्षा
0: तो सबसे पहले महिला के न शिक्षित करे कर जरूरत है जेकर से कि वो अपन अधिकार के समझी और गोटा परिवार के वो जागरूक बनाई और उमन के आर्थिक स्वतंत्रता देवे कर बहुत जरूरत है। उकर संगे उमन कर स्वास्थ्य और पोषण बटे भी हमरे मन के ध्यान देवे के चाहिए।
1: कुप्रथा के भी समझाना उमन एकदम, एकदम, है नहीं कि कोई भी गलत कुप्रथा अगर है
0: उमन के सामान अधिकार और सुरक्षा कर बटे भी जरूर जानकारी होवे के चाहिए। तो सुमन बहन अब हमरे कर जाय कर भेरा होते तो अगला कार्यक्रम में बहन मन कर संगे हमरे मन फिर से गोठियाब। तब तक खातिर देव विदा
1: जोहार।

0: KBS 아이티 나고야.
1: Welcome back to your Asian Games live update where India has already given us some wonderful reasons to celebrate this morning. I am Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest action, medal moments and twists and turns from the games. And what a morning it has been for India. We have seen Aisha Singh deliver a brilliant silver medal in shooting followed by Pinky Balhara adding a bronze in courage. Two more podium finishes, two more moments of pride, and the Indian medal tally continues to grow. It has been a morning full of intensity, composure, and some truly memorable performances from our athletes. Shahid, let's begin by taking stock of where India stands right now. What does the medal tally look like?
2: बिल्कुल भारत 12वें स्थान पर है. भारत ने 4 गोल्ड, 17 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज समेत 39 पदक जीते. इन 39 पदक में एथलेटिक्स ने 13 पदक दिए जबकि शूटिंग ने 12 पदक दिए. यानी 12 13 25 पदक इन सिर्फ दो खेलों से भारत को मिले हैं. जबकि अगर बता दें ओवरऑल बताएं सबसे ऊपर चीन अभी भी बना हुआ है. 125 गोल्ड, 51 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज समेत 220 पदक जीते. वहीं जापान 39 गोल्ड, 64 सिल्वर, 61 ब्रॉन्ज समेत 164 पदक जीते हैं. वहीं कोरिया की बात करें 21 गोल्ड, 26 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज समेत 90 पदक जीते. कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं जिसके 10 गोल्ड थे अब 9 गोल्ड हो गए. कैसे हो गए बताता हूं आपको. हालांकि आमतौर से देखा जाता है हर देश जब मुकाबला जीतता है उसकी संख्या जो उसके पदकों की संख्या बढ़ती है उसके घट गए. कैसे घटे बता देता हूं आपको. कजाकिस्तान की यास्मीन टोखानबोवा का महिला मैराथन रेस वॉक का परिणाम रद्द कर दिया गया है. यास्मीन ने 42.195 किलोमीटर की स्पर्धा में 3 घंटे 22 मिनट 20 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया था. लेकिन रेस के बाद उनके जूतों को लेकर विरोध जताया गया. वर्ल्ड एथलेटिक्स ने स्वीकृत जो फुटवियर नियम के तहत जांच के बाद उनका परिणाम डिस्क्वालीफाई कर दिया यानी रद्द कर दिया. इसके बाद चीन की डांगजेंग कुंगजोंग को स्वर्ण पदक मिला. वहीं मा एल जो चीन की ही खिलाड़ी हैं उनको यहां पर रजत पदक मिला. जबकि जापान की ओमेनो वाई को कांस्य पदक हासिल हुआ. वहीं भारत की मंजू रानी जो छठे स्थान पर थी इस रेस को खत्म होने के बाद उनका पांचवां स्थान हो गया. हालांकि भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिलेगा.
1: This is precisely why we say all of these updates are full of twists and turns because you never know what is going to come for you next. Just like this one, because now we're going to talk about the action that is continuing on the water as well with Indian sailors competing across both men's and women's events and several races that are still underway. So starting with the men's skiff, India's Prince and Manu had a strong opening race, finishing second in race one with Oman taking the top spot. Race 2 is currently underway, so there is still plenty to play for. And in the men's dinghy, Vishnu finished 9th in race 1 and 2 of the qualification series, with China leading the race and race 3 being delayed right now. Moving to the women's events, Harshita and Sheetal finished 4th in race 1 of the women's skiff, with Hong Kong, China taking the top position. Their race 2 is now underway as well. In the women's dinghy, Netra finished 6th in the opening qualification race, with Singapore at the top, and once again race 2 is currently running. And finally, in the mixed dinghy, Shraddha and Ravindra finished 8th in the race 3 of the opening series, with Japan taking 1st place. Race 4 is now on, so we are still waiting for the latest positions from the Indian pair.
2: आज क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी. भारत बनाम अफगानिस्तान का एक मुकाबला होने वाला था जो बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. हालांकि भारत ने पिछला मुकाबला जापान से खेला था. आह और वाह का मुकाबला था. बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम ने उस मुकाबले को जीता था. आज उम्मीद की जा रही थी जब भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी तो एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. लेकिन बारिश की वजह से रद्द हो गया मुकाबला. लेकिन अब भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की जो विजेता टीम होगी उससे सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह भी बता दूं भारतीय टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंची, चूंकि वरीयता और रैंकिंग के आधार पर फैसला किया गया कि भारतीय टीम को आगे पहुंचाया गया और भारतीय टीम सेमीफाइनल उतरेगी. और हां, एक और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसमें पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी पहले पहुंच चुकी है.
1: While we are giving you these updates, there are some action which is coming in live from the squash courts where the women's team match has started. The Pool C match number 3 between India and Japan has started, which is after their victory on China by 2-1 earlier today. So the next update that we will be coming to you in an hour, we will come with the results of the squash match, which is just starting right now. Until then, stay tuned to Akashwani. This is Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi bringing you all the latest updates from Asian Games. See you in an hour. Thank you very much.
0: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: Well, you were listening to the Asian Games 2026 update, and now we're back with Play It Cool. And it would absolutely be incomplete if we don't talk about her, Taylor Swift, who has just added 4 new songs to The Life of a Showgirl, which is her new album. And one of them has people talking because it seems to be very much about her husband, Travis Kelce. The song is called Cleveland, and it is not a random name because that's where Travis Kelce grew up. So far, the lyrics video is out and it features a very adorable clip of the sweet couple on a car ride, probably towards Cleveland. And in the song, Taylor talks about how Travis doesn't care what the rest of the world thinks about her, and she calls him the love of her life. Well, Taylor Swift writing a song about her husband? Yes. It's very on brand, but it's full of love. So happy that she knows that she has found her person.
4: अभी आप सुन रहे थे जापान में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल 2026 से संबंधित ताजा एफएम अपडेट्स. ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. प्रस्तुत है फिल्म संगीत. फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और आज हम बातें करेंगे लता मंगेशकर के ऊपर. सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है. उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे दिल में उतर जाती है. कुछ सुर सिर्फ गीत नहीं होते, वे यादों का हिस्सा बन जाते हैं. ऐसे ही एक अमर आवाज है भारत की स्वर कोकिला, सुरों की सामग्री लता मंगेशकर. आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बातें करेंगे उस महान गायिका की जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों के भावों को शब्द और सुर दिए. 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता जी ने अपने संगीत सफर में भारतीय फिल्म संगीत को एक ऐसी पहचान दी जिसे आने वाली पीढ़ियों भी याद रखेंगी. बचपन से ही संगीत की शिक्षा, संघर्षों से भरा शुरुआती सफर और फिर अपनी सुरीली आवाज के दम पर आसमान छूती सफलता. लता जी की कहानी केवल एक गायिका की कहानी नहीं बल्कि समर्पण, साधना और सुरों के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है. तो आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया हुआ एक बेहद ही खूबसूरत गीत.

श्रोताओं, इस सुरमई सफर की शुरुआत करते हैं लता जी के बचपन से। संगीत उनके लिए महज एक कला नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न अंग था। संगीत की पहली शिक्षा उन्हें अपने पिता और प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार एवं शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर से मिली। छोटी उम्र से ही लता जी ने सुर और संगीत की बारीकियों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। समय बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन संगीत के प्रति उनका समर्पण कभी नहीं बदला। संघर्षों के बीच उनकी आवाज ने धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई और फिर वह दौर आया जब उनकी आवाज हिंदी सिनेमा के गीतों की पहचान बन गई। उनकी आवाज में कभी प्रेम की कोमलता सुनाई दी तो कभी विरह की कसक, कभी

देशभक्ति का जोश और कभी भक्ति की गहराई। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की सुरीली यात्रा का एक यादगार गीत।

लता जी की आवाज में ऐसी सादगी और गहराई थी कि हर गीत अपनी एक अलग कहानी कहता हुआ महसूस होता था। फिल्मी गीतों के साथ साथ उन्होंने भजन, देशभक्ति गीत, गजल और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनकी गायकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे गीत के शब्दों और भावनाओं को इतनी सहजता से प्रस्तुत करती थी कि सुनने वाला खुद को उस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता था। लता जी की संगीत साधना को देश ने अनेक सम्मानों से नवाजा। भारत रत्न सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके शानदार योगदान के साक्षी है। आइए उन्हीं का गाया हुआ एक और खूबसूरत सा गीत सुन लेते हैं।

0: इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। लता जी के अमर सुर को नमन और आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे संगीत के एक और सुरेले सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ और संगीतमय रहे।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाई ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, जनगणना के लिए समय निकालकर जरूर ले भाग। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव का दावा, 13 करोड़ से अधिक नाम काटे गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर लगाया बदनाम करने का आरोप। धनबाद में जापानी इंसेफ्लाइटिस के 2 मामले, 1 मरीज की मौत। रांची से जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। सोनारे बिंदल मॉल फायरिंग मामले में एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। रायपुर से 4 साजिशकर्ता गिरफ्तार। और सीआईएससीई नेशनल कैरम चैंपियनशिप में धनबाद की सुमेधा स्तुति को मिला स्वर्ण। अंडर 19 वर्ग में दोनों खिलाड़ी सहित बिहार झारखंड की टीम पहले स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने निर्वाचन आयोग और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के तहत देश भर में करीब 13 करोड़ नाम हटाए जा रहे हैं। हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में 13 करोड़ से अधिक नामों के ड्राफ्ट रोल से बाहर होने की बात सामने आई है।
1: पूरे देश में एसआईआर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम थे। इसीलिए हमने कहा देश में पहली बार लोकतंत्र पर खतरे की घंटी बज रही है, यह कभी इन 76 वर्षों में देखने को न मिला जो आज हम सबको देखने को मिला है। इस कारण पूरे देश में आक्रोश।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और भारत को देश विदेश में बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्तों को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी निशाना साधा।
2: एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में छपने के बाद मानो उनको लगातार राहुल गांधी जी को बड़ा कोई आते पहली घटना नहीं है। देश के राहुल गांधी देश को किस प्रकार से बदनाम कर गए थे या भारत को कैसे कमतर आंकने उन्होंने कोशिश की, वो सर्वविदित है। विदेश में भी जाकर के भारत की छवि को कैसे धूमिल करना। देश के अंदर भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भी तब से कांग्रेस पार्टी मोदी जी के विरोध में।
0: धनबाद में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 1 बच्चे की मौत और 1 अन्य मरीज में संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। रांची से विक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की टीम आज धनबाद जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बीमारी की रोकथाम के उपायों की समीक्षा करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर और लार्वा नाशी दवाओं के छिड़काव के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार दूसरे संक्रमित बच्चे का धनबाद के SNMMCH में इलाज चल रहा है और इसके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। CCL की महत्वाकांक्षी CSR पहल CCL विद्यासारथी 2026 का रांची में शुभारंभ किया गया, जिसके तहत 400 चयनित विद्यार्थियों को JEE और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए 2 वर्षों तक निशुल्क प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा। कमांड क्षेत्र के 10 DAV प्रशिक्षण केंद्रों पर संचालित इस कार्यक्रम के लिए रांची केंद्र से 60 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया गया है। जमशेदपुर के सोनारी स्थित बिंदल मॉल फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चारों फायरिंग की साजिश में शामिल थे, लेकिन रेस्टोरेंट में जाकर गोली चलाने वालों में शामिल नहीं थे। पुलिस ने चारों को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया। घटना के बाद आरोपियों की तलाश में SIT ने बंगाल और आसपास के इलाकों में छापेमारी की थी तथा CCTV फुटेज खंगाले। झारखंड विधानसभा की प्राकलन समिति ने आज सरायकेला सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। समिति के सभापति हेमलाल मुर्मू ने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन वेयरहाउस फिजियोथेरेपी केंद्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर जमा कूड़े कचड़े को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @xhandle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज का विषय है मेक इन इंडिया। पिछले वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी है।
3: जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया तब कुछ लोगों ने शंकाएं आशंकाएं जताई थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है।
0: मेक इन इंडिया को लेकर पूर्वी सिंहभूम के व्यवसायियों ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में सक्रियता बढ़ने और नए नियम लागू होने से छोटे उद्योगों को कारोबार करने में कई तरह की सुविधाएं मिली हैं।
4: नमस्कार, मैं हर्ष बाकरेवाल। हमारा उद्योग है एमएसएमई को अलग से क्लस्टर करने से हम लोग को एक बहुत फायदा हुआ है। काफी सारी चीजें डिफरेंशिएट हुई है, काफी रूल्स आए हैं जिसके अंडर हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हम लोग को इजी गोइंग बिजनेस हो सके।
5: हमें सबसे बड़ा बिजनेसमैन के तौर पर अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट हमें ये मिला कि हमें टाइमली पेमेंट मिलता है।
0: पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत पतरातू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की पहचान के लिए विशेष आकलन शिविर लगाए जाएंगे। गुड्डा में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अशोक कुमार और आनंद झा का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है।
6: 23 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किए और लगभग 85,920 रुपए कैश, जो लैपटॉप है, फोन है, वो सब बरामद किए। सभी लोग जो पकड़ाए ये मतलब विक्टिम है, हैबिचुअल ऑफेंडर है और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी रहा है।
0: आज भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के शुरुआती सत्र के दौरान भारी गिरावट देखी गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 963 अंक गिरकर 72,932 पर आ गया, जबकि निफ्टी 306 अंक गिरकर 22,834 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। धनबाद के कार्मिल स्कूल की सुमेधा तिर्की और स्तुति गुप्ता ने केरल में आयोजित 7वीं CISCE नेशनल कैरम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 19 बालिका वर्ग में दोनों खिलाड़ियों सहित बिहार झारखंड टीम ने पहला स्थान हासिल किया। दोनों ने प्रतियोगिता में लगातार 6 मुकाबले जीतकर अपना प्रदर्शन कायम रखा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, जनगणना के लिए समय निकालकर जरूर लें भाग। SIR को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव का दावा, 13 करोड़ से अधिक नाम काटे गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर लगाया बदनाम करने का आरोप। धनबाद में जापानी इंसेफ्लाइटिस के 2 मामले, 1 मरीज की मौत। रांची से जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। सोनारी बिंदल मॉल फायरिंग मामले में SIT को मिली बड़ी सफलता। रायपुर से 4 साजिशकर्ता गिरफ्तार। और CISCE नेशनल कैरम चैंपियनशिप में धनबाद की सुमेधा स्तुति को मिला स्वर्ण। अंडर 19 वर्ग में दोनों खिलाड़ी सहित बिहार झारखंड की टीम पहले स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की हमारी कलाकार हैं अनीता सेन।

अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की हमारी कलाकार थी अनिता सेन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं 20वें एशियाई खेल 2026 से संबंधित FM अपडेट्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। चलिए आज इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं, स्क्वैश से बात करते हैं, जहां कांटे की टक्कर है, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओमाहिल टीम स्पर्धा के पूल सी मुकाबले में भारत की जापान के बीच रोमांचक टक्कर है। भारत ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहला मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन जापान ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया है। पहले मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने जापान की एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-8 रनों से हराकर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे मैच में अनाहत सिंह और सातुमी वतानबे के बीच जो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला, उसके बाद वहां अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मुकाबला 1-1 से बराबर पर है। तीसरे मैच पर सभी की निगाहें, क्या तन्वी खन्ना जापान की अकारी मिदुरुबकोवा को हराकर वापसी करती हैं, भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाती हैं। आने वाला कुछ वक्त बता देगा, लेकिन हाँ यकीनन ये मुकाबला बेहद जबरदस्त चल रहा है। अनाहत सिंह को जिस तरह यहाँ से शिकस्त मिली है, मुकाबला और ज्यादा रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंच गया है।
2: Absolutely, the events today are promising that thrill. They are promising that action that we look forward to when sports come into the play. But what is more promising is that there is plenty more action coming up for India as we move into the second half of the day. The excitement is really building, especially with a packed evening of athletics ahead. Let me give you a little overview of what is coming up for us. So we begin at 2 p.m. with squash, where India takes on South Korea in the men's team event in Pool A. Now after that we go with boxing, where Priya taking on her quarter final in the women's 60 kilogram category, and at 4 p.m. it will be Kapil in action in the men's 90 kilogram category. So there is plenty at the stake in the boxing ring this afternoon. After that is when the athletics program really take off at 2:35, where we have Seema and Sunny in the women's discus throw final, followed by the women's 400 meter hurdles final at 3:53, and where Vithya Ramraj and Anu will be looking to make their mark. After that, we turn our eyes to Santosh Kumar in the men's 400 meter hurdles final, and then comes the men's 3000 meter steeplechase with Avinash on the start list. But the excitement still keeps coming, where we have Murali Sri Shankar and Abdullah Abubakar listed for the men's long jump final at 4:30, followed by Gulveer and Yunus Khan in the men's 1500 meters. We also have Rohit and Yashvir in the men's javelin throw final, and then the women's 800 meter heats at 4:50, featuring Gautami and Pooja. The evening gets even bigger with the women's 5000 meter final, where Parul and Seema will be in action. And then, just when you think the athletic schedule could not get any more exciting, we have the relay events as well. India's men 4 into 400 meter relay team is scheduled today, followed by the women's 4 into 100 meter relay final as well. So from 2 p.m. onwards, it is going to be a packed sporting afternoon, evening, with squash and boxing leading us into what promises to be a massive athletic session.
1: जैसे ही शाम ढलेगी वैसे ही देखा जाएगा कि ट्रैक एंड फील्ड पर जबरदस्त जोरदार देखा जाएगा, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आज जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, आज जो मेडल भारत ने जीते उसकी भी बात कर लेते हैं। शूटिंग में बात करेंगे, ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत में रजत पदक जरूर जीता, लेकिन हाँ क्या मुकाबला था विदुषी, जबरदस्त मुकाबला था, 5 मरतबा शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा था, शानदार मुकाबला हमने देखा। वहीं पर कुराश की करते हैं, पिंकी बलहारा महिलाओं की 78 किलोग्राम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की मो सुमिन से हार जरूर गई, लेकिन इसके बावजूद ने कांस्य पदक हासिल हुआ। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सोन को हराकर पदक पक्का कर लिया, यानी भारत का जो जीत का सिलसिला वो लगातार आगे बढ़ रहा है।
2: Absolutely. It has been a morning full of intensity, composure, and some truly memorable performances from our athletes. And as we just shared the schedule of the day that's upcoming, which is promising us excitement, a lot of excitement and thrill. With that, we will see update. Shahid Azmi taking your leave right now, but see you real soon. Thank you.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जापान में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल 2026 से संबंधित एफएम अपडेट्स। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम है सुगम संगीत, बस कुछ पलों का इंतजार।

सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उदित नारायण को। जिस दिन से मैंने इस गाने को

0: आकाशवाणी रांची से इस वक्त आप सुन रहे हैं उदित नारायण को। आइए सुनते हैं उदित नारायण का ही गाया हुआ एक और पॉप सॉन्ग।
1: इकरार किया हमने दिल ही दिल में आज तक, तुमसे प्यार किया हमने

उदित नारायण के गाए हुए गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 2 बजने ही वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज, उसके बाद दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कैंडलस्टिक वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव हेल्पिंग इंक्रीज देयर इनकम।
1: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही।
0: Women involved in amla cultivation and related industries in Pratapgarh have expressed happiness over the Prime Minister's mention. Kamlesh Kumari of the Savitri Phule Self-Help Group thanked the Prime Minister and said that PM's word have encouraged them.
2: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं और हम लोग मेहनत किए हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं पहले, और आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
0: प्रतापगढ़ हैज मोर देन 196 यूनिट्स प्रोड्यूसिंग आंवला बेस्ड प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड आर ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड टू सेवरल कंट्रीज। ओम अवस्थी, आकाशवाणी न्यूज, लखनऊ।
3: The center will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi after the inaugural session of the National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2026, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. At the Asian Games 2026 in Japan, India's Esha Singh won the silver medal in women's 25-meter pistol individual competition at Aichi, Nagoya today. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Indian athlete Pinky Balhara secured the bronze medal in the women's under 78-kilogram Kurash event. She won the medal after defeating South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinals. Earlier, the Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi, Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the Centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bags silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram Kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsoneair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
4: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन

0: पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल N. वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047

0: तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि तीन तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
1: तीन तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल तीन तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
1: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
1: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत

0: सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
1: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों को उन्होंने साथ जाना जाए, इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम पे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, फौजी भाइयों को समर्पित हमारा कार्यक्रम जय भारती। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर से ये खूबसूरत सा गीत। गीत लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने और गायक कलाकार है रूप कुमार राठौर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सजग पड़े भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म रोग से। आवाज है मोहित चौहान की, बोलो को लिखा है नीलेश मिश्रा ने और धुन तैयार की है MM करीम ने।

0: इस खूबसूरत से गीत के साथ ही कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने इसे तकनीकी मुद्दा बताते हुए केंद्र और आरबीआई से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। रांची स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्री नहीं बल्कि बड़ा उद्देश्य ही जीवन को महान बनाता है। राज्यपाल ने युवाओं से एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्र नायक की प्रतिमा पर कालिख पोतने और उसे क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में हटिया विधायक नवीन जायसवाल और पूर्व सांसद दीपक प्रकाश सहित भाजपा नेताओं ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नेताओं ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की गहरी साजिश बताते हुए दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है।
1: ऐसे महापुरुष जो इस देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी प्रतिमा के साथ इस तरह का व्यवहार, कहीं ना कहीं ये साजिश की बू आती है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एफआईआर दर्ज कराया है। यहाँ के थाना प्रभारी से मांग किया है कि अविलंब वैसे लोगों का पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज खंगाल के अरेस्ट करके जेल भेजे और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
0: रांची में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में प्रदेश नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता की मांग करते हुए नारेबाजी की। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा मुख्य बाजार में जर्जर और जल जमाव से त्रस्त ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन लंबे समय से इस समस्या की अनदेखी कर रहा है, जिससे आगामी दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होगी। पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर खनिज संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस और झामुमो पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों की माइनिंग आय नहीं रोक रहा है और कुल राजस्व का 90% हिस्सा राज्यों को ही मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री कोड़ा ने राज्य सरकार से खनिज आय का हिसाब मांगा।
2: केवल झारखंड में ही लागू होगा ऐसे नहीं है, एमएमडीआर पूरा देश में लागू होगा, तो फिर ये इतना चिंता केवल झारखंड को ही क्यों है? झारखंड अपना खामियों को दूर करना नहीं चाहता है। आज यहाँ पर बंद पड़े खदान पर अगर खुलवा दिया जाए तो यहाँ के नौजवान लोगों को उड़ीसा जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। इसी चीज को जो नाकामी को छुपाने के लिए आप केंद्र सरकार के ऊपर में ठीकरा फोड़ रहा है।
0: हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत जलौंद गांव में वन विभाग ने अवैध आरा मिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ मोहित बंसल के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में मिल को जब्त करते हुए भारी मात्रा में अवैध लकड़ी के गोले और पटरे बरामद किए गए हैं। वन विभाग ने मौके से 3 कर्मियों को भी गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के बरही और चौपारण में बराकर नदी का जलस्तर बढ़ने से डीवीसी की 56 मौजा जमीन दोबारा जलमग्न हो गई है। इससे विस्थापित किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे रबी फसल की बुआई और पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित ग्रामीण तिलैया डैम का फाटक खोलकर जलस्तर कम करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 6 दिनों तक रांची, कोल्हान और संताल परगना सहित विभिन्न हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत बनाम वेस्टइंडीज द्वितीय टी20 मैच के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विशेष चर्चा की गई। दर्शकों को दोपहर 3 बजे से स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। और इसके साथ ही अब तक के समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। उससे पहले लेते हैं ये संदेश।
4: होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, FM रेनबो रांची पर।

0: И ай тут.
1: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
2: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश

0: कारिया जी ने, लिखते हैं,
1: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
1: जी,
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
1: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
1: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
1: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से। डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
1: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
1: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया
1: जी।
0: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
1: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं की, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
1: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था,
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
0: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है, थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
0: हमारा अगला प्रश्न था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक।

0: स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। उमंग क्रम हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माध।
0: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
2: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
3: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
2: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
3: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
2: उसने सोचा,
3: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
2: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
4: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
1: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है,
1: देखते हैं।
2: अरे वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
2: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं क्या मसला है, बिल्कुल बाहर
5: भगवान से
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
5: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
6: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
7: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
7: थापा जी कैसे हैं?
5: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: ए भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
5: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
8: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
9: अरे वो हमारा गौरव है,
6: हमारा गौरव है।
8: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी।

0: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
2: सही कह रहे हैं मुखिया जी,
1: करेंगे
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा,
4: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
3: भारत माता की
4: जय,
3: भारत माता की
4: जय।
5: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
6: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
5: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है। गांव का नाम है सुरम्य।
6: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
5: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
6: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
5: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
7: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
1: जय हिंद धन सिंह, हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
7: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
1: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
7: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
1: तुमने ठीक सुना है धन सिंह, हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
7: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
1: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
7: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।

0: भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे बढ़ो
3: सब, हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है।
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी सहायता दे।
3: पर इनको रोक के रखो।
4: हेलो हेलो, सिरी जाफ वन से मेजर धन सिंह थापा, दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास, दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
4: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
4: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
6: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
4: ये सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे। कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है। तो संभालो अपनी बंदूक, एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की पट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है।

0: जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
1: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
0: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
2: ला दिखा तो।
3: हाँ, अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
4: जिंदा है। जिंदा है धन सिंह थापा।
0: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परम वीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
6: जगबंधु,
5: चेतना,
6: अर्शद,
5: सौम्या,
6: प्रसून
5: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
6: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा, एपिसोड 11।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
9: नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा S. वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA एंड श्री अमित प्रोथी DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
10: Thank you.
6: थैंक यू।
9: डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग प्वाइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया?
10: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों के भी डेथ्स हुए थे, तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा।
9: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
6: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाए जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे,
9: नॉर्मल
6: लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेज आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सकें। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे 3 चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको 3 सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उससे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
9: तो एक्सपेंसेस
6: को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बाढ़ बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन्स भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि अब हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
9: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही जीएसडीएमए का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
11: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए और वह विशेष व्यवस्था जीएसडीएमए की, गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो जीएसडीएमए की स्थापना हुई, जीएसडीएमए की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया, विंग्स थे कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था, मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और एडीबी की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो और फिर जीएसडीएमए फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। जीएसडीएमए के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो अभी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह भी संभव हुआ। और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वो काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
9: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया किसी भी डिजास्टर किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लांट तरीका होता है, सीडीआरआई भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलियंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
6: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था. जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है. पर जब मैं नीचे आया, 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, 1 बिल्डिंग शायद गिरी थी. मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं,

0: असेसमेंट और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती हैं, उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीज़ें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तो ऐसे है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज़ मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की, पर वो गया नहीं टेक्स्ट, और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे या पुलिस को नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहें, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
2: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था, नर्मदा में जो डैम बन रहा था तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था, तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था, और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय में मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था, और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था, और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था, तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था, और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी, और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना, तब तक मैं वहाँ था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया। फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा, और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफ़ी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारे क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफ़ी है ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
0: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से, और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफ़ी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है। वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पर है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सोल्यूशन

0: देखे जाए हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है, अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की ज़रूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती, वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके हैं, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है जो इस जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी, क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पे काफी अटेंशन हमने पे करना है, और एनडीएमए के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट रात पे तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसे लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशन हैं, और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशन भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
2: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है ना, और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें, इसकी ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए, इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफ़ी कम हुआ, बारिश काफ़ी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था। लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके कारण खेती पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूँगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूँ कि उस पर असर पड़ा है। लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई, उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जन संवर्धन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। पेड़ लगाने पर, पेड़ों के लगाने से भी है ना, वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने एनडीएमए की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है, जहां हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं। जहां भी इस तरह की सूखे की स्थिति है, उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकें, उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सकें। तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा मैं कहूँगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था, उस पर भी काफ़ी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
1: मिस्टर प्रोति, हमने पानी की बात करी, हमने बाढ़ की बात करी, अगर मैं सीडीआरआई का मॉडल समझूं, आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं, और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
0: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली, अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले, कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है, अब
1: हीट वेव
0: लेकिन एक्सट्रीम हीट। अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है, 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी एसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज़्यादा जरूरत, तो ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी

0: सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिजास्टर सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी के भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है उसकी। जब भूकंप आता है वो कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पे अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पे सोच अभी काफ़ी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफ़ी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी
0: गर्मी, बट फ्लड, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है। एक और चीज़ शुरू हो गई है, वाइल्ड फायर। अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा, काफ़ी शहर में भी। तो ये सब चीज़ों में जनरली ज़्यादा टेंशन हो रहा है, और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 degrees वार्मर ग्लोबली में। पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल वो सबसे गर्म साल था। तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियर बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट इस पर काम भी होने लग गया है काफ़ी।
1: मिस्टर प्रोति, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी एससीओ मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, और सारे, जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है। तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें, तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है, और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई, हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई
0: है? और मैं चाहूंगा कि कृष्णा जी भी इस पे आपके तरह बात करें। हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे। ये ऑलरेडी है, G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे। इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राज़ील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को इस गर्व से मैं बोलूँगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें इस्टेब्लिश हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे। अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए, इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है। और सेंडाई का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए, ताकि अगले जो 10 साल है उस पर किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पर हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे।
2: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है। एक तो जिसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है, अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफ़ी कमी आई है और काफ़ी नियंत्रण हमने किया है। जो हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है, और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन फोर्स की, तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूँगा। हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज़्यादा हीट एक्शन प्लान्स हैं पूरे देश में, कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं, करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहाँ हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज़्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाए हैं। तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान।

0: गया है, और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण इन सब चीज़ों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया। तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है। और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्यान है, और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है। और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है, और उसी अप्रोच के तहत CDRI की भी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज़्यादा रेजिलिएंट कर सकें, ज़्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है, जो भी प्रकल्प बन रहे हैं, उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें, और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएँ। अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है। तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई है, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी। तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में, सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी और मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकें, सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें, ताकि हम ना आपदाओं पर हमारा एक ना बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम करते हैं। बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी, और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पर भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की मदद से, साइकोसोशल काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब ग्लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे, और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था, और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज़्यादा कर सकें, ताकि ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया, हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं, और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए अभी हम प्रयत्न कर सकें।
1: डॉक्टर,
2: हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं बट बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए, आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज़्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए। तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में, या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ

0: ध्यान दे दीजिए। सो उस पर अटेंशन हमने फोकस ज़्यादा किया है स्कूल्स पे, सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे, क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज उसको कर रहा है उसको भी इन चीज़ों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। सो इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज़ करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसे आप ध्यान दें, कैसे इस पे आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए। सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक। आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी।
0: थैंक यू सो मच।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। अब ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम आओ साथ चले। भेंट वार्ता अपराध, साइबर अपराध, सुरक्षा एवं बचाव। भेंट वार्ताकार श्री मनोज रतन चौथे, DIG स्पेशल ब्रांच पुलिस मुख्यालय रांची। भेंटकर्ता एवं प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा की और कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सब से फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा आज की जरूरत इस विषय पर। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता आज का युग डिजिटल युग है। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाओं ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल सुविधाएं बढ़ी हैं, वैसे वैसे साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। श्रोताओं, ऐसे में साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि साइबर सुरक्षा क्या है। इसका अर्थ है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच, चोरी, हमले या नुकसान से सुरक्षित रखना। यह केवल बड़े संगठनों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। साइबर अपराधों का खतरा भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में साइबर अपराध कई रूपों में सामने आ रहे हैं, मसलन हैकिंग, यानी किसी सिस्टम या अकाउंट को बिना अनुमति के एक्सेस करना। फिर बारी आती है फिशिंग की, नकली ईमेल या लिंक के जरिए लोगों से निजी

0: जानकारी चुराना। ऑनलाइन फ्रॉड तो आम बात हो गई है, बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से पैसे की ठगी इसमें देखी जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, किसी की पहचान का दुरुपयोग, फिर डेटा को लॉक कर फिरौती मांगना। भारत सहित पूरी दुनिया में ऐसे मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे लोगों की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, आज हम अपनी फोटो, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, ये सब ऑनलाइन रखते हैं। यदि ये जानकारी गलत हाथों में चली जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है। आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद जरूरी है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते उपयोग के कारण वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है। साइबर हमले केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, सरकारी डेटा और महत्वपूर्ण संस्थानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। व्यापार और उद्योग की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। कंपनियों के डेटा और ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। इसके कई उपाय हैं जिसके तहत हम बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से। जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल करें और इसे समय समय पर बदलते रहें। इससे अकाउंट की सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें ताकि नए खतरों से सुरक्षा मिल सके। पब्लिक वाईफाई का सावधानी से उपयोग करें, सार्वजनिक नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर सतर्क रहें, अपनी निजी जानकारी जैसे पता, फोन नंबर, इन सब को सार्वजनिक ना करें। सरकार और संस्थानों की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा भी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष हेल्पलाइन और पोर्टल बनाए गए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सिर्फ तकनीकी उपाय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए स्कूलों, कॉलेजों और समाज में साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षा देना बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। श्रोताओं, यह केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें अपनी डिजिटल आदतों को सुरक्षित बनाना होगा और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा। यदि हम सावधानी और समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हम साइबर अपराधों से काफी हद तक बच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सुरक्षित डिजिटल जीवन ही आधुनिक जीवन की सफलता की कुंजी है। श्रोताओं, अभी हमने आपसे चर्चा की साइबर सुरक्षा आज की जरूरत इस विषय पर। आज इसी से जुड़ी विशेष जानकारी करवाने जा रहे हैं, साइबर सतर्कता डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री मनोज रतन चौथे, DIG स्पेशल ब्रांच रांची। तो इनसे लेते हैं साइबर सतर्कता डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैडम, और नमस्कार सभी श्रोताओं को जो आज हमें इस माध्यम से सुन रहे हैं।
0: सर, देखा जाए तो डिजिटल माध्यम आजकल काफी बढ़ गया है और नेटवर्क के जरिए बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं, जिसमें साइबर अपराध को लोग सामान्य रूप से जान रहे हैं और इसके शिकार भी आए दिन लोग हो रहे हैं। सर, साइबर अपराध क्या है और इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, इस बारे में मैं जानना चाहूंगी और साथ ही हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी करवाना चाहूंगी।
1: बिल्कुल मैम, ये जो साइबर का आपने पॉइंट उठाया है, ये आज के समय में बेहद रेलेवेंट है। और हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो हमें कई तरह के ऐसे विक्टिम्स देखने को मिलते हैं जो कि केवल अज्ञानतावश या अवेयरनेस के अभाव में साइबर के या साइबर फ्रॉड के वो विक्टिम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो केवल अभी साइबर फ्रॉड ओटीपी मांगने तक, या सामने वाला आपको मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का नंबर आप शेयर करिए, ओटीपी शेयर करिए, यहाँ तक सीमित नहीं रहते हुए उसका एक्सपांशन काफी बड़ा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के तिथि में यह है कि आज हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और खास करके लगभग सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, जो कि एक बहुत अच्छा टूल है आपको अच्छा काम करने के लिए, लेकिन वो साथ ही साथ आपको पोटेंशियल विक्टिम भी बनाता है साइबर फ्रॉड का भी। क्योंकि जब आपके हाथ में स्मार्टफोन होता है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते हैं, साइबर फ्रॉड आपके साथ होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी के लिए मुझे लगता है कि कई सारी सावधानियां, कई सारे अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम लगातार भारत सरकार की जो I4C जैसी संगठन है या स्टेट गवर्नमेंट के भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग उसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में श्रोताओं को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और डिजिटल अरेस्ट वाली समस्या आजकल आए दिन देखा जा रहा है कि इससे जुड़े बहुत सारी शिकायतें हमें मिल रही हैं और लोग इसके शिकार घर बैठे हो जा रहे हैं। सर, इसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: सबसे पहले तो मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट पुलिसिंग में नहीं होती है। पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है और भारत सरकार द्वारा भी पिछले 1-1.5 साल से लगातार अभियान चला करके इस बात को सभी लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। और हाल ही में आपको पता होगा कि जुलाई 2024 से नए BNS और BNSS लागू किए गए थे, जो पहले की IPC और CRPC हुआ करते थे। और उसके बाद कई लोगों को ये भ्रम हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि BNS या BNSS के चेंज होने के बाद में अब लोगों को डिजिटली भी अरेस्ट किया जा सकता है या फिजिकली अरेस्ट करने के बजाय डिजिटली लोगों को अरेस्ट में रखा जा सकता है। पर मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट BNS या BNSS में इंक्लूडेड नहीं है। पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई भी इस तरह का फोन या मैसेज आता है कि आपका कोई पार्सल कस्टम्स द्वारा पकड़ा गया है या कोई आपके पार्सल में किसी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जैसे कि गांजा, अफीम या कोई रेयर चमड़े का बैग, पर्स आपके सामान में पाया गया है और आपको उसके लिए हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं और आपको आपके घर में रहना पड़ेगा, तो आपको समझना होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति एक साइबर फ्रॉडस्टर है और वो आपसे पैसा ठगने के लिए केवल इस तरह के ये तरीके आजमाता है। तो आपको इस तरह के जो मैसेजेस है, इस तरह के जो कॉल्स है, उनको 1930 1930 एक नंबर है जो साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन है, जो आपको साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में आपको हेल्प मुहैया कराएगा। और आपको जो फोन से या नंबर से मैसेज आया है उस नंबर को तत्काल ब्लॉक करने का भी काम 1930 के हेल्पलाइन आपके लिए कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में डिजिटल अरेस्ट आज एक रूप ले चुका है और मुझे यकीन है कि जो हम लोग अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न जगहों पे, विभिन्न चैनलों पे, उससे निश्चित रूप से इसमें लोग अवेयर होंगे और इस समस्या में निश्चित रूप से कमी आएगी।
0: सर, इसमें हमने भी देखा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक वीडियो कॉल आता है और उसमें एक पुलिस की वर्दी पहनकर बैठे हुए एक व्यक्ति मिलता है, जो देखा जाता है कि अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा है तो उस बच्चे की आवाज की भी कॉपी की जाती है, और फिर कहा जाता है कि बच्चा हमारी कस्टडी में है और कुछ गलत कृत्य करते हुए पाया गया है, इसलिए आपको थाने में इतनी रकम जमा करानी होगी अगर इसे छुड़वाना है। ये कहाँ तक सही है?
1: ये भी एक साइबर फ्रॉड का ही तरीका है, और कभी भी पुलिस

0: इस तरह का कॉल आपको नहीं करेगी, ना ही आपको वीडियो कॉल करके इस तरह का कोई निर्देश या आदेश देगी कि आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी व्यक्ति हमारे पास थाने में लॉकअप में बंद है और आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। और इस तरह का अगर कोई बात आपके सामने आता है तो आप तत्काल इसको नजदीकी थाने के माध्यम से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 99% से ज्यादा, मैं तो कहूंगा कि 100% ये साइबर फ्रॉड ही होता है। कभी भी कोई पुलिस आपको इस तरह का पैसा देने के लिए फोन नहीं करेगी, अगर वो जेन्युइन पुलिस वाले हैं तो। और डिजिटल अरेस्ट या इस तरह का जो भी मामला होता है, ये लीगली कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही पुलिस इस तरह के डिजिटली अरेस्ट करने की कोई पावर रखती है।
1: और सर देखा गया है कि जब अभिभावकों के पास इस तरह के कॉल्स आते हैं तो चूंकि ये मामला उनके बच्चे से जुड़ा हुआ होता है तो वे काफी घबरा जाते हैं और तत्काल उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और जिस वजह से वो इस ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहेंगे?
0: मैं सबसे पहले ऐसे अभिभावकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो कुछ एक चेकलिस्ट है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें। पहले तो आप ये तय कर ले कि आपका बच्चा मोबाइल हैंडल करने के लिए सक्षम है, उसका उम्र उस मोबाइल को हैंडल करने के लिए उस उम्र का वो मकाम पे वो पहुंच चुका है, ये सबसे पहली बात है। दूसरा, आप रेगुलर उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या यूट्यूब में वो क्या एक्टिविटी करता है या ब्राउजर में वो क्या एक्टिविटी करता है, आप रेगुलर उसको देखते रहे। तीसरी चीज, आप उसके पास जो भी मोबाइल दे रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड ना करें, ना ही उस फोन पे किसी तरह के ओटीपी लिंक्ड मोबाइल आप उसके साथ रहने दें। कई बार ये होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है सामने का कोई में भी ओटीपी शेयर कर सकते हैं, इसीलिए उनके हाथ में इस तरह का कोई भी मोबाइल डिवाइस नहीं देना चाहिए जो कि आपके बैंक के खातों से या किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डीमैट अकाउंट्स हो या अन्य किसी तरह के अकाउंट्स हो जिसके साथ वो जुड़ा हो, ताकि आपके साथ इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स नहीं हो पाए। साथ ही जो बच्चे वेब ब्राउजिंग करते हैं उसको नियंत्रित करना जरूरी होता है। आजकल हम लोग रेगुलर पुलिसिंग के दौरान ये पाते हैं कि कई सारे जो एडल्ट बच्चे हैं वो कई बार जो पॉन है उसके भी आदि हो जाते हैं। तो मेरी अभिभावकों से एक अपील रहेगी कि लगातार आप अपने बच्चों का ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते रहे, वो किस साइट्स को विजिट कर रहे हैं, किस तरह के वो वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं आदि अगर आप चेक करते हैं। और बच्चों की जरूरी होता है कि काउंसलिंग पेरेंट्स के द्वारा की जाए। कई बार अभिभावकों के और बच्चों के बीच में एक पर्दा रह जाता है और बच्चे जो बाहर हुई चीजें हैं वो घर में आकर के बताने से परहेज करते हैं। बच्चों को अगर ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर मैंने घर में आकर के बाहर जो चीज हुई है वो अपने माता पिताजी को अगर मैंने बताया तो उसको उनके द्वारा पॉजिटिवली लिया जाएगा, मुझे उल्टी डांट नहीं पड़ेगी और उस समस्या का मुझे हल मिल सकता है। ये बच्चे में जब आत्मविश्वास आप जगाने में सफल रहेंगे, मुझे लगता है कि बच्चा इस तरह के कभी गलत राह पे नहीं चलेगा। और उसको अगर कोई परेशानी भी आती है तो निश्चित रूप से अपने अभिभावकों की, अपने शिक्षकों की वो सहायता ले पाएगा और वो फ्रीली उस बात को बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभिभावकों इन चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को साइबर फ्रॉड या इस तरह के जो भी उससे रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उसमें कमी लाने में मदद मिल सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है सर। और बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए आपने बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। अभी एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो घर में हैं उनके हाथ में भी मोबाइल हैं, मोबाइल फोन्स का वो भी काफी अच्छे खासे रूप में प्रयोग कर रही हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना या फिर कुछ सामान वगैरह मंगवाना। कई बार देखा जाता है ऐसे लिंक भी उनके पास शेयर किए जाते हैं जिसको कहा जाता है कि ये क्लिक करने से कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार आपको मिलेंगे और इसके जरिए भी कुछ फ्रॉड देखे जाते हैं। सर, इसके बारे में

0: भी थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
1: बिल्कुल, ये आज सबसे बड़े मात्रा में होने वाला एक फ्रॉड के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। आपके फोन पे कई बार SMS आते हैं या WhatsApp पे मैसेज आता है कि ये लिंक आपको मिला है, डिस्काउंट कूपन इसके द्वारा डाउनलोड होगा, या एक APK फाइल होती है जिससे कि कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कहा जाता है, और जैसे ही उस लिंक को आप क्लिक करते हैं APK आपके फोन का पूरा एक्सेस दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, और वो व्यक्ति रिमोटली आपके फोन को या तो कंट्रोल कर सकता है, या आप अपने फोन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना हो, OTP हो, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालना हो, या अन्य किसी तरह के पर्सनल व्यक्तिगत आपके जो मैसेजेस होते हैं वो सबको वो दूर बैठे देख सकता है, और उसका वो निश्चित रूप से मिसयूज कर सकता है और करते भी है। तो सबसे पहला मेरा अपील सभी श्रोताओं से यही रहेगा कि आप किसी भी अननोन व्यक्ति द्वारा भेजा गया लिंक को कृपया क्लिक नहीं करें, और कोई भी इस तरह का ऐप या लिंक जो आपको कहता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा या इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ कैशबैक मिलेगा, कृपया उन चीजों से आप परहेज करें। जो ऑथेंटिक साइट से, शॉपिंग की वेबसाइट से, उसका आप कृपया यूज करें।
0: बिल्कुल सही बात है। और सर, अमूमन देखा गया है कि हम ATM कार्ड का भी प्रयोग करते हैं, बैंक से हमारा ATM लिंक्ड होता है, कई बार बैंक के अधिकारियों का भी फोन आता है कि इसे आपका ब्लॉक किया जा रहा है कार्ड को, आप जल्द से जल्द यहाँ KYC वगैरह के लिए OTP जो भेजा जा रहा है वो बताएं। तो ऐसे हालात में भी लोग घबरा जाते हैं, और बैंक की बात आती है तो उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस होती है, और ऐसे में वो अपना लिंक के माध्यम से जो OTP आता है वो शेयर करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो एक सतर्कता और एक जानकारी के लिए, आप जागरूक रहने के लिए हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे?
1: जब आपको कोई भी फोन आता है और जिसमें कहा जाता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका KYC एक्सपायर होने वाला है, या आपको कोई डेटा या ब्यौरा मांगा जाता है, तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि बैंक्स आपको कभी भी आपका व्यक्तिगत डेटा नहीं पूछेंगी। आपको यदि कोई डेटा जमा भी करना है तो आपको आपका जो होम ब्रांच है या नज़दीकी उस बैंक का जो ब्रांच है, आपको वहाँ जा कर के उस कॉल के सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए, और वाकई में अगर आपका KYC एक्सपायर हो रहा है या और एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंक अगर मांग रहा है तो आपको फिजिकली उस बैंक में जा कर के देने चाहिए। बैंक आपसे कभी भी आपके व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वोटर ID नंबर, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर, या किसी तरह का OTP आपसे नहीं पूछता है, और ना ही उनको पूछने की सरकार द्वारा इसकी परमिशन दी गई है। इसलिए ये सबको मन में एक बार कन्फर्म रूप से रख लेना चाहिए कि आपको कोई भी व्यक्तिगत डिटेल किसी भी फोन कॉलर को शेयर नहीं करने हैं। यदि आप उसको शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं साइबर ठगी के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और सर, जितनी तेजी से हमने तकनीकी क्षेत्र में विकास किया है, जितने गैजेट्स हमारे पास हमारे हाथों में आ गए हैं, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, तो इनके जरिए हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। जाने और अनजाने दोनों ही ढंग से ये फ्रॉड हमारे साथ हो जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके के जो भोले भाले लोग हैं इसके गिरफ्त में ज़्यादातर आ जा रहे हैं, चाहे वो वजह उनकी अशिक्षा हो, गरीबी हो, या फिर कोई और वजह या जानकारी का अभाव हो। तो सर, ऐसे लोगों को आप सतर्क रहने के लिए अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
1: जैसे आपने कहा कि ग्रामीण भागों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह के फ्रॉड्स को ज़्यादा शिकार होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जागरूकता नहीं होती है। कई बार जो हम लोग जागरूकता के अभियान चलाते हैं वो शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु मैं सबको, और आकाशवाणी मुझे लगता है ये एक सबसे अच्छा माध्यम है कि भारत के हर कोने तक ये माध्यम पहुँचता है, और हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं वो भारत

0: के हर एक कोने में हम लोग पहुंचा पाएंगे। तो इस तरह के माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जो साइबर हाइजीन है या जो साइबर सैनिटेशन है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, या इवन आपके जो सीसीटीवी कैमरास हो, ये सारे ससेप्टिबल है, ये सारे आपके डिवाइसेस वल्नरेबल है साइबर फ्रॉड के लिए। जो भी साइबर रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाती है विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यमों से, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से, जो वेरीफाइड हैंडल से, या इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे या विभिन्न चैनलों पे, उस पे दिए जाने वाले इन सुरक्षा के जो नियम है उसको यदि सभी लोग अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक मुझे यकीन है कि इस तरह के जो फ्रॉड से उससे हम लोग बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग और पुलिस, ये एक तरह से बिल्ली और चूहा का खेल है। वो हमेशा ही एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ही एक नया तरीका इजाद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को ठगा जाए, और पुलिस भी उन तरीकों को ढूंढ करके उस तरीकों के पीछे जो लोग होते हैं उनको पकड़ने की और उनको सजा दिलाने की कोशिश लगातार करती रहती है। परंतु इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो होते हैं हमारे आम नागरिक, जो कि इन साइबर ठगों के वो बलि चढ़ जाते हैं। जो साइबर अवेयरनेस की जो बातें आज हम लोगों ने यहाँ कही है, वो सभी लोग अगर अपनाते हैं और थोड़ा सा ध्यान वो अपने एक्टिविटी पर, हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं, हम किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, हम किसके साथ क्या जानकारी शेयर कर रहे हैं, उस पे अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच भी सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये भी फिर दोहराना चाहूँगा कि जो बच्चे आपके मोबाइल यूज़ करते हैं उनको निश्चित रूप से आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कम उम्र के चलते और दूसरा कम एक्सपोजर के चलते, कम जागरूकता के चलते साइबर बुली होने का या साइबर फ्रॉड उनके साथ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो बड़े बुजुर्गों के साथ ही बच्चों का भी जो साइबर अवेयरनेस है वो स्कूलों के माध्यमों से और कॉलेजों के माध्यमों से मुझे लगता है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उसके दिशा में हम लोग लगातार कार्य भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसको सभी लोग अगर फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम लोग को रिलीफ मिल सकती है। और जो साइबर हेल्पलाइन नेशनल लेवल पे जारी की गई है 1930, उसका आप अधिक से अधिक अगर इस्तेमाल करते हैं, आपको किसी तरह का कोई फ्रॉडुलेंट कॉल आता है या आपको आशंका है कि इससे आपको साइबर ठगी हो सकती है, उस नंबर को तत्काल आप 1930 जो कि टोल फ्री नंबर है पे आप रिपोर्ट करें, और उस नंबर के ऊपर में तत्काल एक्शन इनिशिएट हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं, जो विक्टिम होने के सबसे ज़्यादा जिनकी आशंका बनी रहती है, उनके द्वारा थोड़ा सा भी जागरूकता दिखाया जाता है तो काफ़ी हद तक हम इस साइबर फ्रॉड को लगाम लगा पाएंगे।
1: सर, स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग पैसे धड़ल्ले से लगा रहे हैं, कई लिंक आते हैं उसके लिए भी, और उसमें करोड़ों तक की ठगी हो जाती है लोगों के साथ। तो इसके अवेयरनेस के लिए, इसमें सजगता के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा को आपने टच किया है। खास करके कोविड के बाद में लोगों में स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रुचि दिखाई जा रही है, और उसी का फायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड्स द्वारा कई तरह के लिंक्स, कई तरह के डमी डीमैट अकाउंट ऐप्स बनाए जा रहे हैं, और उसमें पैसे लेने के बाद में वो पैसे गायब हो जा रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड टिप्स आते हैं तो कृपया उसके ऊपर यकीन नहीं करें। आज भी आप देख सकते हैं, आपको कई तरह के SMS आते हैं जिसमें आपको एक स्टॉक का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, इससे आपको मल्टीफोल्ड पैसा आप बना सकते हैं। तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करें, ये मैनिपुलेटिव स्टॉक टिप्स होते हैं। वो पंप एंड डंप नाम की एक स्कीम होती है, उसके तहत स्टॉक को पहले ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद फिर जो आम जनता है, इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा हड़पने की एक कोशिश होती है। तो इस तरह के जितने भी

0: ये साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा अपनाई जाती है तरीके, उसको कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और खास करके पोस्ट कोविड जो डीमैट अकाउंट रिलेटेड फ्रॉड से इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। कई बार आपको एक लिंक आ जाती है और कहा जाता है कि आप अगर ये डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ मनी बैक दिया जाएगा या कैश बैक दिया जाएगा, और उस लालच में लोग उस तरह के लिंक्स पे, ऐप्स पे क्लिक करते हैं और अपना पूरा का पूरा बैंक का खाता खाली करवा के बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस आप अगर इसमें अपनाते है, और आज के डेट में आपके पास, आपके हाथ में इंटरनेट है, किसी भी आपको सस्पिशियस लिंक का पता लगाने के लिए कई तरह के एप्स उपलब्ध है, आप उसका सहारा ले सकते हैं ताकि इस तरह के जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं उससे आप बचे हुए रहे।
1: सर, साइबर अपराध से जुड़ी क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं और किस तरह से हम इस ठगी के शिकार हो सकते हैं? आपने काफी विस्तार से इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दिया और सर, कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद मैडम, और मुझे आशा है कि आज के कार्यक्रमों से हमारे श्रोताओं को भी काफी सहायता होगी, और अगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हम एक भी साइबर फ्रॉड होने से अगर बचा ले तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी साइबर अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हम जानकारी ले रहे थे। विषय था साइबर सतर्कता, डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम। और आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे श्री मनोज रतन चौथे, DIG स्पेशल ब्रांच रांची। श्रोता मित्रों, इस साथ ही हमारा आज का आओ साथ चले कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले। आज आप इसमें भेंट वार्ता सुन रहे थे साइबर अपराध सुरक्षा और बचाव को लेकर। भेंट वार्ता करते श्री मनोज रतन चौबे, बातचीत कर रहे थे सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति स्वर था सिंधु मिश्रा का, प्रस्तुति एवं संयोजन था प्रभु शरण का, और ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे आज के सांध्यकालीन प्रसारण की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 4:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए। 5:02 पर सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक और 6 बजे से प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे। 6:02 से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण। पहले आप सुनेंगे खेतीबाड़ी, फिर 6:30 पर हमारी दुनिया। 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार के लिए। 7:11 पर जिले में आजकल। 7:15 पर कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा आज सुनेंगे आप उरांव भाषा में। और 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:30 पर सुर्खियों में। 8:45 पर समाचार संध्या का आज का अंक न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। और 9:15 पर होंगे समाचार उर्दू में। इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। दिल्ली केंद्र की ही प्रस्तुति होगी पब्लिक स्पीक। 10:20 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरी यादें। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत। पुनः हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे। और 11:05 पर सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। श्रोताओं, यह था संक्षिप्त विवरण हमारे आज के शेष प्रसारण का।

परंपराओं पर आधारित एक प्राचीन कृषि पद्धति है जो सर्व प्रकार से सुरक्षित, उपयोगी एवं लाभकारी होती है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने में सहायक होती है। प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक, उर्वरक आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रकृति के खुले प्रांगण में आसानी से पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से ही खेती की जाती है। यह कृषि पद्धति प्रकृति एवं पर्यावरण के अनुकूल तो होती ही है, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करने में भी सहायक मानी जाती है। इसके बावजूद भारत में किसानों के द्वारा प्राकृतिक खेती को त्याग कर रासायनिक खेती को अपनाए जाने के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। देश में भीषण खाद्यान्न संकट का उत्पन्न होना, दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकता के दौर में पश्चिमी देशों का अंधानुकरण। उल्लेखनीय है कि सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद जब देश आजाद हुआ तो भीषण खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। उस समय जब भारतीय किसानों के सामने देश की संपूर्ण आबादी के पेट भरने का कठिन प्रश्न उठ खड़ा हुआ, तब किसी भी कीमत पर खाद्यान्न उत्पादन में त्वरित वृद्धि किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता के कारण देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन जुटाने के उद्देश्य से हमारे देश में रासायनिक खेती का रास्ता चुना गया। हालांकि प्रारंभ में इससे उपज तो बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप देश ने खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए, परंतु धीरे धीरे इसके अनेक दुष्परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए। बता दें कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने के बाद भी किसानों की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ी और किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। यही नहीं, खेतों में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से धरती की उर्वरा शक्ति लगातार और तीव्र गति से घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप फसलों की पैदावार में कमी आने लगी है। ऐसे में अधिक पैदावार के लिए किसानों के द्वारा और अधिक रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। यह वैसा ही है जैसे कि आजकल कुछ गोपालक अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति के लिए गायों को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाकर दूध निकालने का कार्य करते हैं, जो कि अनैतिक ही नहीं बल्कि अप्राकृतिक और अमानवीय कृत्य भी है, क्योंकि सुई लगाकर दूध निकालने के कारण गायों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे गायें धीरे धीरे कमजोर और बीमार होती जाती हैं। साथ ही सुई लगाकर निकाले गए दूध के उपयोग से मनुष्यों को भी अनेक प्रकार की घातक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जिनमें प्रमुख रूप से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी शामिल है। ठीक ऐसे ही पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि में अधिक से अधिक रसायनों के इस्तेमाल से न केवल मिट्टी बल्कि उत्पादित खाद्यान्नों

रासायनिक खेती के कई भयावह दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। इनके अतिरिक्त रासायनिक कृषि पद्धति ने देश में पशुओं के जीवन पर संकट, बाजार के वर्चस्व, समाज में अशांति और असंतोष तथा श्रम के गांवों से पलायन जैसी भयावह स्थितियां उत्पन्न की और उसे बढ़ावा भी दिया। यही कारण है कि देश के लघु एवं मध्यम श्रेणी के किसान धीरे धीरे खेती से ही किनारा करने लगे और उनका यह अभियान आज भी जारी है। खेती किसानी की इन तमाम समस्याओं, जटिलताओं और परेशानियों के मद्देनज़र रासायनिक खेती से इतर देश में एक बार फिर खेती के अन्य विकल्पों की तलाश प्रारंभ हुई। विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों की इसी तलाश के परिणाम स्वरूप जैविक खेती प्रकाश में आई। जैविक खेती को बेहतर विकल्प मानकर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक संसाधनों के प्रयोग प्रारंभ तो हुए, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इससे जुड़ी अनेक प्रकार की जटिलताएं और समस्याएं भी उजागर होने लगीं। जैविक खेती के भारत में अव्यवहारिक होने के कई कारण हैं, जिनमें खाद के लिए विदेशी केचुओं का प्रयोग, यूरिया, DAP और कीटनाशकों की बहुत अधिक लागत तथा भारतीय जलवायु में इसके दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव शामिल हैं। बीज खरीद से लेकर खाद, कीटनाशक और इनके छिड़काव की लागत जैविक खेती में इतनी अधिक आती है कि लघु एवं मध्यम किसान इसे चाहकर भी अपना नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए जैविक खेती में गाय के गोबर की इतनी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है कि छोटा और मध्यम किसान इसके लिए पशुओं की व्यवस्था नहीं कर सकता। इसी तरह इसमें प्रयुक्त विदेशी केचुओं के अनुकूल तापमान हमारे नहीं, विदेशी केचुए अपने शरीर में शीशा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकेल, क्रोमियम इत्यादि को धारण करते हैं और ये तत्व मिट्टी के जरिए पौधों तक पहुंच जाते हैं। जाहिर है कि इससे उपजने वाली फसल का मानव स्वास्थ्य पर बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विदेशी केंचुए मिट्टी नहीं बल्कि गोबर और काष्ठ खाते हैं, इसलिए खेतों को खाद के रूप में दी जाने वाली गोबर का अधिकांश हिस्सा ये केंचुए ही खा जाते हैं। इससे जैविक खेती में गोबर की जरूरत प्राकृतिक खेती की तुलना में बहुत अधिक होती है। यही नहीं, विदेशी केचुओं द्वारा गोबर से तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की उपलब्धता मात्र 1.5% होने से फसल में नाइट्रोजन की आवश्यक आपूर्ति के लिए प्रति एकड़ कई टन वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अतः लंबे समय तक जैविक खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जाती है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में किए गए शोधों से पता चला है कि जैविक खेती से भूमि को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इस प्रकार पशुधन की कमी के कारण जैविक खेती में उपयोग किए जाने कंपोस्ट की जटिल एवं महंगी विधि तथा इसके लिए अतिशय आर्थिक और मानवीय श्रम की आवश्यकता जैसी कुछ प्रमुख समस्याओं के कारण जैविक खेती आम किसानों के लिए दुष्कर साबित हुई। साथ ही जैविक खेती के आरंभिक 3 सालों तक उपज में कमी आने के कारण देश के किसानों के लिए घाटे का सौदा ही बनी रही। वहीं कई कंपनियों द्वारा महंगे जैविक खादों का उत्पादन करने के बाद रासायनिक बाजारवाद से बचाव के नाम पर देश में जैविक बाजारवाद के जाल बिछने आरंभ हो गए। इन सब परेशानियों और समस्याओं के कारण जैविक खेती को किसानों ने नहीं अपनाया और आज यह विधि केवल प्रदर्शनी और नर्सरी तक ही सीमित होकर रह गई है। यही कारण है कि आजकल देश में ऐसे किसानों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है जिन्होंने विकल्प के रूप में जैविक खेती को अपनाया था, होने के लिए विवश होना पड़ा। हालांकि जैविक खेती की कमियों के कारण रासायनिक खेती की ओर वापस लौटना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि किसान ऐसी कौन सी विधि अपनाएं जो रत्न गर्भा धरती माता और मनुष्य समेत समस्त जीव जगत के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हो और साथ ही सहज, सरल एवं किसानों, उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से वहनीय भी हो। जवाब है गौधन आधारित प्राकृतिक खेती, जो हर प्रकार से अच्छी और अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसमें सब कुछ सहज उपलब्ध होता है। यह मूलतः देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल, बेसन

0: और पेड़ों के नीचे पत्तों से पोषित मिट्टी पर आधारित होती है। कीटनाशकों को बनाने के लिए भी देसी साधनों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें किसान अपने स्तर पर तैयार कर सकते हैं। कीटनाशक प्रायः विशेष औषधीय पौधों के पत्तों, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च के अर्क से तैयार किए जाते हैं। इन्हें तैयार करने में लागत और समय भी बहुत कम लगता है। इन कीटनाशकों से भूमि को कोई नुकसान नहीं होता है। प्राकृतिक खेती में देसी केंचुए का इस्तेमाल होता है, जो देश की जलवायु के सर्वथा अनुकूल होते हैं और जमीन की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यही नहीं, ये मौसम एवं पर्यावरण में होने वाले बदलावों के अनुरूप जमीन में 15 फीट तक ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। इस दौरान ये नीचे की परतों से पोषक तत्व लाकर पौधों तक पहुँचाने का कार्य भी करते हैं। ये केंचुए जब भूमि में सुराख करते हैं तो उसकी दीवारों को वमी वास से लिपते रहते हैं। इससे लंबे समय तक ये सुराख धरती में बने रहते हैं, जिसके कारण भूमि को निरंतर ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसलिए अधिक वर्षा या सूखे की स्थिति में भी पौधे जीवित रहते हैं। प्राकृतिक शैली की इस खेती की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें रासायनिक या जैविक खेती की तरह फसलों में बाहर से कोई उर्वरक नहीं देना होता है, बल्कि खेत की भूमि में ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें फसलों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म जीवाणु ठहर सकें और अपनी वंश वृद्धि कर सकें। तात्पर्य यह कि खेतों में जैव विविधता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। प्राकृतिक खेती में भूजल की न्यूनतम आवश्यकता होती है, साथ ही उपज भी पूर्णतः रसायनों से मुक्त और पोषक तत्वों से युक्त होती है, जिससे उपभोक्ताओं को बीमारियों का शिकार नहीं बनना पड़ता, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा बेहद कम यानी नाम मात्र की लागत के कारण प्राकृतिक खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा भी नहीं बनती। इसकी एक विशेषता यह भी होती है कि इसमें दूध न देने वाले गौधन के गोबर, गोमूत्र आदि का भी समुचित उपयोग किया जा सकता है। गौपालक यदि स्वयं खेती नहीं भी करते हों अथवा उनकी आवश्यकता से अधिक गोबर, गौमूत्र आदि का उत्पादन हो रहा हो तो वे उसे दूसरे किसानों को बेचकर अपनी कमाई में वृद्धि भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो लोग दूध न देने वाले गौधन को अब तक अनुपयोगी और बोझ मानते रहे हैं, उनके लिए भी प्राकृतिक खेती एक अवसर प्रदान करने का कार्य कर सकती है। इस विधि को अंगीकार करने से निराश्रित गौधन के लालन पालन और उनकी देखभाल के प्रति उदासीन रहने वाले लोगों को भी दोबारा सोचने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यही नहीं, गौधन आधारित प्राकृतिक खेती एक ऐसी समर्थ पद्धति है जो किसानों को सब्सिडी एवं कर्ज माफी पर आश्रित बनाने के बजाय उन्हें स्वावलंबी और समृद्ध बनाने का कार्य करती है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक और हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक अनेक युवकों ने मल्टीनेशनल कंपनियों की भारी भरकम कमाई और जीवन खपा देने वाली नौकरियों को त्याग कर प्राकृतिक खेती को अपना पेशा बनाना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो प्राकृतिक खेती आज हमारी आवश्यकता बन चुकी है, जो किसान, उपभोक्ता, भूमि, प्रकृति, पर्यावरण, समाज, सरकार और राष्ट्र सहित इस धराधाम के समस्त प्राकृतिक घटकों की रक्षा, पालन और संवर्धन में सहायक और उपयोगी होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्राकृतिक खेती के बारे में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फिर खामोशी का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है गुलजार और मौसीकी है हेमंत कुमार की।
1: ओ शाम

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय JUT के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्री नहीं बल्कि बड़ा उद्देश्य ही जीवन को महान बनाता है। राज्यपाल ने युवाओं से AI जैसी आधुनिक तकनीकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। सरायकेला खरसावा के चलियामा स्थित रूंगटा माइंस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने उपायुक्त संग बैठक की। हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 माह में एकीकृत कार्ययोजना पूरी होगी। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्र नायक की प्रतिमा पर कालिख पोतने और उसे क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में हटिया विधायक नवीन जायसवाल और पूर्व सांसद दीपक प्रकाश सहित भाजपा नेताओं ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लोहरदगा में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विश्व रेबीज जागरूकता सप्ताह के तहत सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप की अध्यक्षता में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन ने पशु काटने पर तुरंत साबुन पानी से धोने और एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स लेने की अपील की। बोकारो के चंदन क्यार स्थित छऊ केंद्र में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से 3 दिवसीय सरायकेला छऊ संगीत कार्यशाला शुरू हुई। केंद्र के समन्वयक डॉ. संजय कुमार चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य इस समृद्ध पारंपरिक नृत्य और मुखौटा कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाकर इसे संरक्षित रखना है। और रांची के JCS स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मैच को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और SSP राकेश रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। सुरक्षा और ट्रैफिक रूट पर विस्तृत चर्चा की गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप अभी सुनेंगे कार्यक्रम सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। मैं हूं छवि। श्रोताओं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम बता देते हैं आपको कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद संध्या के 5:05 पर आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक के गीत। संध्या के 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी साग सब्जियों की खेती के बारे में। पंच परगनिया लोकगीत सुनवाया जाएगा राजेंद्र नारायण सिंह देव व साथियों के स्वर में। लत्तेदार सब्जियों की खेती पर अब विशेष जानकारी हासिल करेंगे हेम सागर मुंडा से। भेंट करता है कमलेंदु महतो। मुंडारी लोकगीत आप सुनेंगे दुराए मुंडा और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संध्या के 6 आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संध्या के 6:02 से 6:30 तक होगा कार्यक्रम हो अखड़ा, जिसमें जानकारी दी जाएगी सामाजिक जीवन एक जिम्मेदारी। मनोरंजन करवाया जाएगा जोमनामम दुरंग से बिलमती माई हास्ता और साथियों के स्वर में। इसके अलावा आहिंदी गीत आप सुनेंगे मैदे कोई होना गाँव और साथियों के स्वर में। संध्या के 6:30 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। संध्या के 6:55 पर आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

संध्या के 7:15 से रात्रि के 8 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम है। रात्रि के 8 बजे से 8:45 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 बजे से 9:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इसी समय आप सुनेंगे 20वें एशियन गेम्स 2026 के प्रतिदिन के विशेष झलकियां। रात्रि के 10:20 से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:20 से 10:30 पर महफिल के बाद आपको हम सुनवाएंगे इस कार्यक्रम सुरों के रंग रात्रि के 11 बजे तक। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। और रात्रि के 11:11 पर सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मोहम्मद रफी की आवाज में चंद फिल्मी नगमे में।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले, कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज आपको सुना रहे हैं एक ही गायक मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ गीत। तो सबसे पहले सुनिए फिल्म हमसाया का ये गीत ओपी नैयर के संगीत पर।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मोहम्मद रफी के गाए कुछ गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का ये नगमा मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मोहम्मद रफी के गाए कुछ नगमे। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गंगा जमुना का ये नगमा।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444999 या 1800345406 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में आपका फिर से स्वागत है। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मोहम्मद रफी के गाए कुछ नगमे छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है नसीब।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना मोहम्मद रफी के गाए कुछ नगमे। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको कुछ ही पलों में सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। धान की खेती के अलावा विभिन्न प्रकार के साग सब्जियों की खेती के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। वैसे तो साग हमारे देश में प्रायः 96 किस्म के पाए जाते हैं और ये सभी अलग अलग मौसम में पाए जाते हैं। सभी साग अलग अलग गुण तथा बनाने के तौर तरीके में भी अलग अलग होते हैं। साग या हरी पत्तेदार सब्जियां शारीरिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि शारीरिक पोषण, हड्डियों की मजबूती, रक्त वृद्धि तथा आँखों की दृष्टि में काफ़ी सहायक होते हैं। इसलिए अपने खान पान में साग अवश्य शामिल करें और अच्छे तरीके से साफ सुथरे बनाएं ताकि पोषक तत्व तो बरकरार बने रहे। हर साग का अलग अलग स्वाद होता है, जो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इसे खाना पसंद करते हैं। और किसान भाइयों, साग कई बीमारियों के लिए दवा का भी काम करता है, इसलिए संभवतः अपने घर आंगन में या फिर किचन गार्डन में, गमलों में, अपने छत पर, ट्रे में, हर तरीके से आप इसे अवश्य लगाएं। और किसान भाई बहनों, इसे बड़े पैमाने पर अगर करना चाहते हैं व्यावसायिक तौर पर, तो इसकी खेती आप अच्छे तरीके से अच्छे बीजों का इस्तेमाल करें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो किसान भाई बहनों, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। अब आइए हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा पंच परगनिया लोकगीत।

0: इस लोकगीत के पश्चात किसान भाई बहनों आपके लिए एक जरूरी संदेश।
1: क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से

0: बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई। क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई।
1: अब आइए मिलते हैं, हमारे बीच में है एक युवा कृषक हेमसागर मुंडा जी, लतरदार सब्जियों की खेती पर विशेष जानकारी दे रहे हैं।
2: किसान भाई बहनों, आज हम आए हुए हैं, हमारे एक कृषक हैं, युवा कृषक जो पूरे खेतों में काम करने लगे हुए हैं, तो आज मिलते हैं हम और बातचीत करते हैं लतरदार सब्जियों की खेती के बारे में।
1: आज हमारे बीच में है हेमसागर मुंडा जी,
2: तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप तो यहाँ पर लतरदार सब्जी बहुत कुछ लगाए हैं और दिख भी रहा है कि जैसे कि करेला, झिंगनी, तोरई, फिर उसके बाद में खीरा वगैरह सब बरबट्टी से, तो कितना दिन हुआ लगा करके? लगभग कितना? अभी तो फल रहा है, फूल भी दे रहा है।
3: हाँ, लगा के तो 1.5 महीना जैसे हो रहा है। अच्छा, लेकिन हम लोग गर्मी मौसम में ही लगा चुके थे।
2: हाँ हाँ, गर्मी का समय लगा, इसलिए अभी फलना भी शुरू हो गया। नहीं
3: हाँ,
2: तो उसमें तो काफ़ी गर्मी थी, और गर्मी में कैसे बचाए सबको? पानी उन्हें शुरुआत में डालना भी पड़ा क्या?
3: हाँ, पहले तो खुदाई किए, बाद में वो मिट्टी को नमी रखने के लिए हम लोग झिंझरा से पानी दिए।
2: हाँ,
3: नम करने के लिए।
2: अच्छा अच्छा,
3: बाद में 1.5 इंच के अंदर में बीज डालते हैं।
2: अच्छा, कोड़ाई करते समय वहाँ पर कोई खाद वगैरह भी डालते हैं शुरुआत में बीज लगाते समय?
3: डालते हैं, गोबर डालते हैं।
2: अच्छा अच्छा, और कोई रासायनिक खाद या जैविक खाद वगैरह सब?
3: रासायनिक खाद देते हैं, जैविक खाद, वो जैविक खाद सबसे अच्छा रहता है, यूरिया से भी अच्छा आजकल रहता है।
2: हाँ हाँ,
3: इसीलिए जैविक खाद देते हैं।
2: हाँ, उसमें ज़्यादा उपजाऊ भी रहता है, बहुत दिन तक असर भी रहता है ना।
3: हाँ,
2: तो ये सब देने के बाद में करीब पानी समय समय पर जब भी सूखता है उसमें डालते होंगे? नहीं
3: हाँ, जब भी सूखता है तब डालते हैं।
2: अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर बारिश आने के बाद तो और डालने का जरूरत नहीं होता है ना?
3: और डालने का जरूरत नहीं होता, लगातार आजकल बारिश कर रहा है। देखिए,
2: अच्छा, शुरुआत में देखते हैं कि 2-3 पत्ता जब होता है कोई खीरा या लौकी चाहे कोई भी सब्जी फसल का, तो उसमें लाल लाल कीड़ा सब तो उड़ता होगा और बैठता भी होगा ना?
3: उड़ता है।
2: तो सब क्या खराब नहीं करता है पत्ता सबको?
3: खराब करता है।
2: तो उसमें क्या बचाने के लिए क्या करते हैं कुछ?
3: बचाने के लिए कीटनाशक या दवा स्प्रे करते हैं।
2: अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने हर पौधा में देना पड़ता है ना?
3: हाँ, हर पौधा स्प्रे करते हैं।
2: अच्छा, मैंने 1-2 बार देने से ठीक होता है कि 2-3 बार देना पड़ता है?
3: 1-2 बार से देख के दे देते हैं।
2: हाँ,
3: अगर एक बार हो जाता है से तो एक ही बार हो जाता है से नहीं देते हैं, और एक ही बार में नहीं होता से तो और एक बार देना पड़ता है।
2: उड़ने वाला कीड़ा सब नहीं आना चाहिए ना?
3: हाँ,
2: तो बहुत जहरीला भी और बहुत मैंने गंध भी करता होगा ना?

0: दूरी में बांस सब गाड़ के रस्सी बांध देते हैं, प्लास्टिक वाला रस्सी जो,
1: अच्छा वो नायलॉन वाला,
0: हाँ नायलॉन वाला रस्सी बांध के,
1: अच्छा उसमें मतलब पूरा मचान जैसे जाली जैसा बना देते हैं
0: जी, और वहाँ चढ़ता है ऊपर में और फैलता है।
1: हाँ उसमें बहुत जल्दी मैंने फैल जाता है और सब झूलता हुआ फैलता होगा नहीं
0: जी, अगर झूलने झूल के फैलेगा ना सा अच्छा रहता है, हरा रंग भी अच्छा ही रहता है,
1: रंग भी अच्छा रहता है, चाहे वो करेला हो चाहे बरबट्टी हो या कोई भी सब्जी ना
0: जी, अगर जमीन में रहेगा ना तो आधा तरफ अच्छा रहेगा आधा तरफ खराब।
1: हाँ एक तरफ जैसे जमीन में सटा रहता है तो सादा दिखता है
0: जी,
1: एक तरफ हरा दिखता है
0: जी,
1: तो उतना अच्छा नहीं लगता होगा देखने वालों के लिए या खरीदने वालों के लिए
0: जी,
1: तो इसीलिए मचान विधि में अच्छा लगता है ना
0: जी।
1: और तोड़ने के लिए मैंने कितना ऊंचाई करते हैं मचान को बनाते समय, जैसे आपस में उधर चलने फिरने का भी तो सुविधा होना चाहिए
0: जी, चलने फिरने के लिए सुविधा रहना चाहिए बोल के इतना से करते हैं,
1: 5-6 फीट लगता है
0: जी,
1: मैंने उसमें झुकना ना पड़े और आराम से भीतर भीतर चल के तोड़ाई कर सकते हैं
0: जी,
1: तो कितना ये सब जैसे पूरा बढ़ जाता है उसी समय तोड़ाई करते हैं कि थोड़ा सा हरा हरा रहता है उसी समय तोड़ाई करते हैं?
0: नहीं थोड़ा सा हरा हरा रहने से तोड़ते हैं, कहे कि बाजार ले जाते हैं ना समय पर डांट है कि नरम है देखता है,
1: अच्छा हाँ ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए
0: जी, ज्यादा टाइट रहने से नहीं खरीदेगा, बोलेगा बूढ़ा गया है ना, दूसरा दुकान जाएंगे, दूसरा दुकान जाएंगे,
1: अच्छा अच्छा सही बात है। हाँ इसीलिए थोड़ा उन लोग का पसंद के हिसाब से सही समय पर तोड़ाई भी करना चाहिए, चाहे बरबट्टी हो करेला चाहे लौकी जो भी हो ना,
0: जो भी हो,
1: हाँ खीरा सब भी ऐसे ही थोड़ा सा मैंने नाजुक स्थिति में ही तोड़ने से बिक्री जल्दी होता है
0: जी।
1: तो ये सब जो बेचते हैं या फिर जो बढ़ने के बाद फलता है तो फूल के समय में या फिर फलते समय भी और भी कीड़ा मकोड़ा चाहे उड़ने वाला ये सब आता ही होगा, तो उसमें भी स्प्रे करना पड़ता है, फिर
0: करना पड़ता है
1: मैंने फूल भी नहीं झड़ने के लिए,
0: फूल भी नहीं झड़ने के लिए,
1: क्या विटामिन वगैरह भी देते हैं?
0: विटामिन देते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: विटामिन नहीं देने से तो
1: हाँ मैंने फूल भी नहीं दिया होगा,
0: हाँ
1: फूल टिकना चाहिए और अच्छा से फलना चाहिए ना
0: जी।
1: तो बीज वगैरह सब आसपास में ही खरीदते हैं कि कहीं कोई दूर में अच्छा दुकान से लेते होंगे?
0: बीज तो खरीदते हैं आसपास दुकान से ही।
1: अच्छा तो हाइब्रिड वाला कि देसी वाला ही रहता है?
0: हाइब्रिड आजकल देख रहे हैं हाइब्रिड वाला ही चल रहा है।
1: अच्छा मैंने कोई भी सब्जी हो,
0: कोई भी सब्जी हाइब्रिड ही चल रहा है आजकल?
1: हाँ उसका मैंने पैदावार भी ज्यादा मिलता है और देखने भी अच्छा लगता है, फल भी बड़ा होता है।
0: जी, जी।
1: अच्छा तो इसमें तो बहुत ज्यादा दाम भी तो लगता होगा हाइब्रिड वाला?
0: लगता है उतना तो हम लोग के हिसाब से खरीद सब पाते हैं।
1: हाँ दाम जैसा लगता है उसी हिसाब से उसका उपज भी होता है ना
0: जी। जी
1: मैंने एक दो ठो बीज में ही बहुत ज्यादा फलता भी है क्या?
0: जी जैसे दाम वैसे उपजा मिलता है हम लोगों को भी।
1: अच्छा अच्छा मैंने घाटा नहीं होता?
0: घाटा नहीं होता है।
1: अच्छा इसमें आप लोग सिंचाई और कब कब करते हैं? बीच बीच में तो अब बारिश का समय जब आएगा तो फिर करने का जरूरत नहीं होता होगा
0: जी? बारिश का समय करने का जरूरत या गर्मी के सीजन में करना पड़ता है।
1: हाँ, हाँ,
0: सिंचाई के लिए नदी है।
1: हाँ, हाँ,
0: गर्मी के सीजन में तो यह नदी सूखता है इसीलिए बांध बना के रखते हैं।
1: अच्छा नदी में पहले से ही बारिश के बाद ही जैसे ही पानी रहता है तो उसमें आप लोग
0: बांध बना
1: जैसा बना देते हैं
0: जी, पानी
1: जैसा रहता है
0: जी, पानी इकट्ठा रहने के लिए।
1: अच्छा उसमें तो लोगों का नहाने का भी सुविधा हो जाता है
0: जी,
1: फिर गाय बैलों के लिए और फिर अपना सिंचाई के लिए भी हो जाता है ना
0: जी,
1: तो सबका सुविधा होता है, इसलिए पानी का बचत भी करना चाहिए और सबका इसका महत्व जानना चाहिए ना
0: जी।
1: तो आसपास जैसे बेचने की बातें करें तो फिर कहाँ बेचने जाते होंगे सब सब तैयार हो जाने के बाद में?
0: ये हमारे लोकल समय बाजार लगता है, बाजार समय ले जाते हैं।
1: अच्छा आने जाने का गाड़ी उड़ी सब सुविधा है ना?
0: सुविधा है, टेम्पो चाहे साइकिल से भी ले जाते हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: ज्यादा रहने से टेम्पो से ले जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। और ऐसे चौक चौराहे में ऐसे गुदड़ी बाजार वगैरह लगता है क्या?
0: लगता है आसपास गांव में लगता है।
1: अच्छा उस समय ही बिक्री हो जाता है? और कभी कभार अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, किसी का शादी विवाह हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ के लोग भी तो आपका खेत में ही तो आ जाते होंगे ना?
0: आते हैं वहाँ तो ज्यादा बिक्री हो जाता है।
1: अच्छा अगर कभी मौका मिल गया तो एक ही साथ थोक में नहीं बिक्री?
0: एक ही साथ बिक्री हो जाता है।
1: हाँ हाँ तो उसको सामान भी एक जगह मिल जाता है और आपको भी एक साथ पैसा मिल जाता है नहीं
0: जी?
1: तो कैसे इस सबका बिक्री मैंने आप लोग अपना साइज के अनुसार देते हैं कि वजन करके बेचते हैं सब कुछ?
0: वजन करके बेचते हैं।
1: हाँ आजकल तो सब चीज वजन में ही बिक रहा है ना
0: जी।
1: अच्छा तो ये जो करेला जो फल रहा है तो ये करेला में तो दूसरे फल के अपेक्षा इसमें तो ज्यादा बीमारी नहीं लगता होगा?
0: इसमें ज्यादा बीमारी नहीं लगता है।
1: अच्छा
0: इसमें ज्यादा विटामिन रहता है?
1: विटामिन वही फूल के समय देना पड़ता है
0: जी।
1: अच्छा अच्छा तो ये लतर सब कितना दिन टिकेगा या फिर जो आप मचान बनाए हैं तो क्या एक साल में खत्म हो जाएगा तार वगैरह बांस वगैरह कि

0: दो तीन साल तक चलता है?
1: नहीं, दो तीन साल आराम से चल जाता है।
0: अच्छा अच्छा, मजबूत है।
1: कह के बांस का यह दिया है ना,
0: हाँ,
1: खूटा सब दिया, चल जाता है, उतना जल्दी सड़ता नहीं है। दो महीना तीन साल जैसे चल जाता है,
0: चल जाता है। इसीलिए बांस का खूटा ही देना सुविधा है ना
1: जी।
0: अच्छा, पहले जैसे लोग कोई भी गाछ का डाली वगैरह काट करके वहाँ पर गाड़ते थे, तो ऐसे में तो पूरा जंगल जैसा भर जाता था, नहीं
1: जी,
0: चलने में भी सुविधा नहीं होता था
1: जी, जी।
0: इसीलिए वही मचान विधि में ही अच्छा लगता है ना
1: जी। मचान विधि में अच्छा रहता है, तो अच्छा, चलने वालने में भी अच्छा लगता है।
0: अच्छा, आगे ये बताइए कि आसपास में और भी जो किसान है वो लोग भी आपके जैसा इस तरह का लत्तर वाला सब्जी करते हैं कि और दूसरा किस्म का भी, कंद वाला साग या फिर बैंगन टमाटर ये सब करते हैं?
1: वो लोग मेरे जैसे करता है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा अलग करता है, बैगन भी लगाता है वो लोग।
0: हाँ, मौका देके,
1: मौका देके
0: मैंने बिक्री होगा उसी हिसाब से लगाते
1: जी। सभी लोग अलग अलग किस्म के लगाते हैं, क्योंकि सभी कोई एक ही जैसे लगाएंगे उनसे दाम घटेगा,
0: घटेगा तो बाजार में ज्यादा मात्रा में आ जाएगा तो दाम तो घट जाएगा।
1: अलग अलग किस्म के लगाएंगे उन्हें से बढ़ेगा, क्योंकि कम मिलेगा।
0: अच्छा, तो एक ही सीजन में ऐसे ही बरसात में या गर्मी में ही लगाते हैं कि ऐसे 12 महीने कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं?
1: 12 महीने कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, माने जैसा पानी का सुविधा रहता है वैसे थोड़ा बहुत करते रहते हैं ना
1: जी। जी,
0: क्या है कि दूसरे सीजन में तो सब्जी का बहुत मांग रहता है और दाम भी अच्छा मिलता होगा नहीं
1: जी,
0: इसीलिए बेमौसमी माने खेती आप करते रहते हैं
1: जी। हर महीना हर साल
0: दूसरे किसान को भी देखते हुए कि वो क्या लगा रहा है, उसके उसको छोड़ के आप दूसरा चीज लगाते हैं
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, वैसे में दाम भी अच्छा मिलता है
1: जी। अगर ये सेम लगाएंगे उन्हें से तो दाम घट जाएंगे।
0: हाँ, अच्छा, ये लतर के साथ साथ जो अपना ये जो खाली पड़ा है कुछ ऐसे छोटा जगह सब में क्यारी जैसा बना रहे हैं, इस सब में और क्या लगाने की तैयारी है?
1: इस सब में साग लगाएंगे, पालक साग, लाल साग,
0: अभी तो उसका सीजन भी पहुँच
1: जी, सीजन पूछ रहा हूँ, सब लगाएंगे।
0: पालक साग ठंडा में होगा, और फिर भाजी साग तो अलग अलग किस्म है
1: जी जी,
0: लाल वाला हरा वाला नहीं
1: जी जी,
0: तो हर प्रकार का साग यहाँ पर अपना बिक्री हो जाता है आपके बाजार में?
1: बिक्री हो जाता है।
0: अच्छा,
1: साग में बिक्री होने से एक दो साल से आराम से रह जाता है।
0: हाँ, खूटा मजबूत होना चाहिए,
1: खूटा मजबूत होना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, उसमें बैल बकरी कुछ भी नहीं पा रहा होगा
1: जी? पहले रास झाड़ी सब झाड़ी सब दे देता था, तब तो यह बकरी बैल सब घुसता है और खाता पीता है, इसलिए आजकल यहाँ का लगाते जाल से लगाते हैं।
0: अच्छा, हाँ, सुरक्षित भी रहता है, मजबूत भी रहता है
1: जी।
0: तो इसमें क्या अकेले ऐसे सब कुछ करते हैं कि परिवार वाले भी साथ देते हैं समय समय पर?
1: अकेले नहीं करते हैं, परिवार वाले साथ देता है, क्योंकि हाँ, अकेले रहेंगे तो बाजार जाएंगे क्या करेंगे, तो हाँ, इधर
0: सब तरफ देखना पड़ता है।
1: घर वाला भी मदद कर देता है।
0: तो लतरदार सब्जियों की खेती के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
2: इस मुलाकात के पश्चात पुनः मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक मुंडारी लोकगीत दुराय मुंडा एवं साथियों के स्वर में।

0: और इसी लोकगीत के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब कमलेंदु को विदा दे, सभी को पुनः एक बार जोहार।
1: श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम करकेटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष दीपक छाबरिया ने मुलाकात की। बैठक में राज्य में निवेश, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना और आईटीएआई तथा सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में क्षमता विकास पर चर्चा हुई। छाबरिया ने निवेश के जरिए राज्य के युवाओं को रोजगार देने की इच्छा जताई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांके स्थित बेकन फैक्ट्री का निरीक्षण कर इसके पुनर्जीवन के लिए अधिकारियों और एमएमआरआई हैदराबाद के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उन्होंने कूलिंग सिस्टम की खराबी से बंद पड़ी एशिया की इस ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीकों के साथ दोबारा शुरू करने तथा पुरानी मशीनरी को संरक्षित करने के निर्देश दिए। खूंटी में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झामुमो और कांग्रेस पर एमएमआरडी संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक खनन के लिए यह बदलाव किया गया है। श्री कोड़ा ने आरोप लगाया कि अवैध खनन से आर्थिक लाभ कमाने के लिए सत्तारूढ़ दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रांची में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। और रांची में आज से 7 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। एसएसपी के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने खुद मोर्चा संभाला है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: aimatan taikna bu jomnamare dureng belmatti hazda ando apinya juriko paite ila arpa mien bepata jagar bu ayumia bepata jagar re ho samaj re kuihon kwa sthiti chilke mina nen bisere japagartana kin sangita samad ando jagnath hesalote ila marbu ayum kinya ব্যাপারটা না মেন মহিহন লোতে এতে আকিন আকিন তে এতে অনুরম বডি জোয়ার গে
1: জোয়ার গে
0: তে মার আবহাগ কো অনুরম কোন জাগা রাখবা যখন
1: আলিঙ্গা নতুম হব তনে কই সঙ্গীতা সামট জনম হাতু দো আবু জামশেদপুর কুস্তুলিয়া হাতু আর না বালাসাকা কানালিং আবু বাইকা হাতু সোনুয়া প্রখান্ড
0: সোনুয়া আচ্ছা বালাসাকা কানাবো
1: ইয়া
0: সে ঠিক তো বাঙ্কো
1: আরেগে
0: আচ্ছা ঠিক আচ্ছা নন বিসেরান জাপা গরা আবু ಸಮಾಜ ರೆ ಕುಯಿಹೊನ್ ಕೊ ಎಸಪುರೆ ದಿಂಗದ ತಾಯಿನ್ ಗಿಯ ಎಂತೆ ತಿಸಿಂಗ್ ಬು ಲೆಲ್ ಕುವಾಚಿ ಕುಯಿಹೊನ್ ಕೊ ಆ ಮನೆ ಎಟ್ಕನ ಅಂಡೋ ಬುಗಿನ್ ಎ ಎಸಪುರೆ ತೈನೆ ಎಸಪುರೆ ಚಿ ನೆನ್ ಬಿಸೇರೆ ಎಂತೆ ಅಬುವೆನ ಅಬಿನ ಅಲಿಕತೆ ಕುಯಿಹೊನ್ ಕೊ ಆ ಚೆರ್ಕಿನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮಿನ ತಿಸಿಂಗ್ ಎ ದಿನ್ರೆ
1: ಅಲಿಗಾ ಅಲಿಕತೆ ದೊ ಕುಯಿಹೊನ್ ಕೊ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಮೆಂತೆ ಯಬು ಬುಗಿನ ಬುಗಿನ್ ಗಿಯ ಅಂಡೋ ಕುಚ್ ಹತ್ ತ ಖರಾಬ ಖರಾಬ ಮಿನ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱛᱮᱱᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱰᱮ ᱟᱪᱤ ᱮᱥᱩ ᱠᱩᱨᱟ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱳᱥᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱥᱩ ᱟᱠᱚ ᱟ ᱢᱩᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱞᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱟᱰ ᱜᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮᱞᱤᱧ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨᱟᱞᱤᱧ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱪᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱛᱩᱥ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱱ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱠᱮᱛᱮᱞᱤᱧ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱰᱮ ᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱠᱩᱨᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱟᱦᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱥᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱨᱚᱡᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱼᱟ ᱤᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮ ᱟᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱟᱠᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱚᱵᱚ ᱮᱥᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱛᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱠᱚ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟᱹ ᱦᱚᱵᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱨᱩᱣᱟᱛᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱫᱚᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱮᱡᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱚᱠᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱤᱢᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱦᱚᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱵᱟ ᱠᱩᱪ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱦᱚᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱵᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱚᱪᱤᱞ ᱠᱮ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱟᱠᱚ ᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱱᱮᱞ ᱫᱟᱭᱟ ᱟᱠᱚ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟ ᱤᱧ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱨᱮ ᱵᱩᱱᱮᱞ ᱨᱮᱫᱚᱵᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱤᱭᱚ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱮᱱᱤᱢᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱠᱩᱯᱚᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱮᱥᱩ ᱥᱤᱠᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱨᱮᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤᱠ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤᱠ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱵᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱩᱰᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱠᱚ ᱯᱟᱨᱥᱮᱱᱴᱮᱡᱽ ᱡᱚᱠᱟ ᱱᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱯᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱫᱟᱨᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱛᱚ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱩᱞᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱥᱤᱭᱳ ᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱥᱤᱧ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱭᱨᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹᱨᱤᱧ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱱᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱱᱮᱞᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱮ ᱜᱷᱚᱴᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱞ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱢᱮᱱ ᱩᱲᱩᱭᱟ ᱵᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ
1: ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱤᱱᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱰᱟ ᱪᱮ ᱟᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱤᱱᱟᱹᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮ ᱤᱱᱟᱹᱝ ᱵᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱫᱟᱭᱟ ᱪᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱨᱮ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱩᱲᱩᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱫᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱦᱩᱫᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱨᱮ ᱜᱟᱨᱤᱵᱤ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱮᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱮᱥᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱣᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱮᱞᱠᱟᱱ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱱᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟ ᱫᱮᱭᱩᱣᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱚᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱠᱚ ᱞᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱰᱮ ᱢᱤᱰᱚ ᱟᱭᱱᱚ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤᱧ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱦᱚᱵᱟ ᱫᱮᱭᱩᱣᱟ ᱤᱱ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟᱹᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟᱹᱧ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱱᱟᱞᱟᱭᱤᱧ ᱮᱱᱰᱮ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱭᱤᱧ ᱛᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱩᱲᱩᱜ ᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱱᱤᱠᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱩᱲᱩᱜ ᱵᱟᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱵᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱫᱟᱜᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱰᱚᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱵᱮᱦᱛᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱭᱮ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱮ ᱤᱱᱛᱟ ᱟᱨᱮ ᱪᱟ ᱟᱠᱚ ᱩᱰᱩᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱡᱟᱱᱛᱟᱨ ᱯᱷᱮᱠᱴᱨᱤ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱛᱟ
0: ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ
1: ᱛᱮ ᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱱ ᱨᱟᱥᱟ ᱛᱤᱭᱚ ᱤᱱᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚᱨᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱮ ᱤᱱᱯᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱚᱛᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱪ ᱠᱩᱪ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱩᱪ ᱡᱚ ᱫᱟᱞᱟᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱵᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱱᱤᱠᱟ ᱢᱟᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱵᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱭ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱪᱟᱠᱟᱴ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱠᱚᱭ ᱪᱟᱠᱟᱴ ᱵᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱫᱟᱨᱮᱱ ᱢᱟᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱱᱯᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱵᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱᱟᱜ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱱᱮᱱ ᱡᱮᱥᱮᱢ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱚ ᱤᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱪᱮ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮᱯᱴᱤ ᱭᱟ ᱯᱷᱮ ᱥᱩᱨᱚᱠᱪᱷᱤᱛ ᱛᱮ
1: ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱟᱭᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱝᱜᱟ ᱟᱯᱩ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱪᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱵᱩᱜᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱵᱩᱜᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱮᱱᱤᱭᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱮᱴᱠᱟᱱ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱪᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱵᱩᱫᱤ ᱩᱫᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱠᱚ
0: ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱛᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱮᱥᱚ ᱥᱟᱱᱤᱧ ᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱟᱨ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱱᱮᱱᱮᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱛᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱞᱚ ᱠᱚᱱ ᱜᱷᱟᱴᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱠᱚ ᱞᱮᱞ ᱵᱩᱭ ᱠᱟᱠᱚ ᱫᱤᱝᱟ ᱵᱩᱭ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱠᱮᱥ ᱠᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱞᱮᱞ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱤᱥᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱫᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱠᱩᱪ ᱠᱩᱪ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱦᱚᱵᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱵᱩ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱫᱤ
1: ᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱝ ᱮᱱᱮᱡ ᱪᱤᱞᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱛᱟ ᱨᱟᱠᱚ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱪᱤᱞᱠᱟ ᱵᱤᱱᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹᱝ ᱪᱤᱞᱠᱟ ᱟᱹᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱟᱭᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱜᱟᱹᱨᱤᱵᱤ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱱᱛᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱤᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱮᱸᱜᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱮ ᱥᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱮ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ
0: ᱟᱨ ᱮᱱ ᱨᱚᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮ ᱨᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟ
1: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱤᱥᱩᱨ ᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱟᱱ ᱩᱲᱩᱜ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱚᱠᱚᱱ ᱢᱟᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱱᱯᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱤᱱᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱤᱭᱳ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱭᱵᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱮ ᱠᱚᱥᱚᱞ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱚᱰᱚ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱱᱤᱱ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱭ ᱵᱩᱪᱤ ᱥᱩᱨᱩᱣᱟᱛᱤ ᱟᱥᱛᱟᱨ ᱛᱟᱫᱜᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱱᱚᱵᱟᱫ ᱜᱮ ᱠᱟᱦᱚ ᱵᱟᱱᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱠ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱮᱥᱩ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱰᱚ ᱰᱟᱜ ᱪᱮᱞᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱱᱤᱱ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱠ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱢᱟᱦᱟᱛᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱡᱷᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱱ ᱢᱟᱦᱟᱛᱛᱚ ᱥᱚᱢᱡᱷᱟᱣ ᱡᱟᱱ ᱪᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱱᱤᱱ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ
0: ᱟᱯᱱᱟ
1: ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱵᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱭᱭᱟ ᱤᱱ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱠᱚ ᱟᱝᱜᱩᱱ ᱛᱮᱱᱮ
0: ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱪᱟᱥ ᱥᱩᱨ ᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱟᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱤᱱᱟ
1: ᱱᱟ ᱟᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱞᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱥᱚᱞᱮᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱮᱱᱵᱟᱨᱢᱮᱱᱴ ᱟᱵᱚ
0: ᱢᱟᱱᱮ
1: ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱟᱱᱟᱥᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱜᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱟᱥᱲᱟ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱤᱱ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱛᱟᱭᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱫᱟᱭ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱱᱟᱞᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱨᱟᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱞᱚᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ
0: ᱥᱮᱥᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ
1: ᱥᱮᱥᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱤᱲᱜᱮ ᱠᱟᱛᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚ ᱢᱤᱱᱚ ᱢᱮᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚᱪᱟ ᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱞᱠᱟ ᱵᱚ ᱟᱠᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱤᱢᱤᱱ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱟ ᱠᱤ ᱟᱠᱚ ᱢᱤᱱᱚ ᱮᱠ ᱯᱞᱟᱱ ᱵᱤ ᱟᱠᱚ ᱟᱛᱟᱭ ᱵᱟᱝ
0: ᱛᱟᱭᱱᱟ
1: ᱢᱤᱱᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱰᱤᱯᱮᱱᱰ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱭᱩᱢ ᱪᱤᱠᱟᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱯᱟᱴᱤ ᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱟᱹᱧᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱢᱩᱱᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱠᱟᱪᱮ ᱢᱩᱱᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱠᱟᱵᱩ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱤᱛᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱦᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱱᱩᱱᱟᱹᱢ ᱭᱟᱵᱚ ᱛᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱞᱟᱣᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱠᱚᱪᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱤᱥᱩ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱮᱱ ᱞᱚᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱨᱮ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱥᱩ ᱢᱟᱦᱟᱛᱛᱚ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱭᱚᱜ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱩᱰᱮᱞ ᱫᱮᱭ ᱠᱟᱵᱩᱰᱮᱞ ᱫᱮᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱭᱟ ᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨᱫᱩᱱᱩ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱟᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱰᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱮᱞᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱭᱛᱤᱭᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭᱜᱱᱟᱵᱩ ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱠᱚᱭᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭᱜᱱᱟᱵᱩ ᱪᱮᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱤᱧ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱭᱜᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱚᱜᱚᱱᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱥᱟᱜ ᱞᱚᱛᱮ ᱤᱞᱟᱢᱟᱨ ᱟᱭᱨᱯᱟ ᱡᱚᱠᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱚᱴᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ
2: तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इला एरपा मी आंदिर दुरंत प्रस्खिलेन वा तुरंगतना के मदे कोई होनहागा अंडो अकिने जुड़ी कलोते। इला मर्बु रसिकलेन वा।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को छवि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। युवा दोस्तों, आजकल खेत के क्षेत्र में हमेशा हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि हमारे युवा वर्ग जो आज विभिन्न खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हैं। युवा एथलीट न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वे समाज में स्वास्थ्य, अनुशासन और एकता की एक नई लहर भी ला रहे हैं। खेल में युवाओं के इस बढ़ते योगदान को हम बहुत सारे बिंदुओं में बांटकर बात कर सकते हैं। युवा दोस्तों, आज का युग खेल का युग है और अगर हम चाहें तो खेल में अपना योगदान दे सकते हैं। भारतीय युवाओं ने हाल के वर्षों में ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे बड़े मंचों पर अपनी धाक जमाई है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मनु भाकर निशानेबाजी और लक्ष्य सेन बैडमिंटन जैसे युवा खिलाड़ियों ने दुनिया के सामने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। क्रिकेट में भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा चेहरे लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे भारत के युवा मुख्य रूप से क्रिकेट पर सभी का ध्यान रहता है, लेकिन आज के युग के युवा जो हैं वो गैर पारंपरिक खेलों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं, जैसे शतरंज। डी गुकेश और प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी जैसे युवा ग्रैंड मास्टर्स ने वैश्विक शतरंज में भारत का दबदबा कायम किया है। एथलेटिक्स और तीरंदाजी में भी ट्रैक एंड फील्ड, तीरंदाजी और मुक्केबाजी जैसे खेलों में ग्रामीण और छोटे शहरों के युवा सबसे आगे आ रहे हैं। आज के युवा खिलाड़ी केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि तकनीकी रूप से भी बहुत उन्नत है। वे खेल के प्रदर्शन को सुधारने के लिए डेटा एनालिटिक्स, आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन और वीडियो एनालिसिस का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इससे उनका वैश्विक स्तर पर जो खेल है उनके समक्ष पहुंच गया है। हमारे देश में महिला शक्ति और लैंगिक समानता का युग है अब आ रहा है और हमारे युवा महिलाओं ने भी इस पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी और भारोत्तोलन जैसे खेलों में युवा महिला एथलीटों ने रूढ़ियों को तोड़कर बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। वे देश की लाखों लड़कियों को खेलों को एक करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। युवा खिलाड़ी समाज में एक नई फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल शारीरिक मजबूती ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और योग के महत्व पर भी खुलकर बातें करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये युवा लाखों लोगों को सक्रिय जीवन शैली अपनाने को प्रेरित कर रहे हैं। और युवा दोस्तों, हमारा देश युवाओं का ही है। अगर हम युवा ही स्वस्थ रहेंगे तो हम बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने देश की शान को भी बढ़ा सकते हैं। तो युवा दोस्तों, हम अपने में ये प्रतिज्ञा करें कि आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े। चलिए एक प्यारा सा आपको गीत सुनवाते हैं और उसके बाद फिर से आपसे हम बातें करेंगे।

0: तो युवा दोस्तों, अच्छा लगा ना ये गीत? इस गीत में पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और उसके अलावा फिर इससे कहा गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। बिल्कुल सही बात है, खेलने कूदने से हमारा शरीर तो ठीक रहेगा ही, हम अपने देश का नाम भी ऊंचा करेंगे और साथ में हमारा नाम भी ऊंचा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी खेल से, ना सिर्फ पैसे मिलते हैं बल्कि ख्याति भी मिलती है। योग भी एक महत्वपूर्ण खेल में अब इसे शामिल कर लिया गया है ओलंपिक गेम्स में। तो योग के क्षेत्र में भी हमारे युवा साथी काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं। तो योग के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं इस भेंटवार्ता के जरिए। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं योग शिक्षक से, जो हमें बतलाएंगे योग के बारे में।
1: मेरा प्रशिक्षण अभी कुछ स्कूलों में चल रहा है
0: जी,
1: और हमारा अपना योग सेंटर है
0: जी,
1: जहाँ बच्चों को बुलाकर योग का प्रशिक्षण देते हैं
0: जी।
1: समय समय पर मंडल कारा में, पुलिस लाइन में,
0: अच्छा,
1: रिमांड होम में,
0: अच्छा,
1: बच्चों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ
0: जी। बहुत अच्छी बात है सुमित सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि योग दिवस की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब यूएनओ में गए थे तो 11 दिसंबर 1914

0: पिता को
1: जी
0: उन्होंने अपने इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखें
1: जी
0: कि हम लोगों को योग में समय देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: इससे हमारी दीर्घ आयु होती है
1: जी
0: और स्वस्थ भी रहते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये प्रस्ताव को उन्होंने उस समय रखा और उसकी 90 दिनों के बाद ही यह प्रस्ताव 177 देशों की सहमति से पारित हुआ।
1: अच्छा,
0: और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया।
1: हाँ, पूरे विश्व में इसे मनाया गया, इसलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय
0: योग दिवस
1: जी
0: रखा गया।
1: जी जी सर, सर हम जानना चाहेंगे कि योग क्या है और इस बार जो 21 जून को हम मना रहे हैं इसकी थीम क्या है।
0: सबसे पहले तो योग के विषय में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है
1: जी,
0: लेकिन योग का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य 3 चीजों का बना हुआ है
1: जी,
0: शरीर मन और आत्मा।
1: अच्छा,
0: अपने शरीर पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण, अपने अंतर आत्मा को पहचानना
1: जी,
0: इन तीनों अवस्थाओं का संतुलन ही योग है।
1: अच्छा,
0: और इस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग।
1: जी, बहुत अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है हमारे समाज में और इस बार की थीम ये रखी गई है। तो श्रोताओं, आपने सुना और बच्चों ने भी सुना कि योग कितना जरूरी है और योग क्या है, इसका सर योग का महत्व क्या है, आप इसके विषय में बताइए।
0: योग का महत्व हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है
1: जी।
0: आज की भाग दौड़ की जिंदगी में
1: जी,
0: और इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जिंदगी में
1: जी,
0: हम लोग अपने आप को शांत अवस्था में बैठने के लिए
1: जी,
0: योग करना बहुत जरूरी है। कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम।
1: अच्छा,
0: मैं किसी भी अवस्था में शांत मन से बैठ जाऊं तो वही योग है।
1: वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने सुना, सभी लोगों ने सुना कि योग क्या है और इसका महत्व क्या है, हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। सर, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि योग का रोजगार के क्षेत्र में क्या महत्व है, क्या इससे रोजगार की प्राप्ति हो सकती है।
0: आज के इस युग में योग में बहुत से रोजगार आए हैं
1: जी,
0: और मैं खुद ही इस बोर्ड के मेंबर थे जिसमें यहाँ सदर हॉस्पिटल के द्वारा 27 प्रतिभागियों का इंटरव्यू लिया था।
1: अच्छा,
0: जिसमें 16 प्रतिभागी अभी आयुष के द्वारा और स्वास्थ्य केंद्रों में योग का प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जाता।
1: अच्छा, तो मतलब रोजगार की गारंटी भी है इसमें, योग सीखकर हम दूसरी जगह भी सिखा सकते हैं। तो कोई आपका ऐसा है जो इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है और प्रशिक्षण भी दे रहा है।
0: हमारी आज जो हैं बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो योग के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं और हमारा पश्चिम सिंहभूम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारा पहला स्टूडेंट थे सानू बिरुली।
1: अच्छा,
0: जो अभी

0: पढ़ चुके हैं सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि खेल के रूप में योग की क्या स्थिति है।
1: खेल के क्षेत्र में योग को अभी ओलंपिक संघ के द्वारा मान्यता मिल चुका है।
0: अच्छा।
1: और अभी योग को काफ़ी बढ़ावा मिला है, स्कूलों में SGFI स्कूल गेम्स में भी शामिल किया जा चुका है।
0: जी।
1: NCERT जो बुक पब्लिश करते हैं उसके लिए भी, उसमें भी प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन में नेशनल ओलंपियाड होता है।
0: जी।
1: और उसमें भी हमारे पश्चिम सिंहभूम के 3 बच्चे अभी मैसूर में योग का प्रदर्शन किए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्हें 21 जून को सम्मानित किया जाएगा।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे पश्चिम सिंहभूम के बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और योग के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, तो योग खेल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी चीज़ है हमारे शारीरिक दृष्टि से भी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि योग से क्या बीमारियों को दूर किया जा सकता है।
1: सबसे पहले तो योग के विषय में जानना पड़ेगा कि योग जो करते हैं, हमारा योग निरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं और हमारे शरीर से जो हार्मोन निकलते हैं उनका श्रवण को तेज करता है।
0: अच्छा।
1: ऐसा बहुत से आसन है, जैसे बोलते हैं वज्रासन में बैठते हैं, खाना खाकर हम वज्रासन में जो बैठते हैं, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हार्मोन निकलता है, पाचन तंत्र से जो हार्मोन निकलता है उसका श्रवण तेज होता है।
0: जी।
1: और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे ऑर्थोसाइटिस है, लेकिन जब हम शुरू से करते रहेंगे तभी वे बीमारी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वे बृहद रूप ले लेगा तभी हमको डॉक्टर की सलाह पर ही योग करना चाहिए।
0: जी, तो कैसे लोग योग ना करें और कैसे लोग योग करें, इसके बारे में बताइए।
1: कुछ ऐसा बीमारी है जिसमें हम लोग योग नहीं कर सकते हैं, और जैसे अल्सर है, हर्निया है, उस स्थिति में कुछ आसनों को नहीं करते हैं। लेकिन योग तो सभी प्रकार के पेशेंट कर ही सकते हैं। उसमें जो आसन दिए गए हैं उनमें करीब करीब हमारे जो 84 लाख योनि हैं वो 84 लाख आसन भी।
0: अच्छा।
1: तो उन आसनों में कुछ चयनित आसन हैं जो जैसा पेशेंट है उसी तरह से करवाते हैं। जैसे कैंसर के मरीजों को हम लोग योग निद्रा का अभ्यास करवाते हैं। योग निद्रा का स्पेशल अभ्यास होता है जो एक मेडिटेशन के रूप में उसके शरीर पर काम करता है।
0: अच्छा सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि योग जो लोग करेंगे, मान लिया रोजाना करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, कहाँ प्रशिक्षण लें, या फिर कौन से योग ऐसे हैं जिनको रोज करना चाहिए।
1: वे तो एज पर निर्भर करता है, लेकिन योग को वे प्रतिदिन अपने जीवन में 24 घंटे के दिनचर्या में कम से कम अपने शरीर के प्रति 30 मिनट तो निकाल ही सकते हैं।
0: जी।
1: और उस 30 मिनट में अगर उनके पास समय का अभाव है तो वे 10 मिनट का अपने जीवन में समय निकाल कर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 24 पोस्चर होते हैं, 12 में हाफ होता है और 12 में हाफ होता है, तो 24 आकृति में करने से एक राउंड सूर्य नमस्कार होता है।
0: अच्छा।
1: अगर काफ़ी कामकाजी व्यक्ति हैं और काफ़ी व्यस्त हैं तो वे जब ड्यूटी से लौटते हैं या अपनी वर्क से घर वापस आते हैं तो शाम को भी शांत भाव से बैठकर ओम का उच्चारण कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: या मंत्र कर सकते हैं।
0: जी।
1: वे किसी भी धर्म या जाति का हो, वो अपने अनुसार अपने इष्ट देव का नाम लेकर अपने शरीर को शांत बना सकते हैं, और उसके बाद वे 2 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो उनका दिन भर का जो टेंशन की जिंदगी था वे शांत हो जाएंगे और आराम से उनको नींद भी

0: सर बहुत अच्छी बात बताई। आजकल के जीवन में टेंशन यानी तनाव बहुत ज़्यादा है और इनसे बचने के लिए हमें योग अपनाना चाहिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि विश्व में योग की क्या स्थिति है, कैसे इसका विस्तार हो रहा है।
1: विश्व में योग की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग कह नहीं सकते हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हमारे स्टूडेंट लोग इतना ज़्यादा दिमाग में बैठा रखे हैं कि हम योग करेंगे और योग में पीजी डिप्लोमा करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे। हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी योग में पीजी करवाया जा रहा है।
0: अच्छा।
1: झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा डिप्लोमा का कोर्स चलाया जा रहा है।
0: अच्छा।
1: तो उन डिग्रियों को लेने के बाद हम लोग अभी विदेशों में जाकर योग का प्रशिक्षक बन सकते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। रोजगार के क्षेत्र में, शारीरिक दृष्टि के क्षेत्र में, हर चीज़ में योग बहुत लाभप्रद है। तो सर, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों को, युवाओं को, हमारे लोगों को क्या संदेश देंगे।
1: हम अपने बच्चों को ये संदेश देंगे और युवाओं को और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कि अपने जीवन में 24 घंटे में कम से कम सभी कार्यों के लिए जो समय निकाला गया है उसमें योग के लिए भी अलग से समय निकाल कर रख लें और उस समय में वे योग का उपयोग करें। और योग का उपयोग करने के बाद ही वो घर से निकले, या ध्यान हो, या सूक्ष्म व्यायाम हो, या सूर्य नमस्कार हो, जितनी उनकी शरीर की क्षमता है उनके अनुसार अपने आसन को चयन कर ले और कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को के प्रति जरूर समय दें। कहते हैं लोग कि हम तो इतना काम काज करते हैं, ये तो योग है, लेकिन नहीं, योग में बहुत सी गतिविधियां हैं और बहुत तरह की पद्धति है, उनको अपनाया जाता है। और योग और व्यायाम में जो अंतर है कि हम जिम जाते हैं, योग करने की आवश्यकता नहीं है, हम पीटी करते हैं, योग करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात नहीं है। योग जो है, योग में श्वास प्रति श्वास की क्षमता को देखते हुए योग किया जाता है।
0: अच्छा।
1: और योग में किसी प्रकार की राजशाही भोजन की आवश्यकता नहीं है कि हमको खूब पौष्टिक आहार की आवश्यकता होनी चाहिए, इस तरह की कोई भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है।
0: अच्छा।
1: और इसमें योग में हमारा श्वास की पद्धति का मेन है कि हमें अपने श्वास के प्रति जागरूक रहें और श्वास को ध्यान में रखते हुए हम योग के गतिविधियों को अपनाएं।
0: जी सुमित सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अंत में मैं ये जानना चाहूँ कि रोज योग करना चाहते हैं तो कौन कौन सा करें, खास जो सबसे योग है उसको कौन सा योग करें।
1: जैसे बच्चों के लिए है, अगर बच्चों को हाइट बढ़ाना है तो उसके लिए 5 आसन करेंगे, ताड़ासन करेंगे,
0: अच्छा,
1: पश्चिम पाधस्थ आसन करेंगे,
0: अच्छा,
1: पर्वत आसन करेंगे, चक्रासन करेंगे, पश्चिम उत्थान करेंगे।
0: अच्छा।
1: अगर 60 एभव के कोई व्यक्ति हैं जिनको शारीरिक क्षमता जो है कमजोर हो चुका है, वे पवन मुक्तासन 1 का अभ्यास करेंगे।
0: अच्छा।
1: उसमें 16 अभ्यास हैं जो पैर के अंगूठे से लेकर गर्दन तक हैं।
0: अच्छा।
1: अब बोलते हैं कि कोई हमको वेट जल्दी लूज करना है तो उसके लिए पवन मुक्तासन 2 का अभ्यास करेंगे।
0: अच्छा।
1: उसमें 11 अभ्यास हैं, ये शक्तिबद्ध समूह के आसन हैं जिसमें गतिशील रहता है। और कुछ आसन ऐसे हैं जिसको हमको शारीरिक रूप से स्थिर बैठना है जैसे पद्मासन हुआ, वज्रासन हुआ, इसमें हमको रुकना है। हमारी क्षमता के अनुसार 30-1 मिनट तक स्टे भी करना है।
0: अच्छा।
1: इसलिए कहा गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, यह एक शब्द है कि अपनी शरीर को स्थिर अवस्था में ही रखना योग कहलाता है।
0: सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, बच्चों को, युवाओं को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो युवा दोस्तों, इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: भाई,
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
6: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, 4 पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
5: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
7: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
8: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
11: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
10: पिछले हफ्ते ही तो तुमने NSB कराई है।
11: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे रे, अरे कहाँ चल दिए?
12: NSB कराने।
11: पुरुष नसबंदी यानी NSB की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष दीपक छाबरिया ने की मुलाकात। राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना और आईटीएआई क्षेत्रों में निवेश पर हुई चर्चा। रांची में जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, छात्रों से तकनीक का उपयोग नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ करने का किया आह्वान। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पीठ के समक्ष भेजा, अगले सप्ताह होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक राज्य में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। इस दौरान 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का है अनुमान। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मैच को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक रूट को लेकर दी गई आवश्यक हिदायतें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष दीपक छाबरिया ने मुलाकात की। बैठक में राज्य में निवेश, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना और आईटीएआई तथा सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में क्षमता विकास पर चर्चा हुई। श्री छाबरिया ने निवेश के जरिए राज्य के युवाओं को रोजगार देने की इच्छा जताई। रांची स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्री नहीं बल्कि बड़ा उद्देश्य ही जीवन को महान बनाता है। राज्यपाल ने युवाओं से एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। खूंटी में पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने झामुमो और कांग्रेस पर एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक खनन के लिए यह बदलाव किया गया है। श्री कोड़ा ने आरोप लगाया कि अवैध खनन से आर्थिक लाभ कमाने के लिए सत्तारूढ़ दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
1: यहाँ पर कोयला का रॉयल्टी 450 रुपया है पर टन। कोयला में ये आयरन ओर में यहाँ 600 रुपये पर टन है। वही उड़ीसा जाइएगा तो वहाँ पर मुश्किल से 50 रुपया टन है। ये हाल है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में तो वहाँ पर कोई सेस पर लगाइए नहीं। स्वाभाविक रूप से जब लागत बढ़ेगा तो मार्केट में खनिज संपदा का दाम बढ़ेगा। खनिज संपदा का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से यहाँ उद्योग धंधे को चौपट होगा।
0: प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में निर्वाचन आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजधानी रांची में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। मौके पर मौजूद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
2: इलेक्शन कमीशन झारखंड में भी वोट से अपने नियमों को बदल दे रहा है। कभी कहता है कि हम हथियार डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, कभी कहता है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी कहता है हमें आवासीय चाहिए, कभी कहता है हमें जातीय चाहिए। पूरे लोगों को परेशान करके रख दिया है।
0: रांची के डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविकता सामने आई है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
3: देश में जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा एसआईआर को लेके जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, हम उनको कहना चाह रहे हैं कि एसआईआर जो कि एक पार्टी विशेष की चीज नहीं है, वो भारतीय नागरिकता का जो प्रमाण पत्र है वो है। चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं होता है, वो भारत वर्ष का होता है।
0: राज्य में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने और दावा आपत्ति दर्ज कराने के लिए अब केवल 2 दिन बाकी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि फॉर्म 7 जमा होने मात्र से नाम नहीं हटेगा बल्कि पूरी जांच और सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मामले को दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित करते हुए अगले सप्ताह सुनवाई की तारीख तय की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

0: हैं ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसे सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए यह प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। इसी कड़ी में हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की, जो राज्य के खनिज और औद्योगिक विकास के लिए वरदान साबित हो रही है।
1: झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अधिकांश खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। इस खनिज और श्रम संपदा को देश के विकास से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की परिकल्पना की है, जिसका बड़ा असर राज्य में दिख रहा है। सुनिए इस योजना के विजन पर प्रधानमंत्री का क्या कहना है।
2: जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया तब कुछ लोगों ने शंकाएं आशंकाएं जताई थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है।
1: प्रधानमंत्री की इसी सोच के धरातल पर उतरने से स्थानीय स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। चाईबासा के व्यापारी और लाभुक इस योजना से बेहद उत्साहित हैं और राज्य में इसके सकारात्मक प्रभाव को महसूस कर रहे हैं।
3: मेक इन इंडिया परिकल्पना की झारखंड में व्यापक संभावनाएं हैं। मेक इन इंडिया का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, तो झारखंड में भी खनिज आधारित निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। पिछले 12 वर्षों में इसमें काफी प्रगति हुई है। ऐसा माहौल राज्य सरकार को बनाना चाहिए जिससे छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।
1: इन लाभुकों की बात से सहमति जताते हुए पश्चिमी सिंहभूम के युवा समाज सेवी रवि बिरूली का भी मानना है कि राज्य में न सिर्फ खनिज संपदा की प्रचुरता है बल्कि यहाँ श्रम संपदा भी असीमित है और यहाँ के लोग मेहनती हैं। इसका पूरा लाभ यहाँ के निर्माण क्षेत्र को मिलना चाहिए।
4: इंडिया झारखंड के युवाओं के लिए अपने हुनर को आगे बढ़ाने और नए अवसर प्रदान करने का एक अच्छा रास्ता है। वहीं झारखंड में प्राकृतिक संसाधन काफी भरपूर मात्रा में है। यहाँ के युवा काफी मेहनती भी हैं। अब उन्हें जरूरत है अपने हुनर को पहचानने के लिए और लोगों को रोजगार देने की हैसियत से काम करने के लिए।
1: स्पष्ट है कि राज्य में खनन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत यहाँ निर्माण क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ स्वदेशी उत्पादों का लाभ लोगों को मिलेगा बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी हम कर पाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए चाईबासा से दिलीप बनर्जी के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरायकेला खरसावा के चलियामा स्थित रुंगटा माइंस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने उपायुक्त संग बैठक की। हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 महीने में एकीकृत कार्य योजना पूरी होगी। बैठक के बाद श्री राजकमल ने बताया कि भारी वाहनों के लिए अंदर बाहर पार्किंग और घायलों के त्वरित इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
5: माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में एक अच्छा सोल्यूशन करने के लिए राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को साथ में काम करने का निर्देश दिया है। व्यक्ति जो एक्सीडेंट होते हैं तो उनको कैसे ट्रॉमा सेंटर या मेडिकल फैसिलिटी जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, इसके लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस अवेलेबल कराना, ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के बारे में भी उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया।
0: बोकारो के चंदन क्यारी स्थित छऊ केंद्र में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से 3 दिवसीय सरायकेला छऊ संगीत कार्यशाला शुरू हुई। केंद्र के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य पारंपरिक नृत्य और मुखौटा कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। राज्य में मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 6 दिनों तक रांची, कोल्हान और संथाल परगना में और विभिन्न हिस्सों में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन

0: अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक रूट पर विशेष चर्चा की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष दीपक छाबरिया ने की मुलाकात। राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना और आईटीएआई क्षेत्रों में निवेश पर हुई चर्चा। रांची में जेयूटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। छात्रों से तकनीक का उपयोग नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ करने का किया आह्वान। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पीठ के समक्ष भेजा। अगले सप्ताह होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक राज्य में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक रूट को लेकर दी गई आवश्यक हिदायतें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
2: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
3: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
2: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
3: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
2: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनवाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
2: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
3: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
2: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
3: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
2: और लड़के की 21 वर्ष है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: प्रस्तुत है जिले में आज कल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने संचालित क्लिनिक, दवा दुकान एवं जांच घर का औचक निरीक्षण किया। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कई प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर आधा दर्जन संस्थानों को सील कर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, इसलिए कार्रवाई की गई।
2: ये स्पष्ट है कि अगर यहाँ पे किसी तरह से अवैध गतिविधि चल रही है और पास में हमारा सरकारी अस्पताल, तो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है और जिला प्रशासन भी इसको ओन करते हैं कि हमारे अंतर्गत ही तो स्वास्थ्य विभाग आता है, रेमसीएच आता है, उसमें हम डिनाई नहीं करते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने एक्शन लिया है और आगे भी चेतावनी हम दे देते हैं। जो भी लोग यहाँ पे अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो आज हमारे रडार में नहीं है, वो यहाँ से तुरंत आ जाए तो फिर हम लोग उन पे भी दबिश करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का दौर आज चला है, आगे भी चलता रहेगा। आप सभी लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह की एक्टिविटी अगर होती है, एविडेंस जरूर रिकॉर्ड करिए। आप एक पेशेंट बन के जाइए, एविडेंस जरूर रिकॉर्ड करिए, बिकॉज जब ये ट्रायल में जाते हैं कई बार एविडेंस की कमी की वजह से अपराधी छूट जाते हैं।
1: पलामू में ऑपरेशन मुस्कान से खुशियां लौट रही हैं। पुलिस ने 97 मोबाइल फोन खोजकर उनके वास्तविक धारकों को लौटा दिए। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने पूरी जानकारी दी।
3: पलामू पुलिस के द्वारा आज 97 टोटल मोबाइल की रिकवरी करके विभिन्न थाना क्षेत्र के अलग अलग आरोपियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अलग अलग थाना क्षेत्र से अलग अलग मोबाइल की रिकवरी हुई है, जो कि हमारे लिए एक खुशी का विषय है और ये पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिनका मोबाइल खो जाता है उनको दोबारा मोबाइल लौटाना और जिनको ये मोबाइल मिलता है तो मोबाइल देने वाले को और लेने वाले दोनों के लिए बहुत बड़ा अच्छा खुशी का मौका है। इसके लिए मैं सभी थाना प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ ये ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो हमारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये हमारे पलामू जिला के लोगों के लिए चेहरे पर मुस्कान वापस लौटाने का काम करता है।
1: पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के दुल्ही गांव में कर्मा विसर्जन पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कोयल नदी में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। डाल्टनगंज के भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने घटना पर चिंता व्यक्त की है।
4: कर्मा पूजा विसर्जन बहाने के लिए है कि 5-6 नौजवान गए थे नदी में और नदी में जाने के बाद नदी का धारा बहुत तेज था।

0: बच्चा एक दूसरे को बचाने में 5 बच्चे को जान चला गया। आज बहुत ही दुखद और मर्माहित घटना है।
1: पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के बसोरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में भोजन की खराब गुणवत्ता व रसोई की गंदगी को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। एक छात्र ने मामले पर प्रकाश डाला।
2: गैस का यहाँ पर जब प्रॉब्लम हो रहा था तो खाना बाहर बनाया जा रहा था, लेकिन अभी जब गैस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है फिर भी खाना सर बाहर बनाया जा रहा है। और अभी सर इतना धूल वगैरह सब खाना नहीं जाके मिल रहा है। अभी तो सर गैस भी अवेलेबल है, फिर भी ये लोग कोयला पे खाना बना रहे हैं, जैसे रोटी भी जल रहा है। अब जला हुआ रोटी हम लोग खा रहे हैं। आलू का जो भुजिया मिलता है सर वो सड़ा हुआ आलू उसमें मिलता है।
1: भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सरकारी कार्यालयों में हिंदी के आधिकारिक प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ललहे मेदनी नगर स्थित सब स्टेशन में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता हिंदी प्रशिक्षक दिनेश कुमार शुक्ल रहे। उन्होंने हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग, कार्यों में इसके प्रभावी उपयोग और राजभाषा जागरूकता पर प्रतिभागियों से संवाद किया। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने मेदनी नगर गायत्री मंदिर रोड स्थित बेरिया में नव निर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब आम जन को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
3: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 7:17 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म कर्ज के इस गीत से, मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहते हैं लक्षणपुर से राम जीवन लाल रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान भटगांव बलौदा बाजार से राम दुलार साहू, नीलिमा साहू, तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, परमवीर, सोनू, हरी, खुशी, उसार और खुशी, डोंगरगांव जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, तन्मय बेबी अनिष्कर, राधिका गजबिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कर्ज का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत सुनवाते हैं इनकी पसंद पर, जमशेदपुर से हजेंद्र सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया। गोला बाजार बक्सर से शुद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। बड़ा बाबो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्याम देव नायक और सीमा। ग्राम गेल अलवर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश बेसरा, अनु बनमाली बेसरा, पूजा और सिद्ध कुमारी। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी कभी का ये नगमा। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, शाहिर के बोल हैं, संगीत है खयाम का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है कस्मे वादे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं चांडीग्राम हरोड़ी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा मनमहिन महतो और तीन बंधु महतो। तांबो चौक चाईबासा से दुर्गा चरण सवैया, लेविया बोधरा और सुखलाल बोधरा। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कस्मे वादे का ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है यादों की बारात। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं कुचाई ईटा हतो से गोलाराम लोवादा, लोदरी लोवादा, सूरती लोवादा, सोमनाथ लोवादा, पूर्णिमा लोवादा, लालमुनी लोवादा, बिनचना लोवादा। सराकेला गांव कीता से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप और माहिर गोप। सराकेला पाड़ापुर देशालु ग्राम बहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंड्री, सुरुमानी मुंड्री, हीरामानी मुंड्री, हिमांती मुंड्री, डोबरू मुंड्री, साजन मुंड्री, कुशल मुंड्री, जानुम सिंह मुंड्री, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफ एम शिवा मुंड्री। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म यादों की बारात का ये प्यार सना।

0: स्थापित है तथा भारत के
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేనా।
1: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अब आपको अगला नगमा सुनवाते हैं फिल्म कलाकार से। किशोर कुमार की आवाज़ है, इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पंचायत बठेना से बलकन वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौता सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहत्रा वर्मा, आयुषीकृत वर्मा, सेंट टोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी नताशा मधु, जयश्री देवी, विनोद कुमार पवन और मीना पवन, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर, बाबाकुटी उफरा फाटन से प्रेम साहू, यमुना साहू, मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर राही, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश ग्वानकर, श्वेता सुमित ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर उर्फ परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वानकर, प्रणीता ग्वानकर, लाटला टुक टुक ग्वानकर। चलिए, इन सब के फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं कलाकार फिल्म का ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये नगमा। किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी की बोल हैं, संगीत है राहुल देव वर्मन का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल धर्मपाल, महावीर संधु, रमेश मिगलानी, संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, मिस्टर संतोष आनंद, ये हैं घाटशिला से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, ये हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। न्यू कॉलोनी इंडी चाईबासा से ठाकुर

सतरंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीस अंश, अंशु और मुन्ना, इन सब की फरमाइश पर चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये नगमा।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म हमसे है मुकाबला। इस फिल्म से मनु और स्वर्णलता की आवाज़ों में इस गीत को सुनना चाहते हैं। राजनगर मधुबनी से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, ऐशबाग पिल्ली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजित गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, तन्मयराज और गुनगुन। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, पुत्रा मुजदापा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हमसे है मुकाबला का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है जानवर। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं आनंद मिलन के संगीत पर। आप इस गीत को सुनिए इनकी पसंद पर। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। चाईबासा अमला टोला से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, चिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। इन सब की फरमाइश पर आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म जानवर का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत सुनवाते हैं इनकी पसंद पर। ग्राम उघाड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो और खेत्रो मोहन साहू, कैलाश बाबा और सदस्य अन्य। बड़ा निमरी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित

सुमित कुमार और शुभम कुमार, माहौलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष गीतेश, तनु अनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, पिता प्रधान, गुलशन नायक, तनुश्री प्रधान और नील पानी प्रधान। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जब वी मेट का ये नगमा मोहित चौहान की आवाज़ में। इरशाद कामिल के बोल हैं, संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म जन्नत से। केके की आवाज है, इस कादरी के बोल हैं, संगीत है प्रीतम का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। सतीश अनेजा, बीमल अनेजा ये हैं चंडीगढ़ से। बठिना से बलकरन अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चौड़ादास सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषिकृत वर्मा। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जन्नत का ये नगमा।

श्रोताओं, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं जिस्म फिल्म से, श्रेया घोषाल की आवाज है, राजेश रोशन के संगीत पर। इस गीत को सुनना चाहते हैं करेना मोहला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, ये हैं आदर्श नगर भटिंडा से। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निमान शर्मा। पटेल नगर मलोट पंजाब से ही डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं जिस्म फिल्म का ये लगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है जुड़वा। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, देव कोहली के बोल हैं, संगीत है अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहते हैं चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा मनमहिनी महतो और दीनबंधु महतो। ग्राम सुपाई साइज से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, कौशल्या देवेन, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान। रेलवे स्टेशन बड़ा बाम्बो से ठाकुर प्रसाद गुप्ता, लीला गुप्ता, दीपक चंपक गुप्ता, गांगू श्याम देवनायक, सीमा और पूजा। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर। चंदा चौक अंडरथाड़ी जिला मधुबनी बिहार से मुखिया जी सज्जन, शोभिका झा सज्जन, मोहित संजन। एटा रोड गजरुंडवारा उत्तर प्रदेश से वीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेया गौतम, कुश गौतम, रिंकू टिंकू और रीना। बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवासेरी। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं जुड़वा फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

थोड़ा मर लो।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत कुमार शानू की आवाज़ में। मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गोगलानी, आशा गोगलानी, पूजा अन्या अनाया, नेहा सागर, गुंबर, हिमांशु गोगलानी, इमो कुरेशी और सुधीर नूतन। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक पारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर पारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अर्शद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीकंधा यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा।

0: कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
6: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

0: श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
1: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
0: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: 6% so it comes to 10%.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
5: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति
7: आज भारत में है।
6: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
8: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाइयों साथी भाइयों से कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
6: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया के हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9.

0: आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
2: कल से दिल्ली भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों में नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। ये कैंप वोटर फेरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी SIR 2026 के तहत लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने तलबा से अपील की है कि वो इस मौके से फायदा उठाते हुए वोटर फेरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं और जमहूरी अमल में हिस्सा लें। ये खसूसी कैंप बुध तक जारी रहेंगे। भारत और मंगोलिया के दरमियान आज से बराह रास्त प्रवास शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बातार के दरमियान बाकायदा तौर पर प्रवास का आगाज किया गया। इस सर्विस के शुरू होने से दोनों राजधानी के दरमियान सफर का वक्त कम होकर तकरीबन 5 घंटे हो जाएगा। ये प्रवास मंगोलिया की फजाई कंपनी हुन्नू एयर के जरिए चलाई जा रही है और हर पीर को दस्तयाब रहेगी। इस नए फजाई रास्ते से उन मुसाफिरों के सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा जो इससे पहले बीजिंग या इंचियोन के जैसे मकामात पर प्रवास तब्दील करके सफर करते थे। इस सफर में आमतौर पर 13 से 18 घंटे लगते थे। बुनियादी घरेलू इशारे में आज 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 1,124 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई और वो गुज़िश्ता 6 महीनों के सबसे निचले मकाम पर पहुंच गया। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई और वो 22,800 से नीचे बंद हुआ। इस गिरावट के असबाब खाम तेल की कीमत में इजाफा, खित्ते की सियासत में गैर यकीनी की सूरतहाल और कमजोर आलमी रुझानात हैं जिनका असर सरमायाकारों के जज्बे पर पड़ा है। जापान में जारी एशियाई खेलों में आज भारत ने मजीद 8 तमगे जीते हैं। इनमें निशानेबाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुरश और मुक्केबाजी शामिल हैं। एथलेटिक्स में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भारत के यशवीर सिंह ने चांदी का और रोहित यादव ने कांसे का तमगा जीता। वहीं मर्दों की लॉन्ग जंप में भारत के सिरी शंकर मुरली ने 8 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। मर्दों की 1,500 मीटर की दौड़ में गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निजाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त प्रवास शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हां, हमारा देश इसी दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है और आपके सवालों के जवाब देने

0: आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर, लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड यानी 011 और फिर घुमाइए 2331 0481 या 2371 7117 या फिर 2371 7106 और 2331 4444 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग #AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है और हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी कहिए, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है?
0: जी जी नमस्कार।
2: कौन से अस्पतालों में?
1: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो भी श्रोता हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत PMJAY की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार है उनके जितने भी सदस्य हों किसी भी उम्र के हों वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उसके ऊपर के उम्र के हों तो आप भले किसी भी आय वर्ग के हो आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त करने कर सकते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहाँ तक बोले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा, जो IPD सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत 27 स्पेशलिटी के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत, इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है, आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा, आप जाएं अपना कार्ड दिखाएं पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
0: जी हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए, ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल?
3: मनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: विशेष जी, ये जानना था कि जो नया कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानना था। नमस्कार।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वो आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से या फिर 1-4-555-14 ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं।

0: कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC करकर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ की जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
2: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले, और पता कैसे चलेगा? क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौर में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाएं? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
0: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि PMJAY के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप PMJAY के पात्र जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहां तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में, मान लीजिए एक कुछ परिवार जो है PMJAY के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उस परिवारों में नहीं आए हैं, तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिम केयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूंगा कि PMJAY स्कीम जो है ये बिल्कुल निशुल्क है। मतलब आप इस स्कीम के अगर ये, क्योंकि और ये गरीब परिवारों के लिए है। आपको याद होगा 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें परिवारों की जो जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं, और गरीबी के जो 40% सबसे सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत ही आसान है, आयुष्मान ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार PMJAY के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर PMJAY के अंतर्गत आता नहीं है, तब आप देखिएगा कि आप आपके स्टेट का जो स्कीम है, राज्य के जो योजना है, उसमें अंतर्गत कवर आप उसमें पा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आपको एक प्रीमियम फीस उसमें देनी होती है, एनरोलमेंट बेस्ड फीस है, वो करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आप PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1-4555 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
1: जी,

0: हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से, राशिद अहमद खान। कहिए क्या है आपका सवाल।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार।
1: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को मैं पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
0: जी
1: मेरा छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है तो किस कितने आधार मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
0: जी दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य और दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
2: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि एसईसीसी सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र आईडी का प्रचलन है, तो समग्र आईडी को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नजदीकी अस्पताल में इस समग्र आईडी को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो पीएमजे के अंतर्गत भी है और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं। उसमें जैसे पहले जितने भी पीएमजे के अंतर्गत परिवार लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे पीएमजे का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश में आप समग्र आईडी का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
0: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी जी। जोशी जी, क्या है प्रश्न?
3: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
3: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी।
0: जी
3: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं, भी कोई जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है कुछ 6 में पढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात ये है कि हम 5 में से 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है लेकिन बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहाँ बनेगा, तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
2: जगदीश जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 14555 में कॉल करके पूछना, जिससे आपको समझ में आएगा, वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र परिवार है उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार

परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म से जन्म

0: सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना है, उसमें 5+5 लिखा आया है। ये क्या हम सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा क्या, अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीष जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था।
1: जी, जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है। लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
2: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य हैं जो 70 वर्ष के ऊपर हैं, महिला हैं, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहां तक दूसरे परिवार परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीजन बाद में होंगे, उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज्यादा होंगे तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है, जैसे ही वो 70 वर्ष पार करते हैं, पूरा करते हैं, तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है, इस विषय में बताइए।
2: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है, जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है, इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो जो लाभार्थी हैं, जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग-अलग अस्पताल हैं या कोई लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल ही भी हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना, ताकि जो भी मरीज हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं, कोई डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है, या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में हमारे पास एक कागज में ये सारी चीजें उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज किया जाए, ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागजों को एक साथ रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागजों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए। और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी अलग-अलग समस्याएं हुई हैं स्वास्थ्य के, उन सब की जानकारी हो साथ में, ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए, नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा 2 साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे यूपीआई के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं, इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और स्पेशलिस्ट सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत

0: सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी जो आभा नंबर कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 98 करोड़ आभा नंबर बन चुके हैं, और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो, ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज है डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो, ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सके।
1: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, कि जो रोगी हैं, मरीज हैं, उन्हें अपनी पर्चियां, पुरानी रिपोर्ट, फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की जरूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी, कहिए क्या है प्रश्न
2: हाँ
1: आपका।
2: जी सर, नमस्कार
1: नमस्कार।
2: सर। मेरे तो दो क्वेश्चन है छोटे छोटे। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर या सरकारी हॉस्पिटल सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है, जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है, तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है इसके बारे में?
0: गुरुनाथ जी, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आंख के संबंधित रोग, और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है और कैटरैक्ट ऑपरेशन है, और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है। I mean, 1961 अलग अलग प्रोसीजर है। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे, जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर हैं। जैसे मैं कहूंगा कि लगभग लगभग सभी बीमारियां जो हैं इसमें कवर्ड हैं। और जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहां पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो जरूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएं या दिल्ली आएं या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहां पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखाकर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा मांगना या ले देना इसमें जरूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे मैंने कहा, 1-4-555, 1-4-555 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांश, हम इसको कहते हैं, कि जिसको 5 घंटे के भीतर एक मतलब बहुत ही जल्द इस तरह के कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे। आपके जो लोकल लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और उस अस्पताल को बताएं, ताकि आपको समय पर सेवा मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, पूरे देश भर में ये चल रहा है, ताकि जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और उनको समय पर सेवा मिल सके।
1: जी, तो आपके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 1-4-555, 1-4-555। इस पर यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप सूचित कर सकते हैं और उसमें समाधान अवश्य होगा। और हमारे ये श्रोता भी महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से, प्रकाश रावत जी। रावत जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका।
3: मैं प्रकाश राव सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो दो तीन बार में एडमिट होने के बाद पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो आयुष्मान में कवर हो जाएगा। दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए, ये मेरी गिनती है।
0: प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5

0: लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या दो बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको जाने की अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े उतने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, जहां तक हमें पता है, जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूंगा आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस के भी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
1: अच्छा, ये देखिए वास्का साहब, कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहां लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
0: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है, जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं, लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत जो लगभग 39,000 अस्पतालों में आपको लाभ लेने से बेहतर आपको लाभ ले लेना है, तो आप उस योजना को ना चुनकर PMJ व्यय वंदना को चुन सकते हैं। आप इसमें कार्ड बना सकते हैं और कार्ड बनाते समय आपके केवल डिक्लेयर करना होगा कि हम CGHS छोड़कर हम इस नई योजना में शामिल होना चाहते हैं।
1: जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक नया विषय लेकर फिर होंगे हाजिर। आज्ञा दीजिए, मैं हूं मुनीश शर्मा, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर, तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा, लास्ट थ्रो 88.56। तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर

0: और रजत पदक पक्का कर दिया तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली शिवशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया लेकिन 15:14.16 के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश सावले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष डी के 7वें स्थान पर रहे तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारतीय चौकली चौथे स्थान पर रही तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गयी। शूटिंग में पदक तो आए हैं लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट ऑफ में हुआ लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport, and it is particularly special

0: Pinky herself, she wants silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, four of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल तीन ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी तीन मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी तीन मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज चार धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
0: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर्स साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All-Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को

0: लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
0: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अभी यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सिपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत

0: भारत की एक और धमाकेदार जीत एकता थामी।
1: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
0: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
0: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल, युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंग की स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। राश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम हमारे रांची केंद्र से। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम महफिल। आप सबको छवि का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम महफिल में हम सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में चंद गजलें। तो चलिए गजलों का सिलसिला शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों की रात। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है का ये गीत कुमार शानू की आवाजों में।

0: ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: पॉइंट नोटेड मिस्टर
1: रोहित।
0: मिस्टर
1: रोहित।

0: हाँ तो हम कहाँ थे?
1: तुम शायद सितारों की बात कर रही थी।
0: अच्छा मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे?
2: अंदाज है उसके नए नए, है नया नया।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। अगला रंग हम पेश कर रहे हैं यानी अगला गीत है करीब फिल्म से। कुमार शानू और संजीवनी की आवाजें हैं, राहत इंदौरी के बोल हैं और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। अब अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है कर्मा। अनुराधा और मनहर उदास की आवाजें हैं, सुपिंदर की भी आवाज है इसमें। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।

0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत अलका याग्निक और हरिहरण की आवाजों में।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानव अधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है।

0: भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shehzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
2: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the 7th largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
1: The center will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said a central team will be sent to Karnataka on 3rd October to assess the drought situation. The Agriculture and Farmers Welfare Minister today addressed the National Agricultural Conference Rabi Campaign 2026 in the national capital today.